नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

आज रविवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 38 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपे ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजीपे प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवा जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने एफआईएच यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने एफआईएच यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना।

हर प्रभात की बेला अपने साथ एक नया संकल्प लेकर आती है, ऐसा संकल्प जो हमें अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति और अपने कर्तव्यों के प्रति और अधिक जागरूक बनाता है। भारत की महान परंपरा हमें सिखाती है कि सच्ची प्रगति तभी संभव है जब हमारे मन में देश के प्रति सम्मान और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भाव हो। इन्हीं प्रेरक विचारों के साथ प्रस्तुत है एक ओजपूर्ण देशभक्ति गीत।

0: आस्था का सबसे सुंदर स्वर
1: जिसमें मन जिसमें समर्पण के साथ
0: अपने आराध्य का
1: अपने आराध्य का स्मरण
0: भगवान शिव
1: वैराग्य और करुणा का संगम है,
0: अद्भुत संगम
1: जिनके चरणों में
0: को
1: आत्मिक
0: शांति का अनुभव
1: होता
0: उनका स्मरण
1: केवल पूजा नहीं
0: मन की निर्बलता
1: और जीवन के संतुलन
0: की साधना भी है।

0: जब जीवन में धैर्य, जीवन में मर्यादा, मर्यादा सत्य की बात, सत्य की बात होती है, तब प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम का स्वतः स्मरण, स्वतः स्मरण हुआ था।
1: उनका जीवन, उनका जीवन है,
0: बताता है कि कितनी
1: कठिन परिस्थितियां भी, परिस्थितियां भी मार्ग नहीं रोक सकती,
0: मार्ग नहीं रोक सकती,
1: जिसके साथ, जिसके साथ और धर्म का बल,
0: और धर्म का बल।
1: सुनिए
0: प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की भक्ति से सजा
1: मधुर भजन,
0: यह मधुर भजन।

0: बाहर नहीं, हमारे अपने विचारों में नहीं है, हमारे शांति विचारों में बसती है,
1: हमारे अपने विचारों
0: बाहर नहीं है,
1: हमारे अपने विचारों में बसती है।
0: मनुष्य को करुणा,
1: भगवान बुद्ध ने
0: मनुष्य को करुणा
1: का ऐसा मार्ग दिखाया,
0: आत्मचिंतन का
1: आज भी
0: ऐसा मार्ग
1: उतना ही प्रासंगिक,
0: जो आज भी
1: उनका संदेश
0: उतना ही
1: हमें भीतर झांकने
0: उनका
1: और जीवन को सरल
0: भीतर झांकने
1: देता है
0: और जीवन को सरल बनाने की प्रेरणा देता है।
1: भगवान बुद्ध के पावन संदेशों से प्रेरित,
0: भगवान बुद्ध के पावन संदेशों से प्रेरित यह भक्तिमय प्रस्तुति।

की किरणों में भारत माँ का मान रहे, हर दिल में देश प्रेम जागे, ऐसा पावन गान रहे। वीरों की कुर्बानी से ही ये तिरंगा शान बना, हम सब मिलकर प्रण करें, भारत सबसे महान रहे।

0: सत्य की राह दिखाने वाले मन का अंधकार मिटाते हो, दोहे बनकर हर दिल में ज्ञान की ज्योति जलाते हो, माया के इस झूठे जग में सच्चाई का पाठ पढ़ाते हो। हे संत कबीर दास जी, आप हमें सही राह दिखाते हो।
1: कबीरा।

0: अभी आप सुन रहे थे वंदना, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है चिंतन, आलेख दक्ष का, वाचक स्वर मयंक शर्मा के।
1: दर्पण जो सच बोलता है पर खुद कुछ नहीं रखता। आपके घर में एक दर्पण जरूर होगा। सुबह उठते ही हम उसके सामने जाते हैं, वो हमें वैसा ही दिखाता है जैसे हम होते हैं। बिखरे बाल, नींद भरी आंखें, थका हुआ चेहरा। वो कुछ छुपाता नहीं, कुछ बदलता नहीं, कुछ जोड़ता नहीं। पर क्या कभी सोचा, दर्पण हजारों चेहरे देखता है, हजारों राज जानता है, पर खुद कुछ नहीं रखता। हर चेहरा आता है और चला जाता है, दर्पण फिर भी वैसा का वैसा, शांत, निर्मल और खाली। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और शायद यही उसका सबसे बड़ा संदेश भी। एक सूफी फकीर थे, उनके पास दूर दूर से लोग आते, कोई अपना दुख लेकर, कोई अपना अहंकार लेकर और कोई अपने सवाल लेकर। फकीर सबकी सुनते, जो सच होता वो कह देते बिना लाग लपेट के। एक दिन किसी ने पूछा, बाबा तुम इतना सुनते हो, इतना जानते हो, पर तुम्हारे चेहरे पर कभी बोझ क्यों नहीं दिखता। फकीर मुस्कराए और बोले, क्योंकि मैं दर्पण की तरह जीता हूँ। जो सामने आता है उसे दिखा देता हूँ पर उसे अपने भीतर नहीं रखता। दर्पण अगर चेहरे इकट्ठा करने लगे तो दिखाना बंद कर देगा। यह सुनकर वो इंसान चुप हो गया और शायद हम भी एक पल के लिए रुक जाते हैं।

0: क्योंकि हम सब दर्पण बनना चाहते हैं, पर हम चेहरे इकट्ठा करते रहते हैं। जिंदगी में हम कितना कुछ थामे रहते हैं, किसी ने कुछ कहा वो मन में रख लिया, कोई रिश्ता टूटा उसका दर्द संजो लिया, कोई अपमान हुआ उसे सीने में दफना लिया, कोई खुशी आई उससे इतने चिपक गए कि जाने न दे सके, और धीरे धीरे हम भारी होते गए। दर्पण यह नहीं करता, वो हर पल को पूरी तरह जीता है और फिर छोड़ देता है। अगला चेहरा आए तो वो उसके लिए भी उतना ही तैयार हो। जो छोड़ना जानता है वह पूरी तरह मिलना भी जानता है। पर दर्पण का एक गुण और है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। हम उसके सामने जाते हैं और चाहते हैं कि वो हमें सुंदर दिखाए, पर वो वही दिखाता है जो हम हैं, न कम न ज़्यादा। हमारी ज़िंदगी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दर्पण की तरह होते हैं, जो सच कहते हैं, जो तारीफ नहीं सच्चाई देते हैं। हम उनसे कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें कड़वा कहते हैं, पर सोचिए क्या आप कभी दर्पण से नाराज़ हुए? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं वो सच बोल रहा है। तो फिर उस इंसान से क्यों नाराज़ होते हैं जो आपका दर्पण बनने की कोशिश करता है? और सबसे गहरी बात, दर्पण खुद को कभी नहीं देख सकता, वो दूसरों को दिखाता है पर अपना चेहरा उसे कभी नज़र नहीं आता। क्या यह उसकी कमज़ोरी है? नहीं, यही उसकी निस्वार्थता है। वो अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए है, और शायद यही सबसे बड़ा जीवन का पाठ है। जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, जो देता है बिना लेने की चाह के, जो सच बोलता है बिना किसी स्वार्थ के, वो दर्पण बन जाता है। और दर्पण कभी पुराना नहीं होता। तो आज का चिंतन यह है, क्या हम अपनी ज़िंदगी में थोड़े दर्पण जैसे हो सकते हैं? जो सामने आए उसे पूरी तरह देखें, जो बीत जाए उसे जाने दें, जो सच हो वो कहें, और जो मिले उसे अपने भीतर न जमने दें। क्योंकि दर्पण की असली सुंदरता उसकी चमक में नहीं, उसके खालीपन में है। वो दर्पण आज भी दीवार पर टिका है, चुपचाप, निर्मल, तैयार हर नए चेहरे के लिए, हर नए पल के लिए। शायद हमें भी ऐसा ही होना है। रुकिए, सोचिए और खुद को थोड़ा खाली कीजिए।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख दक्ष का था, वाचक स्वर मयंक शर्मा के। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए खेती की बातें। मूंगफली के उपयोग में सामयिक सलाह के बारे में हमें जानकारी दे रही हैं प्रेरणा पहारे।
2: खेती की बात में आप सभी भाई बहनों को स्वागत है। आज आपका साथ में छे आपकी बहन प्रेरणा पहारे। तो स्वीकार करो हमारी राम राम। भाई बहनों, मूंगफली पूरा भारत की मुख्य तिलहनी फसल छे। एक ही खेती का लेना अच्छा जल निकासी वाली भुरभुरी दोमट न बलुई दोमट माटी सबसे अच्छी रहे। इस कारण छे कि मूंगफली अपना मालवा न निमाड़ की जलवायु न भूमि का हिसाब से मुख्य तिलहनी फसल का रूप में कई सारा किसान भाई बहन पसंद करज। नए की बाजार में मांग भी खूब छे। सोयाबीन का विकल्प का रूप में भी एको रुझान बढ़ी गयो। भुरभुरी न बलुई दोमट मिट्टी न पर्याप्त धूप एक ही पैदावार का लेना उपयुक्त छे। तो आज अपन मूंगफली की फसल से जुड़े बात करा। भाई बहन, मूंगफली कम लागत, कम सिंचाई न अच्छो बाजार भाव का कारण ई किसान भाई बहन का लेना लाभ देने वाली फसल छे। कदी किसान भाई सही तकनीक अपनावेगा तो प्रति हेक्टेयर में अधिक उत्पादन लियो जाई सकज। अभी जुलाई में हमारा कई सारा किसान भाई बहन ने मूंगफली की फसल को चयन कियो होएगा, न बुआई भी खरीदी होएगा, न कई किसान भाई बहन ऐसा होएगा जो कि बुआई की तैयारी में होएगा। तो आज अपन उन किसान भाई बहन से बात करांगा जो कि मूंगफली की बुआई की तैयारी में लगेल छे। तो भाई बहन, सबसे पहले तो ध्यान रखा कि कभी अपना खेत की माटी को परीक्षण नहीं कराड़े हो तो सबसे पहले खेत की माटी को परीक्षण कराड़े लेवा, जेका से जो भी पोषक तत्व की कमी छे माटी में उसकी पूर्ति समय पर की जा सके। एक साथ आज खेत की तैयारी की बात करा तो 2-3 बार गहरी जुताई करी देवा, अंतिम जुताई में पाटासी खेत का समतल करी देवा, न साथ में जमीन में दीमक न अन्य कीड़ा नसी फसल का बचाव का लेना क्विनस फोस 1.5% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई का साथ में जमीन में मिलाई देवा। बेबनोन साथ 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद भी मिलाई देवा। एकासी माटी में जल धारण क्षमता भी बढ़ेगा। इस बात को विशेष ध्यान रखा कि खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, नहीं तो फसल सड़ने की समस्या हो सकज। बेबनोन मूंगफली की उन्नत किस्म की बात करा तो JL24 GG20 TG37A मालवा न निमाड़ के जलवायु का अनुसार कुछ किस्म न को चुनाव कर सकोज। जैसा की TG37A ये कम समय में पकने वाली फसल छे न अच्छी उपज देने वाली किस्म छे। एक अलावा G201 भी ले सकोज, ई 110 से 120 दिन में तैयार होने वाली फसल छे। साथ JL24 न JL501 किस्म को भी चयन कर सकोज। ये हमारा कई सारा किसान भाई बहन एक पसंद करे क्योंकि ये भी अच्छी पैदावार दे। खरीफ फसल में मूंगफली की बुआई का लेना जून को अंतिम सप्ताह से लेने न जुलाई माह तक बुआई की जा सकज। बीज की मात्रा की बात करा तो फैलाने वाली किस्म का लेना 60 से 70 न गुच्छा वाली किस्म का लेना 75 से 80 किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहेगा। बीज का उपचारित जरूर सी करी लेवा। एक लेना बुवाई से पहले बीज का 3 ग्राम थायरम या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज का हिसाब से उपचारित करी सकोज। खाद न उर्वरक प्रबंधन की बात करा तो बुवाई से पहले मज खेत की तैयारी का समय 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर डाले देवा। न उर्वरक का लेना प्रति हेक्टेयर लगभग 20 ग्राम यूरिया 60 ग्राम फॉस्फोरस न 20 ग्राम पोटाश को उपयोग कर सकोज। एक अलावा मूंगफली में फली न का अच्छा विकास का लेना बुवाई से पहले खेत में 250 ग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर भी मिलाई सकोज। एकासी पौधा में कैल्शियम न सल्फर जैसा पोषक तत्व की कमी नहीं होती है। एक अलावा बुवाई का शुरुआती दिन से खेत में उगी रहा जो भी खरपतवार छे साफ कर देवा, नहीं तो एकासी मुख्य फसल खराब होएगा। साथ ही कृषि वैज्ञानिक न कृषि विशेषज्ञ ने की सलाह का अनुसार शाकनाशी फफूंदनाशी न खाद बीज न को चयन करा जो मिट्टी परीक्षण का आधार पर होएगा। जब पौधा में फूल आने लगा तो खुरपी से हल्की गुड़ाई कर सकोज, पर ध्यान रखा कि फसल का नुकसान नहीं होए। तो आज का लेना इतरोज छे। आज्ञा देव आपकी बहन प्रेरणा पहारे ख राम राम।
1: मूंगफली के बारे में सामयिक सलाह में दे रही थी प्रेरणा पहारे। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

भरद्वाज मुनि को श्री राम कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क ऋषि बोले, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तो धूल भी उसके लिए पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता काल स्वरूप और मामूली रस्सी सांप के समान काटने वाली बन जाती है। राजा प्रताप भानु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणों द्वारा अभिशप्त होकर राजा प्रताप भानु कालांतर में रावण नामक राक्षस हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्मा और मंत्री धर्मरुचि ने अपने ज्ञान, विवेक तथा आस्था के कारण विभीषण का शरीर पाया। रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ने कठिन तपस्या की। अपने उग्र तप के कारण रावण ने ब्रह्मा और शिव से ये वरदान प्राप्त किया कि वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर कोई उसका वध न कर सके। कुंभकर्ण का आहार देख ब्रह्मा भी आतंकित हो गए, अतः सरस्वती को प्रेरित कर उन्होंने उसकी मति फेर दी और उसने 6 महीने की नींद और मात्र 1 दिन का जागरण मांगा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें। आज सवेरे 7:20 पर होगा कार्यक्रम वसुंधरा। इसके अंतर्गत आज अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में चर्चा की जाएगी। 7:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुनहरे पल। आज सुबह 8:30 पर सुनना ना भूलें कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा, जिसका विषय होगा पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन कैसे बनाएं, बच्चों के मुख से। इस सेगमेंट के अंतर्गत आप सुनेंगे कविताएं, कहानी और गीत। जिज्ञासा के अंतर्गत जानिए वर्षा कैसे होती है। और दिन विशेष सेगमेंट के अंतर्गत कारगिल विजय दिवस के बारे में जानकारी दी जाएगी। तारा मिश्रा के गाए लोकगीतों का आनंद लीजिएगा लोकगीत में सवेरे 9:00। 9:15 पर सुनिएगा सुगम संगीत, कलाकार होंगे स्वतंत्र कुमार ओझा। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप आज सुनेंगे सतीश खानवलकर का गिटार वादन, राग होगा देसी।

0: जिले की चिट्ठी और 10:05 से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन में। इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 2710223 और 2710224 पर। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो हमें इंतजार रहेगा आपके फोन कॉल्स का। श्रोताओं, आज सवेरे 11 बजे से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात सभी देशवासियों से की जाएगी। और आइए अब आपको हमारे भोपाल केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें। दोपहर 12:02 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत संग्रहालय से, ये कार्यक्रम प्रसारित होगा 12:30 पर। दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम, लोक संगीत का समय रहेगा दिन में 1:30 और सुगम संगीत आप सुनेंगे दिन में 1:45 पर। दिन में 2:30 सुनिएगा बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान। हमारी शाम की सभा में 5:00 होगा युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:45 पर। सुगम संगीत का समय रहेगा शाम 6:30। कलाकार होंगे स्वतंत्र कुमार ओझा, तारा मिश्रा के गाय लोकगीत सुनिएगा लोक संगीत में। समय रहेगा शाम 6:45। खेती गृहस्थी का प्रसारण होगा शाम 7:20 पर। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। प्रभात रंजन से सुनिएगा वार्ता ऊर्जा की बचत। साथ ही होगा सुरेंद्र श्रीवास्तव का कविता पाठ और कुछ लोकगीत। रात्रि 8:00 हम रिले करेंगे भोपाल केंद्र से न्यूज रील सुर्खियों में। भोपाल से ही सुनिएगा कार्यक्रम डगर विकास की, समय रहेगा रात्रि 8:15। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:15 पर सुनना ना भूलें चित्र गीत और 9:30 पर होगा कार्यक्रम मन भावन। रात्रि 10:00 दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रविवासरीय संगीत सभा। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः स्वपदात् त्यागपत्रं दत्त्वा तत् प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने समर्पितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे श्री प्रधानः अवदत् यत् गत 10 दिनेषु छात्राणां विरोध प्रदर्शनानन्तरं उत्पन्नया परिस्थित्या सः अत्यन्तं व्यथितः अभवत्। एतद् स्वस्य प्रतिष्ठायाः विषयः नास्तीति इत्यपि तेन उक्तम्। असौ नवदिल्ल्यां जन्तरमन्तरस्थले विद्यमानां स्थितिं समग्रदेशस्य परिस्थितिं चावलोक्य निर्णयम् अकरोत्। श्रीप्रधानः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मार्गदर्शनाय विश्वासाय निरन्तरसहयोगाय च कृतज्ञतामपि प्रकटितवान्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् राष्ट्रसेवा तस्य जीवनस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति, सहैव जीवनपर्यन्तं तस्यै समर्पितः भविष्यतीति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः केन्द्रीयमन्त्रिपरिषदः धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रं तत्क्षणप्रभावेण स्वीकृतवती। धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं केन्द्रीयमन्त्री प्रह्लाद जोशी नूतनशिक्षामन्त्री भविष्यति। वर्तमानदायित्वेन सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि तस्मै समर्पितम्।
2: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल

0: to come to his expectation in this particular department, and I will, with full strength, I will try to work with all humility and honesty.
1: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया रोमानिया देशानाम आधिकारिक यात्रां सम्पन्नं कृत्वा अद्य प्रातः नवदिल्लीं प्रत्यागतवती। अस्यां यात्रायां अनेकानि ऐतिहासिक सोपानानि स्थापितानि, तेषु कस्यापि भारतीय राष्ट्रपतेः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया देशयोः प्रथमा आधिकारिक यात्रा, सहैव त्रिदशकानन्तरं रोमानिया देशस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा सम्मिलिता अस्ति। समग्र यात्रावधौ राष्ट्रपति पदासीना मुर्मुः विभिन्न देशानां राष्ट्राध्यक्षैः सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताः अकरोत्। व्यापार मञ्चान् सम्बोधितवती तथा भारतीय प्रवासी समुदायस्य सदस्यैः सह संवादमपि अकरोत्। प्रशासनं श्वः लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतत् विधेयकं सोमवासरस्य लोकसभा कार्यसूचौ समाविष्टम्। एतेन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनं भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतत् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। उल्लेखनीयमस्ति यत् गत शुक्रवासरे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोग प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिषु च कठोरतर दण्डविधानं सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पूर्वाह्ने 11 स्वीय मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचार विनिमयं करिष्यति। मन की बात इति मासिक कार्यक्रमस्य इदं 37-100 संस्करणं भविता। अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः प्रसारयिष्यते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शनं प्रधानमन्त्री कार्यालयः सूचना प्रसारण मन्त्रालयः इत्येतेषां यूट्यूब वाहिनीष्वपि द्रष्टुं शक्यते इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं 4:30 दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन 26,000 विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमस्य सहभागिभिः सह संवादं साधयिष्यति। 20-20 पुरुष क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन त्रिस्पर्धात्मक श्रृंखलायाः द्वितीय क्रीडायां जिम्बाब्वे दलं 90 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरूद्व कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
2: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है। वहीं सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का केन्द्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक

0: अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवां जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस वर्ष नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा के कुल 10 जत्थे भेजे जाने हैं। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने एफआईएच यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने एफआईएच यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीती है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। अब उनकी नजर लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल।
1: प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में होंगे।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 यूरोपीय देशों की यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात के 136वें एपिसोड में देश से संवाद। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज निवाड़ी को देंगे 193 करोड़ के कार्यों की सौगात। और प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी बनी रहेगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आईं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। ये मोल्दोवा और उत्तर मैसिडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा थी। वहीं रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद पहली राजकीय यात्रा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के

0: माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे 400 से अधिक युवा शामिल होंगे। ये कार्यक्रम पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में आयोजित किया गया था, जिसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के जरिए हुआ, जिसमें 3 लाख से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के बीच सहमति बन गई, जिसके बाद पार्टी ने अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन तत्काल प्रभाव से वापस लेने का ऐलान किया। CJP ने बताया कि सरकार ने उनकी सभी मांगे स्वीकार कर ली हैं, जिनमें नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को अधिकतम संभव मुआवजा देना भी शामिल है। पार्टी के अनुसार केंद्र और NDA शासित राज्यों में आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस ली जाएंगी और भविष्य में कोई नई कार्रवाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज निवाड़ी जिले को विकास कार्यों की सौगात देंगे। वे संयुक्त कार्यालय कलेक्टर भवन का लोकार्पण करेंगे और साथ ही करीब 193 करोड़ रुपए की लागत से बने 59 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। डॉ यादव निवाड़ी में 46 और पृथ्वीपुर में 29 राजस्व स्टाफ आवासों का लोकार्पण करेंगे और इसके अलावा जिला चिकित्सालय निवाड़ी के 100-बिस्तरी भवन को अपग्रेड किया जाएगा। जेवरा, पृथ्वीपुर और सेंद्री में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और संजीवनी क्लिनिक का भी लोकार्पण होगा। प्रदेश में पेपर लीक, नकल और परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े मामलों के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। हाईकोर्ट ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में इन अदालतों को नामित किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रूसिया की पहल पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीशों को इनकी जिम्मेदारी दी गई है। ये अदालतें प्रश्न पत्र लीक और अनुचित साधनों से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी और आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मामलों का निपटारा करेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शुक्रवार को पन्ना में इसका ऐलान किया था। सरकार का मानना है कि इससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और युवाओं का भरोसा बढ़ेगा।
1: हमारा प्रयास है हम सभी प्रकार के शिक्षा से जुड़े हुए मसलों को संवेदनशील तरीके से लेते हैं, चाहे शिक्षक वर्ग का हो चाहे विद्यार्थी वर्ग का हो। उल्लेखनीय है कि शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य मध्यप्रदेश है। 3 सरकारी विश्वविद्यालय खोलने के लिए भी मध्यप्रदेश ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में मौका दिया है। मैं उम्मीद करूंगा ऐसे सारे कामों से हम अपने विकास की गतिविधि, और ये किसी पे हम एहसान नहीं कर रहे, हमारी ड्यूटी है, ये हमारे अपने विद्यार्थियों के हित में लिए गए निर्णय।
0: दतिया उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल शाम दतिया में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार और संगठन समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं और उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी में हर समाज को प्रतिनिधित्व मिलता है, जबकि कांग्रेस पर उन्होंने परिवार आधारित राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पार्टी ने विभिन्न वर्गो के लिए अलग अलग मोर्चे और प्रकोष्ठ बनाए हैं ताकि सभी समाज को संगठन में उचित भागीदारी मिल सके। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपित उनकी सास और भोपाल की पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को फिलहाल राहत नहीं मिली है। विशेष CBI न्यायालय ने कल देर शाम उनकी नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि गिरिबाला सिंह वरिष्ठ नागरिक हैं और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं। वहीं CBI ने कहा कि सिर्फ उम्र या महिला होने के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती। अब गिरिबाला सिंह और सह आरोपी समर्थ सिंह न्यायिक हिरासत में रहेंगे। प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 90,000 अतिथि शिक्षकों के हित में

बड़ा फैसला लिया है। अब इन शिक्षकों को पूरे शैक्षणिक सत्र में 10 दिन का आकस्मिक अवकाश यानी सीएल मिलेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है। अब तक अतिथि शिक्षकों को सत्र में एक भी सीएल नहीं मिलती थी। नई व्यवस्था के तहत पदभार ग्रहण करते ही शिक्षक को एक दिन की सीएल मिलेगी और हर 30 दिन की सेवा पर एक अतिरिक्त सीएल जुड़ेगी। हालांकि एक बार में अधिकतम 3 सीएल ही ली जा सकेंगी। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। ये 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देने का दिन है। ये दिन उस विजय अभियान को याद दिलाता है जिसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी घुसपैठियों से रणनीतिक पर्वतीय शिखरों को वापस हासिल किया था। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहां 4 इंच या इससे अधिक पानी गिर सकता है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर सहित प्रदेश के 50 जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी बनी रहेगी। खंडवा में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था को और सुगम बना दिया गया है। जिला प्रशासन ने शनिवार को एकादशी के दिन नई दर्शन व्यवस्था लागू की है। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया कि सुखदेव मुनि द्वार के चौड़ीकरण का काम पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब श्रद्धालुओं को 10 फीट की दूरी से दर्शन कराए जा रहे हैं और दर्शन के बाद उनकी निकासी चांदी द्वार से की जा रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मंडला जिले के 196 वरिष्ठ नागरिक श्रद्धालुओं का दल कल मथुरा वृंदावन यात्रा के लिए रवाना हुआ। जिला योजना भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उइके ने बसों को हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को विदा किया। श्रद्धालुओं का ये दल बसों से नैनपुर पहुंचा, जहां से आगे की यात्रा रेल मार्ग से की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में कलेक्टर डॉ. योगेश तुकराम भरसेट ने कल सनसनीखेज अपराधों की समीक्षा की। बैठक में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। आगरमालवा जिला महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 6 दिवसीय इंडक्शन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला के ग्राम खटोला से 24 जुलाई को रेस्क्यू किए गए तेंदुए की उपचार के दौरान कल मृत्यु हो गई। वन विभाग के अनुसार तेंदुए को रेस्क्यू के बाद चिकित्सालय में निगरानी के लिए रखा गया था। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बीट बरबसपुर में कल एक मादा बाघिन का रेस्क्यू कर उसके गले में लगे रेडियो कॉलर को हटाकर उसे प्राकृतिक आवास जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। और शाजापुर पुलिस लाइन में कल रक्तदान और निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वसुंधरा।

नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन चोड़िया, प्रिस्टीन एनवायरमेंटल एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड की वरिष्ठ कार्यकारी। आज आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलती हूँ जो सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए यह सफर हमारी और आपकी जिंदगी और हमारे आने वाले कल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसे हम अक्सर अपनी नजर से, अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वेस्ट यानी कचरे की। लेकिन रुकिए, क्योंकि आज की कहानी कचरे की बदबू के बारे में नहीं है। आज की कहानी है कचरे से सोना बनाने की, कचरे से ऊर्जा बनाने की, और कैसे टेक्नोलॉजी और इच्छा शक्ति मिलकर एक शहर की तकदीर बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट की दुनिया में आ रही नई नई टेक्नोलॉजीज की। हम तोड़ेंगे कुछ ऐसे मिथक जो हम बरसों से सच मानते आ रहे हैं, और सबसे जरूरी हम बात करेंगे हमारे देश की शान, सफाई के सरताज इंदौर शहर की। वो केस स्टडी जिसने पूरे दुनिया को, यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक और हॉवर्ड को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। शुरुआत एक छोटे से सवाल से करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सुबह अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं या गाड़ी वाले को देते हैं, तो वो असल में जाता कहाँ है? भारत हर साल लगभग 62 मिलियन टन कचरा पैदा करता है। अगर हम इस कचरे को एक जगह इकट्ठा करें तो शायद कुछ ही सालों में हम माउंट एवरेस्ट जैसा एक पहाड़ खड़ा कर सकते हैं। दिल्ली के गाजीपुर में तो यह हो भी चुका है। पुराने जमानों का तरीका बहुत सिंपल था, कलेक्ट एंड डंप, यानी कचरा उठाओ और शहर के बाहर किसी खाली मैदान में फेंकाओ। इसे हम लैंडफिल कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जमीन भर चुकी है, हवा जहरीली हो रही है। आज वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ सफाई करना नहीं है, यह एक साइंस बन चुका है। पूरी दुनिया में एक से बढ़कर एक तकनीक आ रही है, जैसे कि IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। विदेशों में और अब भारत के कुछ हिस्सों में भी स्मार्ट बिन्स का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ साधारण डस्टबिन नहीं है, इनमें सेंसर्स लगे होते हैं। सोचिए, एक डस्टबिन जो खुद म्युनिसिपैलिटी को मैसेज भेजता है कि हे, मैं भर गया हूँ, मुझे खाली करो। इससे कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ सिर्फ वहीं जाती हैं जहाँ जरूरत है, जिससे पेट्रोल बचता है और शहर में ट्रैफिक भी कम होता है। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और रोबोटिक्स। कचरे की सबसे बड़ी समस्या है उसका मिक्स होना। हम प्लास्टिक, कांच, कागज और खाने का सामान सब एक साथ फेंक देते हैं, लेकिन अब ऐसी मशीनें आ गई हैं, ऐसे रोबोटिक्स आर्म्स आ गए हैं जो कन्वेयर बेल्ट पर चलते हुए कचरे को मिलीसेकंड्स में स्कैन करते हैं। उनके कैमरे पहचान लेते हैं कि कौन सा प्लास्टिक PET है, कौन सा HDPE, और फिर वो मशीनें हवा के प्रेशर से उन्हें अलग अलग कर देती हैं। जो काम इंसान घंटों में करता था, वो ये AI मिनटों में कर रहा है। एक और कमाल की टेक्नोलॉजी है प्लाज्मा गैसिफिकेशन। यह नाम थोड़ा सा भारी है, लेकिन काम बहुत जादुई है। इसमें कचरे को जलाया नहीं जाता, बल्कि उसे हजारों डिग्री तापमान पर पिघला दिया जाता है। इससे कचरा भाप नहीं बनता, बल्कि एक गैस बन जाती है, जिसे सिन गैस यानी कि सिंथेसिस गैस कहते हैं, जिससे बिजली बनाई जा सकती है, यानी कचरा गायब और बदले में मिली बिजली। लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी अपनी जगह है और हमारी सोच अपनी जगह। जब तक हम अपने दिमाग के जाले साफ नहीं करेंगे, सड़कों का कचरा साफ नहीं होगा। हमारे समाज में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारे मिथक यानी मिथ्स हैं। चलिए आज इनका पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहला मिथक है, कचरा तो वेस्ट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। फैक्ट यह है कि कचरा आज के दौर में एक रिसोर्स है, एक संसाधन है। इसे सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। आपका फेंका हुआ टूथ ब्रश, शैम्पू की बोतल या आलू के छिलके, इन सब में पैसा है। आज कचरे से सड़कें बन रही है, कचरे से टाइल्स बन रही है, और जैसा कि हम आगे बातें करेंगे, कचरे से बसेस भी चल रही है। तो कचरा ट्रैश नहीं, कैश है। दूसरा बड़ा मिथक, अगर मशीनें सारा काम करेंगी तो गरीब कचरा बिनने वाले यानी कि रैज पिकर्स का क्या होगा, उनकी तो रोजी रोटी छिन जाएगी। ये सुनने में बहुत इमोशनल लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में इन रैज पिकर्स को नौकरी से निकाला नहीं जाता, बल्कि उन्हें सिस्टम का हिस्सा बनाया जाता है। उन्हें वेस्ट वॉरियर्स का नाम दिया जाता है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, यूनिफॉर्म दी जाती है और सेफ्टी गियर्स भी दिए जाते हैं। जो लोग पहले गंदे नालों में

हाथ डालकर प्लास्टिक बनते थे, आज वो इज्जत के साथ सॉर्टिंग सेंटर्स में काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने उनका रोजगार छीना नहीं बल्कि उनकी डिग्निटी बढ़ाई है। और तीसरा सबसे खतरनाक मिथक, सफाई करना तो सरकार का काम है, हम तो टैक्स भरते हैं। दोस्तों, आप कितना भी टैक्स भर दें, दुनिया की कोई भी सरकार आपके घर के अंदर आकर कचरा अलग नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी वहीं फेल हो जाती है जहां सोर्स सेग्रीगेशन नहीं होता। अगर आपने गीला और सूखा कचरा मिला दिया तो वो किसी काम का नहीं रहता। और इसी बात को सबसे बेहतर समझा है भारत के दिल मध्य प्रदेश के शहर इंदौर ने। इंदौर की कहानी कोई जादू नहीं है, यह क्रांति है। लगातार 7 बार भारत का सबसे साफ शहर बनना कोई तुक्का तो नहीं होता ना। तो आखिर इंदौर ने ऐसा क्या किया, चलिए इस इंदौर मॉडल को डीकोड करते हैं। इंदौर की सफलता की नींव है 100% सोर्स सेग्रीगेशन। इंदौर ने सबसे पहले शहर से सारे बड़े कूड़ेदानों यानी कि डस्टबिन्स को हटा दिया। सुनने में तो रिस्की लगता है ना कि डस्टबिन हटा देंगे तो लोग सड़क पर कूड़ा फेंकने लगेंगे, लेकिन इंदौर ने डोर टू डोर कलेक्शन को इतना मजबूत किया कि लोगों को बाहर फेंकने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इंदौर में कचरा 2 या 3 नहीं बल्कि 6 अलग अलग श्रेणियों में लिया जाता है। गीला कचरा, सूखा कचरा, हानिकारक कचरा जैसे कि डायपर, नैपकिन एंड अदर सैनिटरी वेस्ट, प्लास्टिक, ई वेस्ट एंड घरेलू खतरनाक कचरे जैसे कि पेंट के डिब्बे, एक्सपायर्ड दवाइयाँ। यहाँ का नियम बहुत सख्त है, अगर आपने कचरा मिक्स करके दिया तो यहाँ गाड़ी वाला कचरा लेगा ही नहीं और जरूरत पड़ने पर चालान भी काटेगा। शुरुआत में लोगों को परेशानी हुई, गुस्सा भी आया, लेकिन आज यह इंदौरियों की आदत है और अब गर्व भी बन चुका है। अब आप सोचेंगे इतना अलग किया हुआ कचरा जाता कहाँ है आखिर। यही इंदौर की असली जीत है, वेस्ट टू वेल्थ। इंदौर में देवगुराड़िया नाम की एक जगह है जो कभी कचरे के पहाड़ों यानी कि ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए बदनाम थी। वहां जाने पर बदबू से दम घुटता था। आज वहां एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट खड़ा है जिसका नाम है गोबर्धन। यहां क्या होता है, पूरे शहर का गीला कचरा लगभग 550 टन रोजाना यहाँ लाया जाता है। इसे प्रोसेस करके इससे बायो सीएनजी गैस बनाई जाती है। और सुनिए सबसे मजेदार बात, इंदौर की 400 से ज्यादा सिटी बसेस इसी गैस से चलती है। इससे न सिर्फ पेट्रोल और डीजल का पैसा बच रहा है बल्कि पर्यावरण भी साफ हो रहा है। इंदौर नगर निगम इस कचरे को प्रोसेस करके हर साल करोड़ों रुपए कमा रहा है और कार्बन क्रेडिट्स भी बेच रहा है। लेकिन सूखे कचरे का क्या, सूखे कचरे के लिए बड़े बड़े मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज बनाए गए हैं। यहाँ मशीनें और हमारे सफाई मित्र मिलकर प्लास्टिक, कागज, मेटल को अलग करते हैं और ये अलग किया हुआ सामान रिसाइकल होने के लिए बिक जाता है। जो प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो सकता उसे सीमेंट फैक्ट्रियों और सड़क बनाने के लिए भेज दिया जाता है, यानी कि जीरो लैंडफिल मॉडल। कचरा जमीन में दबाया ही नहीं जा रहा है, सब कुछ यूज किया जा रहा है, सब कुछ रिसाइकल और रिसोर्स की तरह यूज किया जा रहा है। इंदौर ने एक और बहुत बड़ा काम किया है जो कि है लेगेसी वेस्ट रेमेडिएशन यानी पुराने कचरे का इलाज। इंदौर के डंपिंग ग्राउंड में बरसों पुराना लाखों टन कचरा पड़ा था। इंदौर ने बायो माइनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, बड़ी बड़ी ट्रॉमेल मशीनों ने उस पुराने कचरे को खोदा, छाना और अलग अलग किया, प्लास्टिक को जलाकर खत्म किया, मिट्टी को साफ किया। नतीजा, जहां कभी कचरे के पहाड़ थे आज वहां 100 एकड़ जमीन खाली करा ली गई है। उस जमीन की कीमत आज 400 करोड़ से ज्यादा है। वहां अब सिटी फॉरेस्ट और गार्डन बन रहे हैं। सोचिए कचरे के ढेर को जंगल में बदल देना, यह किसी चमत्कार से तो कम नहीं है। और इन सब के पीछे टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। इंदौर की हर कचरा गाड़ी में जीपीएस लगा है, एक सेंट्रल कमांड सेंटर है जो किसी नासा के रूम जैसा दिखता है। वहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर देखा जाता है कि कौन सी गाड़ी किस गली में गई, कहाँ रुकी, कहाँ नहीं गई। अगर गाड़ी आपके घर नहीं आई तो आप ऐप पर शिकायत भी कर सकते हैं और तुरंत एक्शन भी होता है। यहाँ कोई काम चोरी नहीं कर सकता, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेशन का परफेक्ट मेल। दोस्तों, इंदौर की कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्या कचरा नहीं है, समस्या मैनेजमेंट है। अगर इंदौर कर सकता है तो भोपाल, दिल्ली, मुंबई या आपका शहर क्यों नहीं। लेकिन इंदौर मॉडल की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी
कोई मशीन

या कोई रोबोट नहीं है, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है जन भागीदारी यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन। इंदौर के लोगों ने अपनी आदतें बदली, उन्होंने सड़क पर थूकना बंद किया, कार की खिड़की से रैपर फेंकना बंद किया और गीला सूखा अलग करना अपनी शान समझा। वहाँ के लोग अगर किसी को कचरा फेंकते हुए देखते भी हैं तो टोक देते हैं। यह जो ऑनरशिप है ना, यही सबसे जरूरी है। अब हम इस बातचीत के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने टेक्नोलॉजी देखी, हमने बायो सीएनजी प्लांट देखा, हमने इंदौर का जज्बा देखा। अब सवाल यह है कि आप और मैं क्या कर सकते हैं? क्या हमें भी कोई बड़ा प्लांट लगाना होगा या नहीं? तो नहीं, हमें सिर्फ एक छोटा सा बदलाव लाना है, आज ही, अभी से, और अपने घर में ही एक सिस्टम बनाइए। दो डस्टबिन, एक हरा गीले कचरे के लिए और एक नीला सूखे कचरे के लिए। सिर्फ इतना करने से आप लैंडफिल में जाने वाले कचरे को 50% तक कम कर देते हैं। जब आप कचरा अलग करके देते हैं तो आप उस सफाई मित्र की मदद करते हैं, आप उस मशीन की मदद करते हैं और आप अपने बच्चों के लिए एक साफ पर्यावरण छोड़ कर जाते हैं। टेक्नोलॉजी भविष्य है, इसमें कोई शक नहीं। आने वाले समय में शायद पाइपलाइन से कचरा खींच जाए या हमारे पास पर्सनल वेस्ट प्रोसेसर्स हो, लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता, जिम्मेदारी हमारे हाथों में है। याद रखिए, हम अपने घर को मंदिर मानते हैं तो अपने शहर को डस्टबिन क्यों मान लेते हैं? शहर भी तो हमारा बड़ा घर है। तो चलिए आज एक वादा करते हैं, नॉट इन माय बैकयार्ड वाली सोच को छोड़कर माय वेस्ट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सोच अपनाएंगे, कचरा कम करेंगे, रीयूज करेंगे और रिसाइकल करेंगे। क्योंकि दोस्तों, सफाई में ही भलाई है और सफाई में ही कमाई है। उम्मीद है आज की ये बातें आपको सोचने पर मजबूर करेंगी और एक छोटा सा बदलाव आपकी लाइफस्टाइल में जरूर लाएंगी। इसी उम्मीद के साथ कि अगला क्लीनेस्ट सिटी आपका शहर होगा, मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने शहर का ख्याल रखिए। कीप इट क्लीन, कीप इट ग्रीन। जय हिंद।

समुद्र जिसके वस्त्र हैं, पर्वत जिसके स्तन, ऐसी विष्णु पत्नी पृथ्वी को मेरा नमन है। हे माँ, पैरों से स्पर्श करने के लिए तू मुझे क्षमा कर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वसुंधरा, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए, अब प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल।

सभी श्रोताओं को रूपाली का नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम सुनहरे पल में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे गीत जिनमें माउथ ऑर्गन या हारमोनिका का सुंदर प्रयोग हुआ है। ये छोटा सा वाद्य यंत्र पॉकेट साइज भी होता है, जिसे आप आसानी से जेब में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। इसे बजाने से गहरी सांस लेने और छोड़ने की कला में सुधार होता है, जिससे हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। तो आज कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं उस गीत से, जिसे सुनते ही माउथ ऑर्गन की मधुर तान कानों में गूंज उठती है। ये सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि हिंदी फिल्म संगीत में हारमोनिका की पहचान है। देवानंद की दिलकश अदाएं, हेमंत कुमार की मखमली आवाज़ और एसडी बर्मन का कालजयी संगीत, इन सब का एक ऐसा संगम बना कि ये गीत आज भी नई पीढ़ी के दिलों को छू लेता है। गीत की शुरुआत में बजती माउथ ऑर्गन की धुन मानो एक मुसाफिर की बेफिक्र जिंदगी का परिचय देती है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं वो गीत जो जिंदगी को मुस्कुराते हुए जीने की कला हमें सिखाता है। इसकी धुन में हारमोनिका का ऐसा खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है कि सुनते ही मन हल्का हो जाता है। ये धुन मानो कहती है, चिंताओं को धुएं में उड़ाइए और हर पल को खुलकर जी लीजिए। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, देवानंद का सहज अभिनय और जयदेव का संगीत इस गीत को अमर बना देता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत जो आज भी हर पीढ़ी को प्रेरित करता है।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: श्रोताओं, अब बारी है एक ऐसे गीत की जिसमें मस्ती भी है, शरारत भी है और सफर का आनंद भी। माउथ ऑर्गन की धुन जब शुरू होती है तो मन अपने आप गुनगुनाने लगता है। किशोर कुमार की चुलबुली आवाज, देव आनंद की अदाएं इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना देती हैं। यही वजह है कि हारमोनिका सीखने वाला कलाकार आज भी इस धुन को सबसे पहले बजाने की कोशिश करता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं कश्मीर की कली, इस फिल्म से वो गीत जिसमें मोहम्मद रफ़ी की दिलकश आवाज़ है और ओपी नैयर का शानदार संगीत है। इस गीत में माउथ ऑर्गन केवल सजावट नहीं बल्कि भावनाओं को और गहराई देने वाला एक महत्वपूर्ण संगीत तत्व बनकर उभरता है। इसकी धुन सुनते ही पुरानी यादें जैसे फिर से ताज़ा हो जाती हैं।

श्रोताओं, ठंडी हवाएं, पहाड़ों की वादियां और प्यार भरा एहसास, इन सबको सुरों में पिरोता है ये सदाबहार गीत जो हम आपको अब सुनाने वाले हैं। आरडी बर्मन ने इसके संगीत संयोजन में हारमोनिका का बेहद आकर्षक प्रयोग किया है जो गीत के रोमानी माहौल को और भी खूबसूरत बना देता है। किशोर कुमार की आवाज़ इस गीत को ऐसी मिठास देती है कि इसे सुनने का बार बार मन करता है।

श्रोताओं, माउथ ऑर्गन आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी धुनों का संसार बहुत विशाल है। कभी ये मुसाफिर की बेफिक्री बनकर बजता है, कभी प्रेम की भाषा बोलता है और कभी जिंदगी का फलसफा सुनाता है। हिंदी सिनेमा ने इस छोटे से वाद्य को बड़े प्यार से अपनाया और हमें कई ऐसे गीत दिए जो आज भी सदाबहार हैं। उम्मीद है आज का ये हारमोनिका स्पेशल आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे कुछ और गीतों के साथ। इस वक्त मुझे यानी रूपाली को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार का लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरूद्व कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
7: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है।
6: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
7: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम।
6: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
8: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
6: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रही हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
9: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
6: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
10: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी

0: इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
2: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने एफआईएच यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने एफआईएच यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: though. A U.S. federal appeals court has rejected President Trump's bid to revive the H-1B visa fee of $100,000 for highly skilled foreign workers, reports Hindustan Times. Flood situation in Assam remained grim even as water level has started receding, reports the Pioneer. India's ancient Buddhist site of Sarnath has been inscribed on the UNESCO World Heritage List after a 28-year wait, reports the Statesman. The Times of India has quoted an international study that reveals that over half of world's migratory bird species are on a decline. And finally, in a significant technological step forward for the tea plantation sector and in a first, a tea company in Munnar is using drone-based transport to move freshly harvested green leaves to weighing centers and processing factories in Kerala, writes The Hindu. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning. Kargil Vijay Diwas being observed today to honour bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during 1999 Kargil War. Anahat Singh creates history by becoming first Indian to win girls singles final of World Junior Squash Championships. And Indian sub-junior men's team beat Pakistan 3-1 to clinch gold at FIH Youth Hockey 5S Asian Championships. Women's team bagged silver medal. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है. लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे.
3: कल के सितारे बच्चे हमारे.
4: बच्चों जय हिंद.
5: जय हिंद प्यारे बच्चों. रिमझिम फुहारों के साथ हाजिर हूँ मैं शालिनी सोनी आपका पसंदीदा कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे लेकर. और कैसे हैं प्यारे बच्चों, कैसा लग रहा है स्कूल में? आशा करती हूँ कि आप सभी के टेस्ट हो गए होंगे क्योंकि जुलाई माह लगभग समाप्ति पर है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया गए होंगे, है ना प्यारे बच्चों? तो जल्दी जल्दी पास आ जाइए अपने अपने रेडियो सेट के क्योंकि आज मैं और आप मिलकर करने वाले हैं ढेर सारा मज़ा. लेकिन सबसे पहले बात बच्चों एक ऐसे विषय की जो हर बच्चे से जुड़ी ही हुई है, बात पढ़ाई की और खेल दोनों की, क्योंकि दोनों ज़रूरी हैं, है ना? तो सबसे बड़ी बात इन दोनों के बीच संतुलन बैठाने की प्यारे बच्चों. बच्चों आप सभी जानते हो ना कि पढ़ाई बेहद ज़रूरी है. पढ़ाई ही तो आपके भविष्य की मजबूत नींव है और पढ़ाई करके आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हो, है ना प्यारे बच्चों? लेकिन क्या पढ़ाई ही पर्याप्त है? तो इसका जवाब है नहीं. जी हाँ, इसका जवाब है नहीं. क्योंकि प्यारे बच्चों जिस तरह स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन ज़रूरी है, उसी तरह मन को स्वस्थ रखने के लिए खेलना भी बेहद ज़रूरी है. खेलकूद से हमारी शरीर की जो मजबूती है वो आती है, मन खुश रहता है और हाँ, हम अनुशासन, टीम भावना, धैर्य और हार जीत को स्वीकार करना सीख लेते हैं. लेकिन प्यारे बच्चों आजकल आप लोग या तो केवल पढ़ाई में लगे हो सुबह से शाम तक, स्कूल, कोचिंग, या तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतना समय खेलकूद में बिता देते हैं कि पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं देते. बच्चों ये दोनों स्थितियां ठीक नहीं हैं. सफलता पाने के लिए पढ़ाई और खेल दोनों के बीच संतुलन बेहद ज़रूरी है बच्चों. अब बात ये कि संतुलन कैसे बनाया जाए. जी हाँ, तो इसका एक आसान सा उपाय मैं आपको बता देती हूँ, वो है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट. बच्चों अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही होगा ना आपका, तो आप खेल और पढ़ाई दोनों कर पाएंगे. बच्चों स्कूल से आकर थोड़ा सा आराम करिए, फिर अपना होमवर्क करिए और कुछ देर बाहर खेलने जाइए, मिलजुल कर अपने दोस्तों से मिलिए, शारीरिक गतिविधियां करिए, फिर शाम को वापस थोड़ी देर पढ़ाई दोहराइए और समय पर सो जाइए. ताकि सुबह सुबह

आप समय पर जागें और स्कूल जाएं। प्यारे बच्चों, खेल का मतलब मोबाइल गेम या वीडियो गेम करते ही नहीं है, समझे? तो मोबाइल से दूर रहना है। बच्चों, याद रखिए कि जीवन में वही आगे बढ़ता है जो पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखता है। संतुलित दिनचर्या आपको खुश, स्वस्थ, सफल और आत्मविश्वासी बनाएगी। इसलिए बच्चों, रोज मन लगाकर पढ़ना है, कुछ समय खेलना भी है।

0: आज बच्चों की बगिया को गुलजार करने हमारे साथ हैं प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने मेहमान। तो आइए मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनसे प्यारी प्यारी कविताएं और कहानियां भी। तो चलिए शुरू करते हैं स्तुति के साथ, शिव स्तुति सुनते हैं।
1: नमस्ते, मेरा नाम है स्तुति। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ शिव स्तुति।

0: करा। धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया स्तुति। मनस्वी आप भी आगे आइए और बताइए कि हमें क्या सुनाने वाली हैं।
2: ये कविता का शीर्षक है बेटियाँ। बहुत चंचल बहुत खुशमन सी होती है बेटियाँ, नाजुक सा दिल रखती है मासूम सी होती है बेटियाँ। रहमत से भरपूर खुदा की नियामत होती है बेटियाँ, माँ उठता है जब घर मुस्कुराती है बेटियाँ। उसको तकलीफ होती है जब दूसरों के घर जाती है बेटियाँ, माँ की प्यारी बाबुल की दुलारी होती है बेटियाँ। यह हम नहीं कहते ये तो रब कहता है कि जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो जन्म लेती है बेटा। धन्यवाद।
1: वाह मनस्वी, तालियां आपके लिए। त्रिशा अब आपकी बारी है।
3: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम त्रिशा पाटीदार है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको हिंदी में कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, निश्चरण तरे झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग घटा निराली पग पग जहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ग भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने उनके झरते जिसकी पहाड़िया में चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में अमराइया घनी है, कोयल पुकारती है बहती मलय पवन है, तन मन सवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। धन्यवाद।
1: भाविका और प्रज्वल अब आप कोई इंग्लिश पोयम सुना दीजिए।
4: नमस्ते, मेरा नाम भाविका है और आज मैं आपको इंग्लिश में एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है माई स्कूल माई प्राइड। माई स्कूल माई प्राइड, वेयर वी हैड अ वंडरफुल स्कूल राइट, वी रीड वी राइट and make a future bright. We learn to respect, not to neglect. We learn to accept, not to expect. We laugh, we cry. We play, we study with the best buddy. Respect elders, obey parents, become sincere and punctual is the habit we learn. And that is why we call my school my pride. Thank you.
5: Hello everyone, I am Prajwal Dasure from class 8 and the topic for my poem is failure. Failure is a rocky hill, climb it with a will. Failure is a broken bone, set it green and do not groan. Failure is a tangled string, puzzle out a knotted thing. Failure is a river swift, swim and do not drift. Failure is a black morass, cross a dear tuft of grass. Failure is a treacherous beat, scramble clamber out of it. Failure is an inky night, seeing expect the morning light. Failure is an ugly coal, fuse it to a diamond soul. Thank you.
1: चलिए अब बारी है सादगी के प्यारे प्यारे गीत की।
6: नमस्कार, मेरा नाम सादगी रामेंदु है। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसे लिखा है प्रमोद तिवारी ने।

0: धन्यवाद।
1: वाह प्यारे बच्चों, इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बच्चों, मौसम भी देखो ना, बड़ा खुशनुमा हो रहा है। रिमझिम फुहारें हम सभी को रिझाती हैं और आपका भी मन ललचता होगा ना कि थोड़ा सा भीग जाएं, रिमझिम फुहारों में नहा लें, कागज़ की नाव बनाकर पानी में बहाने का, है ना बच्चों? बच्चों, बारिश के प्राकृतिक चक्र को आप सभी जानते हो, और नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल यही बारिश का चक्र ही पृथ्वी पर जीवन संभव बनाता है। सूर्य की गर्मी से नदियों, महासागरों, झीलों का जल भाप में बदल जाता है और वायुमंडल में ऊपर उठता है, और जब वायुमंडल या एटमॉस्फेयर का तापमान कम होता है तो बाष्प ठंडी होकर इकट्ठी हो जाती है, जिसे हम बादलों का संघनन बोलते हैं। और बच्चों, जब ये बादल आपस में मिलते हैं तो वर्षा जल के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, और यही जल चक्र चलता रहता है। लेकिन बच्चों, अगर हम प्रदूषण अधिक करते हैं, पेड़ों की अधिक कटाई करते हैं, तो ये जल चक्र डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए बच्चों, हमें अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जो ये समय है ना, वो बहुत सुनहरा समय है, बहुत अच्छा समय है जो ये मानसून का मौसम है। इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना है, पौधे लगाने हैं। हाँ, अकेला वृक्षारोपण करना या पौधे लगाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन पौधों की देखभाल भी हमें करनी है, ताकि हम प्रकृति के

0: बच्चों अब हमारे साथ हैं सृष्टि शुक्ला जो आप सबको एक प्रेरणाप्रद कहानी सुनाने जा रही हैं, जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा हथियार। तो आइए सुनते हैं ये कहानी।
1: मैं सृष्टि शुक्ला कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी को अकबर बीरबल की प्रसिद्ध कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा हथियार। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है। सभी दरबारी सोच में पड़ गए, किसी ने कहा तलवार, किसी ने कहा तोप, किसी ने कहा सेना। अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। तब बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। अकबर चौंक गए और बोले, वो कैसे। बीरबल ने कहा, जहाँ पना कल सुबह तालाब के किनारे आइए, मैं साबित कर दूंगा। अगली सुबह कड़कड़ाती ठंड थी, अकबर तालाब पर पहुँचे, देखा कि बीरबल का एक नौकर कमर तक पानी में खड़ा है। अकबर ने पूछा, ये यहाँ क्यों खड़ा है। बीरबल बोला, हुजूर मैंने इसे कहा कि जब तक सूरज ना निकल आए ये

0: पानी से बाहर नहीं आएगा। अगर ये टिका रहा तो इसे इनाम मिल जाएगा। पूरा दिन बीत गया। शाम को सूरज डूबने लगा पर निकला नहीं, क्योंकि सर्दियों के दिन थे। नौकर ठंड से कांपता रहा पर पानी से निकला नहीं। रात हुई तो अकबर को दया आ गई। उन्हें नौकर को बाहर निकाला, बुलाया और गर्म कपड़े दिए। फिर अकबर ने पूछा, इसे इतनी ठंड कैसे सहली? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर सामने महल में एक दिया जल रहा है। ये पूरी रात उस दिए को देखता रहा और सोचता रहा कि रोशनी पास है, गर्मी लगेगी।
1: बच्चों, अभी हम सुन रहे थे कहानी सबसे बड़ा हथियार, और इसमें बात हो रही थी धैर्य की। बच्चों, आज का दिन जो है वो कारगिल युद्ध याद करने का दिन है। जी हाँ बच्चों, आज आप जानते हैं कि आज है कारगिल विजय दिवस। ये हर दिन जो आज का दिन है वो हर भारतीय के लिए खास है। आज के दिन सन 1999 में हमारे वीर जवानों ने कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर तिरंगा लहराया था। ये दिन उन जावाज सैनिकों को और उनकी बहादुरी बलिदान को याद करने का है बच्चों, जिन्होंने देश की रक्षा के खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी। प्यारे बच्चों, आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कारगिल की जो लड़ाई थी ना, वो दुनिया की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक थी। बेहद कम तापमान और जमा देने वाली ठंडक में भी हमारे सैनिकों का हौसला हिमालय से भी ऊँचा था बच्चों। बच्चों, आज के इस ऐतिहासिक दिन पर हम सब मिलकर अपने देश के सुपर हीरोज़ को सलाम करते हैं और गर्व करते हैं कि हम इस हिंदुस्तान के बच्चे हैं।

जन्म आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम कहने का।

0: प्यारे बच्चों, बारिश के दिनों में अपनी सेहत का ख्याल आपको रखना है। जी हाँ, बाहर से आने के बाद हाथ मुंह अच्छे से साफ सुथरे होने चाहिए, हैंड वॉश ज़रूर करना है, और अगर आप भीग गए हैं तो कपड़े तुरंत बदलें, सूखे साफ सुथरे कपड़े पहनें, ठंडक से बचें, बाहर का खाना पीना भी थोड़ा सा अवॉइड करें बच्चों, साफ उबला या आरओ का पानी ही पिएं, गर्म ताज़ा खाना खाएं। और हाँ बच्चों, एक बात का ख़ास ख्याल रखना है इन दिनों कि अगर आप खेल रहे हैं तो आसपास बिजली के खंभे हैं या तार हैं बिजली के, तो आपको उनसे दूर रहना है, अनावश्यक भीगना भी नहीं है और ना ही बीमार पड़ना है बच्चों। बच्चों, दीदी की यही कामना है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार, और अब दे बच्चों अपनी दीदी शालिनी को अनुमति। जय हिंद,
1: जय हिंद।
2: कल के सितारे बच्चे हमारे,

0: कल के सितारे बच्चे हमारे।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है लोक संगीत। आज आप सुनेंगे तारा मिश्रा के गाए कुछ लोकगीत। तो सबसे पहले सुनिए ये लोकगीत।

अभी आपने सुने तारा मिश्रा के स्वर में कुछ लोकगीत। लोक संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं स्वतंत्र कुमार ओझा।

0: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से।
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आइए अब सुने स्वतंत्र कुमार ओझा की पेश की गई ये गजल।

इस गीत के साथ ही सुगम संगीत समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज आप सुनेंगे सतीश खानवलकर का गिटार वादन। राग है देसी।

अभी आप सुन रहे थे सतीश खानवलकर का गिटार वादन, राग था देसी। शास्त्रीय संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख दिनेश प्रजापति, वाचन स्वर शरद बाघेला। जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात स्वास्थ्य सुविधाओं की। राज्य सरकार ने जावद सिविल अस्पताल को 100 बिस्तरों और सिंगोली के अस्पताल को 50 बिस्तरों का बनाने की मंजूरी दे दी है। इससे इलाज की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। भविष्य में विशेषज्ञ डॉक्टर, आधुनिक उपकरण और नई स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। नीमच में नशा मुक्ति भारत अभियान की शुरुआत साइकिल रैली से हुई। इस अभियान का मकसद युवाओं को नशे से दूर रखकर खेल और अच्छी गतिविधियों की ओर प्रेरित करना है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान 30 जुलाई तक जिले भर में चलेगा। इस दौरान स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिले में एक फैक्ट्री में करीब 200 कर्मचारियों ने नशा न करने की शपथ ली। कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। ये कार्यक्रम प्रदेश भर में चल रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान का हिस्सा है। जिले में कम बारिश से किसान चिंतित हैं। अच्छी बारिश की कामना के लिए ग्रामीणों ने घास बावजी धाम पर पूजा और यज्ञ किया। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। लोगों ने अच्छी फसल और सुख समृद्धि की प्रार्थना की। परंपरा के अनुसार कई परिवारों ने खुले स्थानों पर भोजन भी किया। श्रद्धालुओं का कहना है कि ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और गांव के लोग हर साल इसमें भाग लेते हैं। आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानी वेणीराम पाटीदार का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पुलिस ने गॉड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। नीमच में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के स्वागत में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शहर देर रात तक भक्ति के रंग में डूबा रहा। स्वामी कैलाशानंद गिरी इस विशेष विमान से नीमच पहुंचे। उनके सम्मान में धर्म सभा का भी आयोजन किया गया। जिले में रेडक्रॉस भवन में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। इसमें 200 से ज्यादा लोगों की आंखों की जांच की गई। जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त दवाइयां, चश्मे और ऑपरेशन की सुविधा भी दी जाएगी। नीमच जिले में फूलपुरा गांव में किसान प्रकाश खुआर दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन रहे हैं। उन्होंने रासायनिक खाद छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाई। इससे खेती की लागत घटी और मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर हुई। अब वे जैविक खाद खुद तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे फसल की गुणवत्ता भी सुधरी है। आसपास के किसान भी अब इस खेती के तरीके में रुचि दिखा रहे हैं। फादर डे पर जीरन पुलिस ने एक बुजुर्ग पिता को उनके घर वापस दिलाने में मदद की। बेटे और बहू से विवाद के बाद बुजुर्ग लंबे समय तक आश्रमों में रह रहे थे। गांव लौटने पर भी उन्हें घर में नहीं रहने दिया गया। पुलिस के समझाने के बाद परिवार में सुलह कराई गई और बेटे ने अपनी गलती मानी। इसके बाद बुजुर्ग को सम्मान के साथ उनके घर में वापस रहने की व्यवस्था कराई गई। जावद के अठाना और डिकेन में मुहर्रम श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया गया। लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद किया। इस दौरान मजलिस और मातम का आयोजन हुआ। नीमच में अफीम नीति 2026-27 को लेकर किसानों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में किसानों से 50 से ज्यादा सुझाव लिए गए। इन्हें अंतिम रूप देकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। नई नीति को किसान हितैषी और ज्यादा पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि किसानों के सुझाव नीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नीमच, मंदसौर और रतलाम में जब्त किए गए करीब 115 टन मादक पदार्थ नष्ट किए गए। इनकी कीमत 200 करोड़ रुपए

से ज्यादा बताई गई है। कार्रवाई न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद की गई। नशीले पदार्थों को सीमेंट फैक्ट्री के बॉयलर में नष्ट किया गया। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई का हिस्सा है। जिले की पुलिस ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए जीवन संजीवनी अभियान शुरू किया है। जिले के 22 दुर्घटना संभावित स्थानों पर सड़क सुरक्षा मित्र तैनात किए जाएंगे। उन्हें CPR और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसका मकसद हादसे के बाद घायल लोगों को समय पर मदद पहुंचाना है। नीमच नगर पालिका ने शहर को हरा भरा बनाने के लिए पौधरोपण अभियान चलाया है। जून महीने में शहर के अलग अलग इलाकों में करीब 80,000 पौधे लगाए गए। अभियान की शुरुआत पर्यावरण दिवस पर हुई थी। इसके तहत पीपल, नीम, जामुन और आम जैसे पौधे लगाए गए। नीमच जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: नीमच जिले की चिट्ठी का प्रसारण अभी आपने सुना। आलेख था दिनेश प्रजापति का और वाचन किया था शरद बाघेला ने। ये आकाशवाणी है, कुछ ही पलों में
1: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन।
2: हेलो एमएच हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन की सभी श्रोता स्वीकारें आपकी रेडियो दोस्त रूपाली चौहान का नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में फोन कॉल के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करने के लिए फ़ोन नंबर आपको बता दें 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। और श्रोताओं से हमारा अनुरोध है कि जिन श्रोताओं के फ़ोन कॉल्स पहले लग चुके हैं वे नए श्रोताओं को भी मौका दें, उन्हें भी हमसे जुड़ने का मौका दें। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम में पहला कॉल किसका है।
1: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
0: हेलो
1: रूपाली जी, आदाब, नमस्कार।
0: नमस्कार, किन से बात हो रही है हमारी?
1: रात की चमकती हुई चांदनी आपके आंगन में आए, हर तारा लोरी गा के सुलाए, और आए आपको इतने हसीन ख्वाब कि आप नींद में भी मुस्कुराएं।
0: फिलहाल तो आपकी ये शायरी सुनकर अपने आप ही चेहरे पर मुस्कान आ गई।
1: जी
0: रफी साहब बोल रहे हैं।
1: हाँ, मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ, पालदाना का, इंदौर से। कैसे हैं मैडम आप?
0: बढ़िया, आप सुनाइए, आप कैसे हैं?
1: हाँ, हम भी अच्छे मैडम, और हम दुआ करते रहते कि आप जैसे अनाउंसर हमेशा खुश रहें।
0: क्या बात है, हमारे सभी अनाउंसर भाई बहन खुश रहें। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मैडम आज प्रोग्राम की शुरुआत बहुत ही देशभक्ति गीत से करना चाहूंगा मैं, क्योंकि आज कारगिल दिवस है और हमारे देश के जो नौजवान हैं उनको ये गीत डेडिकेट रहेगा और वो हमेशा स्वस्थ रहें, ये भी कामना करेंगे।
0: बिल्कुल, आज कारगिल विजय दिवस है, जो 1999 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, जो लगभग शायद 2 महीने तक चला था।
1: हाँ।
0: और उसी की याद में आज यानी 26 जुलाई को ये कारगिल दिवस मनाया जाता है।
1: जी।
0: तो गीत के बोल आप मुझे बता दीजिए।
1: आक्रमण फिल्म का है गाना, देखो वीर जवानों अपने देश पे इल्जाम ना है, अपने फोन पे इल्जाम ना है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा गीत आपने पसंद किया है और हमें भी बड़ी खुशी हो रही है कि कार्यक्रम की शुरुआत इस देशभक्ति गीत के साथ हो रही है आज कारगिल दिवस पर।
1: मैडम इसमें और एक और पंक्ति बहुत अच्छी लगती है मेरे को कि अंधा बेटा युद्ध पे चला तो उसकी माँ बोली कि बेटा न जा, लेकिन वो कहता है कि मैं दुश्मन की कम से कम एक गोली तो कम कर सकता हूँ।
0: हाँ, बहुत मतलब ऐसी देशभक्ति की भावना प्रत्येक भारतीय में होना चाहिए।
1: जी जी।
0: तो रफी जी, आपने कार्यक्रम में कॉल किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो जी, रूपाली जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल।
0: अच्छा अग्रवाल जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी श्रीनगर जिला महोबा उत्तर प्रदेश।
0: अच्छा, क्या करते हैं अरविंद जी आप?
1: जी मेरी किराने की दुकान है, वहीं
0: अच्छा,
1: बैठता हूँ। जी
0: और गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम रहेगा राजा।
0: अच्छा, राजा फिल्म का कौन सा गीत?
1: आँख मिलाते डर लगता है।
0: अच्छा, आपको पता है इसमें, इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार हैं?
1: जी इसमें संजय कपूर हैं,
0: अच्छा,
1: माधुरी दीक्षित है शायद।
0: संजय कपूर और माधुरी दीक्षित जी। हाँ, फिल्में देखने का शौक है आपको?
1: पहले देखा करते थे, अब नहीं देखते हैं। अब तो बहुत झपती नहीं है, ऐसी फिल्में आती हैं ऊपर ही ऊपर निकल जाती हैं।
0: अच्छा ये बात तो है, अब सिनेमा घरों का जो क्रेज़ है वो थोड़ा कम हो गया है। वेब सीरीज़ भी आने लगी हैं, OTT पे फिल्में आने लगी हैं, इसलिए भी शायद रुझान थोड़ा सा कम हुआ है। तो अरविंद जी लीजिए, प्रस्तुत है आपकी पसंद का राजा फिल्म का ये गीत, और हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका धन्यवाद फोन लेने के लिए।

0: आइए देखते हैं हमसे जुड़ने वाले हमारे अगले श्रोता कौन हैं। हेलो
1: मैडम, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: गुमास्ता नगर स्कीम नंबर 71 से अनिल कौचाले।
0: अच्छा अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है पिया मिलन और गीत है गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया।
0: ठीक है, पिया मिलन फिल्म से गोरा मुखड़ा चुनरिया,
1: हेमलता और साथियों की आवाजों में।
0: हाँ जी, हेमलता जी की आवाज में है ये गीत जी।
1: बिल्कुल, हमने एक महीने का फोन लगा, हम क्या बैंक में काम करते तो हमको तो जैसा भी टाइम नहीं मिलता है और अच्छा फोन लग गया।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है अनिल जी, हम हमारे श्रोताओं से यही कहते हैं कि आप, अगर आपकी बात हो चुकी है हमसे, कॉल लग चुका है, तो आप नए श्रोताओं को भी मौका दें और उन्हें भी हमसे जुड़ने दें। तो अनिल जी लीजिए, प्रस्तुत है आपकी पसंद का पिया मिलन फिल्म का ये गीत।

0: नमस्ते।
1: नमस्ते जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
0: ग्राम सुराना, जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
1: शेख हैदर खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
0: फिल्म का नाम है राजा ओ रंक।
1: जी, इस फिल्म का कौन सा गीत?
0: ये रफी साहब के आज में गीत है, फिरकी वाली तू कल फिराना।
1: जी हाँ, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में है ये गीत।
0: हाँ, बस रफी साहब की पुण्यतिथि भी लगभग लगभग आ चुकी है, शुक्रवार को है
1: जी।
0: हाँ, तो बस उसी की याद में गाना सुना दीजिए।
1: बिल्कुल। क्या करते हैं हैदर साहब आप?
0: मैडम, मैं तो यूँ तो आकाशवाणी से बहुत पुराना श्रोता हूँ, 1980 से जुड़ा हुआ हूँ
1: जी।
0: और खेती किसानी का काम है मैडम।
1: अच्छा अच्छा, तो अभी जो बारिश हो रही है वो ठीक है
0: फसल के लिए? फसल के लिए तो बढ़िया है।
1: अच्छा, क्योंकि बीच में बारिश आना कुछ बंद हो गई थी।
0: हाँ, वो तो एक लंबे अंतराल के बाद करीबन 13-14 दिन बाद मतलब बरसात शुरू हुई है। तो अभी तो सभी दूर ऐसे गिर रही है, रिमझिम बारिश हो रही है मैडम।
1: हाँ बिल्कुल, तो मतलब ठीक है ना, समय पे आ गया पानी की? अभी कुछ नुकसान हो चुका?
0: समय पे कोई नुकसान नहीं हुआ और मतलब आ गया पानी।
1: अच्छा जी। और रतलाम जिले के पास में आप रहते हैं, रतलाम की कुछ खासियत बताइए हमें, क्या मशहूर है रतलाम में?
0: रतलाम का तो मैडम सोना चांदी है, जो नमकीन है, रेलवे स्टेशन है, ये दो तीन चीज फेमस है।
1: हाँ, रतलामी सेव तो बहुत मशहूर है।
0: हाँ, बहुत मशहूर है, बहुत मतलब दुकानें बनी हुई है और 24 घंटे चलती है लगभग दुकानें।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, रात दिन वो चलती है।
1: जी जी जी, क्या
0: क्योंकि उनका नमकीन जो विदेशों में भी जाता है ना।
1: हाँ, वैसे इंदौर का या हमारे एमपी का नमकीन बहुत मशहूर है और यहाँ खाने वाले लोग भी बहुत हैं, मतलब स्वाद के चटकारे लेने वाले या स्वाद के शौकीन लोग एमपी में बहुत हैं।
0: हाँ, यहाँ की जो नमकीन की लोकप्रियता है, शायद कुछ पानी में असर है उसका या कुछ मसाला वाला अच्छा बनाते हैं लोग यहाँ के।
1: जी
0: हाँ
1: बिल्कुल। तो आप भी अपने सारे रिश्तेदारों को या जो जान पहचान के लोग रहते होंगे तो आपसे फरमाइश करते होंगे कि आप रतलामी सेव भेजिएगा।
0: ले जाते हैं ना मैडम, मतलब जो बुलाते हैं ना, ये कभी जाते हैं तो उनको यहीं से दे देते हैं, कभी जैसे कोई रेलवे से गया तो यहीं से उनको दे देते हैं रतलाम से ही।
1: अच्छा अच्छा,
0: या फिर ले भी जाते हैं साथ में।
1: क्या बात है। हैदर जी, आपने हमसे बातचीत की, कार्यक्रम में हमसे जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए, प्रस्तुत है आपकी पसंद का ये गीत।
0: ओके ओके, थैंक यू, है ना
1: जी।

0: आइए देखते हैं अब कार्यक्रम में हमारे साथ कौन है। हेलो हेलो
1: हेलो नमस्कार महोदया, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरिविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: हरिविलास जी तोमर
1: जी,
0: जी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है धरती ये मौसम भींगा भींगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है।
0: अच्छा, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में है ये गीत।
1: जी जी
0: जी मौसम के बारे में ही कुछ बताइए, किस तरह का मौसम है उस तरफ?
1: कुछ पंक्तियों में बताना चाहूँगा महोदय, थोड़ी बातचीत में।
0: जी बताइए।
1: सुनी शांत पड़ी सरताओं में फिर से होने लगी है हलचल, अंबर ने अमृत कण बरसाए, सारी नदियां भरी लवालब, पिछलाती लहराती धुना शोर मचाए, किनारे करने लगे कोलाहल, वर्षा ने अपना परचम लहराया, मन भावन मौसम ये आया, उद्दीप्त करे कामना मन की, अंबर पर छाई काली घटा, अनायास मन आकर्षित हो जाता, इंद्रधनुष की देख छटा, रिमझिम रिमझिम बरसे पानी, वसुंधरा पे चढ़ी जवानी, वन उपवन में हरियाली लाया, मन भावन मौसम ये आया। धन्यवाद महोदय।
0: क्या बात है, बहुत बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। अच्छा, आपने कभी इंद्रधनुष देखा है?
1: कई बार देखा है, बचपन में भी देखा है, अभी देखा है।
0: अच्छा, इस अभी तो मेरे ख्याल से बहुत कम देखने को मिलता है, या शायद शहर के लोगों को तो बहुत कम इंद्रधनुष देखने को मिलता है।
1: जी, गांव के परिवेश में मैं रहता हूँ, गांव में तो यहाँ कभी कभी वो आता है इंद्रधनुष, शाम के समय में उगता है कभी कभी।
0: अच्छा, इंद्रधनुष वैसे कब बनता है, कब हमें देखने को मिलता है?
1: अब ये तो वैज्ञानिक तथ्य मुझे इतना पता नहीं, कैसे बनता है, बरसात की मिलता है देखने को।
0: हाँ जी,
1: सात रंग होते हैं।
0: बिल्कुल, जब बारिश होती है, वर्षा की फुहारें रहती है, और उस वक्त अगर सूर्य की रोशनी उन पर पड़ती है, तब हमें इंद्रधनुष देखने को मिलता है।
1: जी जी,
0: तो आपने जो गीत पसंद किया है वो भी मौसम के बिल्कुल अनुरूप है और बड़ा प्यारा गीत है।
1: जी,
0: आपने हमारे कार्यक्रम में कॉल किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का गीत।
1: कितने दिनों बाद फोन लगाया जाए फिर?
0: अब एक महीने बाद आप लगाइए।
1: धन्यवाद, यही पूछना था। धन्यवाद
0: जी, जी जी, धन्यवाद।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे आपकी पसंद के और भी गीत। आइए पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
0: श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं हमसे जुड़ने वाले अगले श्रोता कौन है। हेलो।
5: हेलो।
0: हाँ जी
5: दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
5: हम भागचंद साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंज वासोदा से।
0: अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
5: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। और कैसी हैं दीदी आप?
0: बढ़िया हैं। आप सुनाइए, कौन सा गीत आज सुनना चाहेंगे?
5: दीदी हमें गीत सुनना है, फिल्म का नाम है दोस्ताना।
0: दोस्ताना फिल्म से।
5: सलामत रहे ये दोस्ताना हमारा।
0: जी अच्छा, आपके आपके जो बेस्ट फ्रेंड है या जो आपके पक्के दोस्त हैं, उनका क्या नाम है?
5: उनका हमारा नाम है वो नरेश साहू जी है, अजय साहू जी, राज साहू जी।
0: सारे साहू हैं?
5: बिल्कुल बिल्कुल, साहू साहू पूरे।
0: और बताइए, उस तरफ बारिश के क्या हालचाल हैं?
5: दीदी बारिश तो अभी रुकी हुई है, थोड़ा कल गिरा था पानी।
0: अच्छा,
5: फिलहाल में अभी तो खुला हुआ है, मौसम बन रहा है फिर से।
0: क्या? अच्छा, आपको कौन सा मौसम पसंद है? आपको कौन सा मौसम पसंद है?

0: हमें तो दीदी देखो सारे मौसम पसंद है, देखो चार चार महीने के सभी मौसम पसंद रहे।
1: अच्छा
0: किसी कोई सा भी मौसम हो,
1: क्या बात है, हर मतलब पूरे साल आप आनंद में रहते हैं।
0: अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं रहेंगे।
1: तो चलिए लीजिए।
0: और दीदी आइए गंजवासोदा पानीपुरी सेंटर का ठेला लगा दे हम।
1: अब बिल्कुल कभी आएंगे आपकी पानीपुरी खाने के लिए जरूर। अभी तो
0: दीदी और हमारे पत्र जरूर शामिल करते रहिएगा।
1: बिल्कुल, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए प्रस्तुत है आपकी पसंद का ये गीत।
0: दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: श्रोताओ, आइए देखते हैं हमसे जुड़ने वाले अगले कॉलर कौन हैं। हेलो हेलो
1: हेलो, आकाशवाणी इंदौर।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं खातेगांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: सर वो आन पिक्चर, वो आन का क्या उड़न खटोला पिक्चर का है, मेरे सयाजी उतरेंगे नदी अपना,
0: उड़न खटोला फिल्म से।
1: हाँ ठीक
0: जी, कौन सा गीत है उसका? मोरे सैया जी।

0: हाँ
1: हाँ जी, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में है ये गीत।
0: ठीक। हाँ
1: हाँ जी, गोविंद जी क्या करते हैं आप?
0: अभी तो मतलब रिटायरमेंट टाइप में है, अभी तो कुछ भी नहीं करते हैं।
1: मतलब मैं आपकी बात समझी नहीं, रिटायरमेंट टाइप में
0: नहीं,
1: है।
0: नहीं कुछ भी नहीं करते, इसलिए कि हमने तो बहुत कुछ करा, अब तो उम्र हो गई ना, बहुत सारी उम्र हो गई
1: अच्छा
0: मेरी, 73-5।
1: अच्छा, तो जो जो बहुत कुछ किया है उसमें से थोड़ा कुछ बता दीजिए, क्या क्या करते थे आप?
0: मैं तो सर पहले तो सर सबसे पहले तो आपके यहाँ की जगह अलका टाकीज में नौकरी करता था।
1: अच्छा,
0: फिर रेडियो ट्रेनिंग दी थी मैंने इंदौर से, फिर रेडियो बनाया, फिर उसके खाते गांव में दुकान खोल दी।
1: क्या बात है।
0: और इसके बाद फिर वो रेडियो का जमाना भी नहीं रहा, और फिर डीजे का जमाना भी नहीं रहा, डीजे सब खत्म हो गया, गाड़ी का रेडियो सुधारने का भी काम किया मैं।
1: अच्छा,
0: अब मेरी बहुत उम्र हो गई, इसलिए फिर खाते गांव में मैंने नौकरी करी, टाकीज
1: अच्छा,
0: में, तो अब टाकीज ही नहीं रहे।
1: क्या अब मतलब, हाँ अब तो रेडियो भी नहीं रहे कि रेडियो
0: रेडियो
1: रिपेयरिंग
0: भी
1: की
0: नहीं
1: जाए।
0: रहे सर, फिर रेडियो पहले बाल वाले चलते थे, फिर इसके बाद ट्रांजिस्टर आए, और अब तो जेब में लेके घूमू,
1: अब तो मोबाइल में ही रेडियो आ गया है।
0: रेडियो रेडियो ही आ गए।
1: क्या बात है गोविंद जी, मतलब अच्छा खासा लंबा सफर रहा आपका। लेकिन सच
0: हाँ
1: बताऊं,
0: मेरा
1: आपकी आवाज से ऐसा नहीं लग रहा कि आपने,
0: हाँ मेरे को सभी यही कहते हैं, जिन जिनसे भी मैं फरमाइश करता हूँ, नहीं
1: हाँ
0: क्या अभी गुना वाले ने भी कल मेरे को यही बोला,
1: जी,
0: क्या अब मैं वो क्या मेरा काम ही क्या है, अब क्या करूँ मैं, सुबह चल जाता हूँ घूमने के लिए, दिन भर कैसे निकालो क्या है, तो ये रेडियो से मेरा जो है मनोरंजन हो जाता है, रेडियो फरमाइश से।
1: वाह बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है
0: हाँ सभी स्टेशनों पर देते ही रहता हूँ,
1: जी। तो
0: और
1: गोविंद जी,
0: सभी लोग
1: आपने
0: मेरे।
1: हमारे कार्यक्रम में कॉल किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए सुनिए आपकी पसंद का एक गीत।
0: ठीक है, और

0: में। आइए देखते हैं हमसे जुड़ने वाले अगले कॉलर कौन हैं। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्ते अरपाल जी।
0: नमस्ते जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं आकाशवाणी का पुराना श्रोता अनिल भंडारे सुजाम नगर से बोल रहा हूँ।
0: भंडारे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपके बहुत सारे लेटर्स हमारे कार्यक्रमों में हम शामिल करते हैं और इस तरह से आप हमसे जुड़े रहते हैं उसके लिए वाकई में आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत पुराने श्रोता है, 70 साल से हम जुड़े हुए कार्यक्रम से
0: जी। आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज शहीदों की याद में, कारगिल के दिवस है, शहीदों की याद में फिल्म फूल बन्ना अंगारे का गीत सुनना चाहेंगे।
0: अच्छा, इसका कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा
0: जी,
1: अमर रफी साथियों का गाना है।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और आनंद बख्शी का गीत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल भंडारी जी,
1: बोल इसका बोला बता दो थोड़े से
0: जी ना? जी।

0: मन के दुनिया ये अफसाना बया होगा मतन पे जो बिजा होगा।
1: जी जी जी जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी। लीजिए प्रस्तुत है आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा ये लाइव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन यहीं संपन्न होता है। अब मुझे यानी रूपाली को दीजिए इजाज़त और एक छोटी सी गुजारिश आप सभी श्रोताओं से कि जिन श्रोताओं के फ़ोन कॉल्स लग चुके हैं वे थोड़ा समय लेकर अब फ़ोन कॉल्स करें और हमारे नए श्रोताओं को कार्यक्रम से जुड़ने का मौका दें। नमस्कार।

0: कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
4: चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
6: खाता हुआ एक्टिव,
1: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देशभर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से घास निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहां के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं।

महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता, यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छंटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भलीभांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली

दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में वर्षों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं

विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है, उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में

क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और FM गोल्ड

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। निजी श्रोताओं प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में लीजिए हम सुनते हैं पहला गीत आप सभी श्रोताओं की पसंद पर।

ये बेहद खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म अभिनेत्री से। सुमधुर आवाज थी लता मंगेशकर की, शब्द रचना थी मजरूर सुल्तानपुरी की और इसे संगीत में बनाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, इस गीत को सुनना चाहता आप सभी ने छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा ने। इसी गीत को सुनना चाहता देवास से नंदिनी तिवारी ने और रानू गुप्ता ने सागर से। बेड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर ने इसी गीत को सुनना चाहता। चलिए अब कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत।

बारिश के मौसम को और सुहावना बनाने वाला ये गीत हमने लिया था फिल्म लम्हे से। सुमधुर आवाज थी लता मंगेशकर, ईला अरुण और साथियों की। ये गीत रचना थी अनंत बख्शी की और संगीत निर्देशन था शिवहरि का। इस खूबसूरत से गीत को सुनना चाहा था ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और सूरज कुमार ढाकसे ने। इसी गीत को पसंद किया था औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बीबी आरजू जाजोरिया ने। तो श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं अपनी पसंद पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश में ये खूबसूरत नगमे। चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

लता मंगेशकर की बेहद खूबसूरत आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का ये गीत। ये गीत लिखा था वर्मा मलिक ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को आप सभी ने पसंद किया था। बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम, प्रकाश वीर राजपूत, डोंडी लोहारा बलोत से कमलेश जयपुरिया, टाउनशिप भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप। इसी गीत को पसंद किया था नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर और ऋषि का साथी रॉबिन राणा ने। तो आइए अब कार्यक्रम का अगला गीत हम लेते हैं फिल्म मोहरा से, जिसमें आवाज़ है अलका याग्निक की।

सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया ने इसी गीत को सुनना चाहे। मेंढकी रोड देवास से नागोसी मावत, राजकुमार मावत, अभिषेक मावत और राजा राम नगर देवास से राजो

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक कामिनी काय कांतारे का 11वां भाग।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

0: आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 11वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि अवंती से निकलकर वृकवन पैठार गांव प्रेतपुरी से होते हुए चंद्रपुर गांव के निकट के एक गांव पहुंचते हैं। उनकी पल पल रक्षा करने वाले जोगी ने परम गुरु बाबा गोरखनाथ के जन्म की पावन कथा सुनाई थी। अब आगे
1: उमड़ते घुमड़ते जल प्रवाह से आप्लावित वर्षा नद के किनारे प्रतीक्षा करते हुए राजा भर्तृहरि और ओघड़ जोगी पानी कब उतरे और कब पहुंच जाए नदी के उस पार। प्रतीक्षा और प्रतीक्षा, किंतु पानी उतरने के कोई आसार नहीं।
2: भर्तृहरि, अब तो संध्या होने को है और प्रतीत होता है कि रात्रि विश्राम के आश्रय की खोज कर लेनी चाहिए। गरक, यहाँ तो कोई वृक्ष भी नहीं है।
3: हाँ, और इस विस्तृत पार वाली नदी के पार उतरने का कोई साधन भी नहीं है महाराज। अरे हाँ, एक नाव तो तट पर है, पर केवट कहीं नहीं दिखाई देता।
2: खोजने पर मिल भी सकता है राजा, मैं आसपास देखता हूँ। तुम्हें रात्रि आहार भी चाहिए, तुम यहीं रहना।
3: आप किधर जा रहे हैं महाराज?
2: उस तरफ, मुझे आभास हो रहा है कि वहां कोई मिलेगा, तुम भी साथ क्यों नहीं चलते? अरे दोनों मिलकर खोजें।

0: मैंने कहा था ना भर्थरी, मुझे आभास हो रहा था कि निकट ही कहीं आश्रय भी मिलेगा और भोजन भी। वो वहां देख, एक झोपड़ी दिख रही है।
1: त्रिकालदर्शी हैं आप महाराज?
0: ना ना राजा, जो दिख रहा है वो गुरु की इच्छा है। मैं साधन भर हूं। कोई है? अरे निरंजन।

0: प्रणाम महाराज।
1: सौभाग्य बड़ी।
0: आज्ञा दे महाराज, क्या सेवा करूं? जल भी तो नहीं पिला सकते आपको। महाराज, हम सुपच जाति के लोग हैं, जूठन पर जीते हैं, हम जूठन खाने वाले हैं।
1: ला, वही दे दे, दे दे माई। अरे हम भी तो जाने कि जूठन का स्वाद कैसा होता है।
0: ना ना देवता, पातक लगेगा।
1: तुझे जोगी की भिक्षा तो देनी ही पड़ेगी। अच्छा ला ला, इस खप्पर में अपनी जाति की भिक्षा डाल दे। अपनी जाति को आज और अभी त्याग दे। मेरे साथ बोल बोल माई, अलग अलग गोरख गोरख।
2: भ्रातरी को सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करें। स्त्री के दोनों बालक कुत्ते के साथ निकट आ पहुंचे हैं और वो कभी जोगी बाबा और कभी भूमि पर मस्तक रगड़ती अपनी माँ को देख रहे हैं। वो विनीत भाव में कहे जा रही है,
0: जाति तो देह के साथ ही छूटती है बाबा, कर्म का भी लेख है यह, जो जन्म के साथ आता है और मरण के साथ ही मिटता है।
1: ऐसा बिल्कुल भी नहीं है माँ। जाति और जन्म अलग अलग बातें। आकाश से टपकने वाली बूंद निर्मल होती है माई, कीचड़ तो बस इस संसार में है जो उसे आत्मसात कर लेता है। मेरी जाति छूट गई तो फिर तेरी कैसी बनी रहेगी? अरे गुरु का नाम पारस है, पारस लोहा भी छूकर सोना बन जाता है। हम सब मानस जात है, कोई कोई फर्क नहीं है तुझ में और मुझ में। वैसी

0: आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर। अब देर न कर माई, ला इस खप्पर में पानी भर दे, मैं तेरे पूरे परिवार की जात पी लेता हूं। जैसे किसी ने समुद्र को पी लिया था वैसे ही, ला ला माई ला।
1: स्त्री अपने आप से लड़ती हुई सी झोपड़ी में गई और जल के संग दो रोटियां ले आती है।
2: अभी बस इतना ही है महाराज, दो रोटियां बच्चों के लिए बचाकर रखी थी।
0: आनंद है, परमानंद है माई। एक रोटी बच्चे के लिए रख, ले भरथरी ये आधी रोटी तू भी खा ले। घटे पिंड निरंतर व्यापे, श्री शंभु यति गुरु गोरखनाथ निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप। बोलिए हो जाति भस्म, जाति भस्म हो, जाति भस्म हो, अलग अलग। गोरख गोरख।
1: जोगी जोर से चिंघाड़ता है, श्रृंगी मुंह से लगाकर लंबी करू मारता है। भरथरी को लगा जैसे धरती एक बार पूरी घूम गई है। ओघड़ ने रोटी के चार टुकड़े किए, एक श्वानों को, दूसरा पास खेलते हुए बच्चों को और एक भरथरी को देकर एक हिस्सा स्वयं लिया और भरथरी से कहा,
0: राजा इसे खा ले, इससे ऋतुओं के कुप्रभाव से तेरी रक्षा हो जाएगी। और कह अलख निरंजन।

0: तृप्त हुए माता, तेरे और तेरे परिवार का सुख श्री बढ़े। हाँ, अब ये बता कि इस नदिया के पार कैसे जाना होगा, वो उस नाव का केवट कहाँ मिलेगा?
1: महाराज, मेरा पति जब आएगा तब आपको नदी के पार ले जाएगा, आता ही होगा। तब तक आप इस कदम की छा तले विश्राम करें, मैं चटाई बिछाए देती हूँ, मैं गाय भी दोहलाती हूँ, गुनगुना दूध पी लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी महाराज।

0: लगता है ये रात भी आज यहीं बीतेगी।
1: अरे क्या अंतर पड़ता है, इस पार बीते या उस पार। हाँ, रात को तो बीतना ही है राजन। दूर वो वहां परछाई देख रहे हो?
0: संभवतः उस स्त्री का पति है महाराज, मध्य के प्रभाव में लगता है। देखो उसके पांव डगमगा रहे हैं। हाँ, इधर आया ही नहीं, झोपड़ी की ओर मुड़ गया।
2: महाराज यह दूध ले लें, मेरा पति तो अपने संग जूठन ही लेकर आया है, सो आपके योग्य नहीं महाराज। हम तो जूठन पर ही आश्रित हैं, इसलिए घर में आटा भी नहीं रखते, अन्यथा मैं रोटियां ही बना देती।
1: सब अच्छा है, उचित है माई। अरे हम संतुष्ट हैं, है ना भरथरी? तुम्हारा ये गोरस अमृत तुल्य है। तू कुछ सोच रहा है भरतरी? कहीं उज्जैनी तो याद नहीं आ रही है तुझे?

0: गोरख देखो यहाँ घर में आटा तक नहीं और वहां किसी भी वस्तु का कोई अभाव नहीं है। प्रचुर धन, प्रचुर धान्य, शक्ति, वैभव, विलास, दूध और मदिरा पनालों में बहती है। सहस्त्रों भवनों और आलयों में व्यंजन इतने प्रकार के कि श्रीमंतों के स्वान इन्हें सूंघकर भी हट जाते हैं। लगता है कि पार पहुंचना अब संभव नहीं है।
1: लज्जित हूं महाराज, मेरा पति मद के उन्माद में होने के कारण आपके सामने नहीं पड़ रहा।

0: रहा है। पोर्ट तक जब मद का प्रभाव उतर जाएगा तभी वह नाव लेकर जा पाएगा।
1: साध्वी चिंता न कर, अरे आज की रात कदम की छाव में ही हमारे बिताने का योग है। तू जा भोजन और विश्राम कर, हमें कुछ नहीं चाहिए माई। क्यों भरथरी?
2: जी जोगी।

0: सोता है या जागता है भर्तरी?
1: जाग रहा हूँ महाराज।
0: तो गुरु का ध्यान लगा, गुरु पर विश्वास कर। मैं और तू कठिन वन पर्वतों से होकर सुरक्षित निकल आए हैं। न तो सिंह वृक या व्याघ्र ने खाया और न ही हमें अजगर ने निगला। प्रेतपुरी से बचाया है तू, इसलिए क्योंकि गुरु की रक्षा में था। गुरु की रक्षा में दुखों का उपचार संसार के बीच रहकर ही हो सकता है। लगता इसीलिए गुरु गोरखनाथ संसार में भ्रमण करते रहते हैं। तभी तो उन्होंने कहा था, देह को साधो, मन को साधो, विचार को साधो, मन वचन और वाणी की फाक जब कम होगी तभी तभी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। जाग रहा है राजा भर्तरी?
1: हाँ महाराज।
0: ये भूमि जाग रही है, वो स्त्री जाग रही है जो अभी अभी हमें दूध पिला कर गई है। भैरव के ये वाहन जाग रहे हैं, जागृत और सचेत। किंतु तेरी उज्जैनी सो रही है, अपने अधिकार शक्ति और ऐश्वर्य की चादर ओढ़कर सो रही है उज्जैनी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तेरी स्त्री जाग रही है, सोई नहीं रानी पिंगला। तेरी चिंता में नहीं सोई, और हां वो भी जाग रही है जो हर पल प्रतिवक्त तेरे साथ है, स्थान स्थान पर तुझे गिरने से बचाती है, तेरा भार अपने कंधों पर ले लेती है।
1: वो कौन जोगी महाराज?
0: तू उसे भूला नहीं है?
1: शची।
0: और वो भी जाग रही है भर्तरी, जो तेरे काव्यों पर मोहित है। वो तेरी प्रतीक्षा कर रही है, जो जानती है कि तेरे काव्यों में नैतिकता तो है किंतु सहजता का अभाव है। इसलिए भर्तरी यहां से चंद्रपुर केवल 2 दिन की यात्रा पर है। वहां पहुंचो राजा, तुम्हें अकेले जाना है।
1: और देव आप?
0: गुरुदेव, गुरु की इच्छा यही है। राजा भर्तरी चंद्रपुर अब अधिक दूर नहीं है। भटक न जाओ तो मार्ग भी निरापद है। आगे के मार्ग में मैं नहीं होऊंगा। गुरु का संदेश मिला है कि मैं उनके पास वापस लौट जाऊं। सुपच परिवार अब सो गया है और तुझे जागते रहना है। हाँ। मैं अब चला अला।

और ओघड़ चल पड़ा। भृथरि देखते रहे, ओघड़ नदी के किनारे पहुंचा। उसने पीछे मुड़कर भृथरि पर दृष्टिपात किया। भृथरि ने उसकी आंखें देखी, इस फुलिंग की तरह चमकती।

ओघड़ अब छाया भर दृष्टिगोचर हो रहा था। उसने नदी में प्रवेश किया, भृथरि की ओर अभय मुद्रा में हाथ उठाए। भृथरि को लगा कि जोगी का अट्टहास हवाओं में गूंज गया है और विस्फरित भृथरि ने देखा कि वह नदी के जल पर बहा चला जा रहा है। देखते देखते उस पार अदृश्य हो गया। देखते रहे अकेले खड़े राजा भृथरि, आश्चर्य से स्तब्ध, मूक और हतप्रभ।

0: अकेला रह गया भर्तृहरि तू, अंततः अकेला। औघड़ भी अपनी राह चला गया, किंतु उसने कहा था कोई है जो मुझे स्थान स्थान पर गिरने से बचाती है, मेरा भार अपने कंधों पर ले लेती है। शची, शची, क्या तुम अभी भी मेरे साथ हो, मेरे एकांत की साझीदार? औघड़ कह रहे थे कि तुम भी जाग रही हो, तुम्हारी अनिद्रा का कारण मैं ही हो सकता हूं। शची, मैं चिर अतृप्त चिर संशयी भाग कर चल तो पड़ा, लेकिन जानता नहीं कि कहां पहुंचना है। शची, शची, कुछ तो बताओ।
1: क्या बताऊं राजन?
0: शची, तुम मेरे साथ हो ना?
1: हाँ राजन।
0: तुम्हारा साथ ही मेरी तृप्ति है, मेरा निश्चय है। शची
1: जी,
0: ये अनुभव एकांगी नहीं, सापेक्ष अनुभव है।
1: तो
0: आज यहां से जिस सुपच दंपति का अतिथि हूं वो नितांत अकिंचन है, किंतु किसी महामहिम नरेश से अधिक सुखी। मैं तुमसे पूछता हूं शची कि ऐसा क्यों है, उनकी तृप्ति उन्होंने कहां से पाई? शची,
1: मैं क्या बताऊं राजन, राजा तो आप हैं।
0: प्रिय, जाने कब मैं ये स्वीकार कर पाऊंगा कि पैठार की निर्धनता के बीच अपनत्व की निधि जो मैंने देखी, उसके सामने अवंती का वैभव कितना तुच्छ, कितना श्रीहीन है। किंतु पैठार और अवंती दोनों ही की स्मृति मुझे साथ साथ हो आती है, और इस महानाट्य का वो विष्कंभक औघड़ जोगी भी। अभी अभी जो विज्ञान की मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हुए नदी ताल पर पांव पांव चलते उस पार चला गया है, क्या ये अविश्वसनीय दृश्य था? जोगी आया था गुरु के आदेश पर मेरी रक्षा करने, और यहां लाकर छोड़ गया। आगे की राह मुझे स्वयं ही चलना है, पर चेतावनी दे गया है कि यदि भटका नहीं तो चंद्रपुर पहुंच जाऊंगा। त्रिकालदर्शी जोगी का आशय क्या था? दो दिन का मार्ग है चंद्रपुर का,

0: अचानक कुत्तों के भौंकने का स्वर तेज हो जाता है, जैसे कोई शिकार सामने आ गया हो। सुपच नारी झोपड़ी से बाहर निकल कर आती है।
1: कौन है? कौन है? महाराज, आप सुरक्षित तो हैं?
2: हाँ देवी, संभवतः कोई मकर है, भटकते भटकते इधर आ गया है।
1: चिंता ना करें, आसपास जाल लगे हुए हैं महाराज, आप तक कोई हिंस पशु नहीं पहुंच पाएगा, रक्षा का पूरा प्रबंध है। अरे, चूकी महाराज कहाँ है?
2: वे चले गए हैं देवी।
1: कहाँ? नाव और केवट के

0: चले गए?
1: नदी पर चलते चलते पता नहीं कहां।
0: नदी पर चलकर सिद्ध पुरुष थे वह।
2: वो तैर कर नहीं गए?
1: नहीं, कहते थे यहां तक ही वो मुझे रास्ता दिखाने आए थे। यहां से आगे मुझे अपना मार्ग स्वयं चुनना है।
2: महात्मा चिंता न करें, भोर होते ही मैं आपको उस पार पहुंचा दूंगा। रात थोड़ी सी बची है, तब तक आश्वस्त होकर विश्राम करें। हमारा ये श्वान युगल नील और मणि आपको सुरक्षा देगा। मेरे वीर सैनिक हैं, सुरक्षा में कभी चूक नहीं करते।
1: क्या नाम बताया? नील मणि। मेरे वेगवान सुदर्शन और स्वामी भक्त अश्व का नाम भी यही था।
0: महाराज कुछ कहा आपने?
1: हाँ देवी, मैं जानना चाहता हूँ कि इस श्वान युगल को नीलमणि नाम क्यों दिया?
0: हमारे यह है ना, मदपान के पश्चात किसी नरेश से कम नहीं होते। उज्जैनी के विश्व विश्रुत नरेश भर्तहरि के विषय में कहीं सुन लिया था कि नीलमणि उनके सर्वाधिक प्रिय अश्व का नाम नीलमणि है। सो जोश में आकर श्वान को नील और श्वानी को मणि संबोधन दे डाला।
1: अनुकरणीय नरेश।

0: जय महाकाल।
1: देवी, इतना कष्ट क्यों कर रही हो? मुझे तो बस पार पहुंचाने की व्यवस्था भर कर दो।
2: महामना, आप हमारे लिए कितने मूल्यवान हैं। एक नया जीवन आपने हमें दिया है। अभी तक हम अपने आप को केवल पतित ही मानते रहे। एक ऐसा पशु जो मात्र इसलिए जीवित है कि वह मरना नहीं चाहता। जाने क्यों हम समझ रहे हैं कि हम भी मनुष्य हैं। आपने तो हमारी जाति ही बदल दी, जैसे जन्म ही बदल गया, नया जन्म दिया। बस इतना मान और दे दें कि इस झोपड़ी के द्वार पर अन्न के कुछ दाने ग्रहण कर लें। ये उच्छिष्ट अन्न नहीं है, हमने बीज के साथ अपना स्वेद देकर उसे उत्पन्न किया है महाराज।
1: इस आतिथ्य के लिए मैं कृतज्ञ हूं देवी। मैं यदि अधिक समय और रुका तो संभवतः अपने पथ से दूर हो जाऊंगा, अतः अब आज्ञा दें। बंधु, मुझे उस पार पहुंचाने की कृपा करो।
2: महाराज, आधी घड़ी और ठहरे महाराज।
3: गृहिणी ने पति को सचेत कर संकेत किया तो वह पुनः सांटी उठाकर आंच पर सिके भुट्टे पूर्वज झाड़ने लगा। थोड़ी ही देर में गृहिणी ने दाने सूपड़े से फटक कर साफ किए और अतिथि के गमछे से गांठ बांध दिए। भृतहरि जब सुपच परिवार से विदा हुए तो गृहिणी और दोनों बच्चों की आंखों में आत्मीयता और कृतज्ञता के आंसू भर आए। डोंगी धीरे धीरे नदी की सतह पर आगे सरकती जा रही थी। भृतहरि का कुछ जैसे बालू का तट छूटता सा जा रहा था, लेकिन आगे भी ऐसा बहुत कुछ था जो उन्हें बुला रहा था।

0: अब मुझे चंद्रपुर पहुंचना है।
1: भृतहरि का अवलक्ष्य था चंद्रपुर। उन्हें बताया गया कि वहां चारुमित्रा है, उनकी कविताओं की प्रशंसिका, जिसने वसंत को प्रेरित किया था कि वह उनके संस्कृत काव्य को लोक भाषा में प्रस्तुत करे। विद्वानों के लिए लिखा गया यह काव्य लोक हृदय द्वारा ग्रहण किए जाने की एक तरह से पुष्टि होगी, कसौटी होगी उस काव्य की संवेदना की, एक परीक्षा। भृतहरि को लगा कि चारुमित्रा अपने भवन के झरोकों में खड़ी होकर उनकी प्रतीक्षा कर रही है।
2: अनक गोरख गोरख गुरु गोरख बस

0: यहीं तक तुम्हें पहुंचाने का आदेश गुरु ने दिया था। अब आगे मार्ग तुम्हारा है, यदि भटके नहीं तो चंद्रपुर पहुंच जाओ, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। राजा भर्तृहरि, जाग रहे हो ना?
1: जाग रहा हूं जोगी महाराज। तो बंधु विदा, कभी अवसर मिला तो पुनः तुमसे आकर मिलूंगा।
2: ये हमारा सौभाग्य होगा देवता।

0: चार महीने पीछे छूट गई है अवंती। इस बीच नागर जीवन से कोई संपर्क नहीं रहा। चंद्रपुर के व्यापारियों का संपर्क निश्चय ही उज्जैनी से होगा। कुछ समाचार मिलेंगे। इस बीच वहां क्या घटा, शुभ अथवा अशुभ? शायद रानी पिंगला का कोई समाचार मिले। महामात्य पूर्ण रथ निश्चय ही अत्यधिक चिंतित होंगे। कुमार विक्रम की उद्दंडता अवश्य बढ़ गई होगी। राजनैतिक षड्यंत्रों का ताना बाना बुना जा रहा होगा। राजदंड का जब भय ही ना रहे तो सर्वत्र अनियंत्रित स्वार्थ शीर्ष उठा लेते हैं। अनियंत्रित और अराजक प्रजा। भर्तृहरि, अवंती कातर है। वो तुम्हें पुकार रही है, तुम्हें, तुम्हारी अवंती भर्तृहरि, तुम्हारी अवंती।
1: अलक गोरख गोरख। राजा, भले ही तुझे अटपटा लगी पर मैं कह ही देता हूं कि तेरी उज्जैनी सो रही है अपने अधिकार शक्ति और ऐश्वर्य की चादर ओढ़कर। भर्तृहरि, तू भी सो गया क्या? जाग, क्या अभी शेष नहीं हुई है? यहां से 2 दिन के रास्ते पर है चंद्रपुर।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक कामिनी का एकांतारी का 11वां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1,500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। आज कारगिल विजय दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज निवाड़ी जिले को विकास कार्यों की सौगात देंगे। वह संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही करीब 193 करोड़ रुपए की लागत से बने 59 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर सहित प्रदेश के 50 जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। और अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उनकी इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज अपनी चर्चा में हम सबसे पहले आपसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर भारतीय के हृदय में गर्व, सम्मान और देशभक्ति की भावना जगाता है, भारतीय सेना की गौरव गाथा का पर्व कारगिल विजय दिवस। बहनों, यह दिवस केवल एक तिथि नहीं है बल्कि यह भारत के वीर सैनिकों के अदम साहस, अटूट संकल्प, बलिदान और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी 26 जुलाई को पूरा भारत कारगिल विजय दिवस मनाता है। यह दिन हमें उन अमर वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन भारत माता का मस्तक कभी झुकने नहीं दिया। बहनों, सन 1999 में पाकिस्तान की सेना और उसके घुसपैठियों ने कारगिल क्षेत्र में ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। उनका देश श्रीनगर, लेह, राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करना और भारत की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करना था। जब भारतीय सेना को इस घुसपैठ की जानकारी मिली तब उन्होंने ऑपरेशन विजय के माध्यम से दुश्मनों को खदेड़ने का संकल्प लिया। बहनों, कारगिल का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। हमारे सैनिकों को लगभग 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर अत्यंत कठिन परिस्थितियों में लड़ना पड़ा। वहां ऑक्सीजन की कमी थी, मौसम अत्यंत ठंडा था, दुश्मन ऊंचाइयों पर बैठा हुआ था और हर कदम पर मृत्यु का खतरा था। इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने अद्वितीय साहस और रणनीति का परिचय दिया। इस युद्ध में हमारे अनेक वीर सैनिकों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज हम श्रद्धा पूर्वक उन सभी शहीदों को नमन करते हैं। उनके साहस और बलिदान की गाथाएं सदैव प्रेरणा देती रहेंगी। बहनों, जब भी कारगिल युद्ध का नाम लिया जाता है तब अनेक वीर योद्धाओं की याद आती है। कैप्टन विक्रम बत्रा का वह अमर उद्घोष, ये दिल मांगे मोर, आज भी हर भारतीय के मन में जोश भर देता है। उन्होंने दुश्मन के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर विजय प्राप्त की और अंततः मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन अनुज नैयर, मेजर राजेश सिंह अधिकारी तथा अनेक अन्य वीर सैनिकों ने अपने अद्भुत साहस का परिचय दिया। बहनों, इन वीरों ने हमें सिखाया कि देश के सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। बहनों, भारतीय सेना केवल सीमाओं की रक्षा ही नहीं करती बल्कि प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूकंप, महामारी और अन्य संकटों के समय भी सबसे पहले सहायता के लिए आगे आती है। कारगिल विजय दिवस हमें केवल वीरता की कहानी नहीं सुनाता बल्कि हमें अनेक जीवन मूल्य भी सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, साहस, अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र प्रेम के बल पर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा हमें सहज रूप में नहीं मिली बल्कि इसके पीछे हजारों सैनिकों का त्याग और बलिदान छिपा है। हमें अपने सैनिकों की तरह ईमानदार, अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने वाला नागरिक बनना चाहिए। देशभक्ति केवल सीमा पर जाकर युद्ध लड़ने का नाम नहीं है। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना, संविधान का सम्मान करना, समाज में सद्भाव बनाए रखना, राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा करना और देश के विकास में योगदान देना भी सच्ची देशभक्ति है। आज इस कारगिल दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसे कार्य करेंगे जिससे भारत का नाम विश्व भर में गौरवान्वित हो। यही हमारी वीर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं टीकाकरण कराएं जीवन को खुशहाल बनाए के विषय में। जी हाँ बहनों, प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करना, इसके बचाव के उपाय बताना तथा समय पर टीकाकरण और जांच के लिए प्रेरित करना है। बहनों, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं, लेकिन यदि हम बीमारियों से घिर जाएं तो जीवन कठिन हो जाता है। इसलिए बीमारियों से बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है और बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है टीकाकरण। बहनों, हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो मुख्य रूप से हमारे लीवर को प्रभावित करती है। यह वायरस के कारण होती है और इसके कई प्रकार हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से हेपेटाइटिस बी एक गंभीर संक्रमण है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बचाव के लिए सुरक्षित और प्रभावी टीका उपलब्ध है। समय पर लगाया गया टीका व्यक्ति को इस बीमारी से काफी हद तक सुरक्षित रख सकता है। हेपेटाइटिस बी संक्रमित रक्त, असुरक्षित इंजेक्शन, संक्रमित सुई, असुरक्षित रक्त चढ़ाने तथा संक्रमित माँ से नवजात शिशु तक फैल सकता है। इसलिए जन्म के तुरंत बाद बच्चों का टीकाकरण अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसके साथ ही सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं अपनाना, स्वच्छता बनाए रखना और जागरूक रहना भी बहुत जरूरी है। बहनों, भारत सरकार का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कई गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए निशुल्क टीके उपलब्ध कराता है। इन टीकों ने लाखों लोगों का जीवन सुरक्षित बनाया है। इसलिए हमें न केवल स्वयं टीकाकरण करवाना चाहिए, बल्कि अपने परिवार, मित्रों और समाज के अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। बहनों, विश्व हेपेटाइटिस दिवस हमें यह संदेश देता है कि हमें नियमित स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो समय पर उपचार लेना चाहिए और उपलब्ध टीकों का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। यदि हम सभी जागरूक बने तो हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। बहनों, एक स्वस्थ समाज ही मजबूत राष्ट्र की नींव होता है। जब हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, युवा ऊर्जावान होंगे और बुजुर्ग सुरक्षित रहेंगे, तभी हमारा देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। टीकाकरण अपनाएं, रोगों को दूर भगाएं, स्वस्थ रहेगा हर परिवार, तभी बनेगा देश महान। हेपेटाइटिस को हराना है, जागरूकता का दीप जलाना है। टीकाकरण कराएं, जीवन को खुशहाल बनाएं। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर। बाघ है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो पर्यटन है, पर्यटन है तो समृद्धि है के विषय में। बहनों, प्रतिवर्ष 29 जुलाई को हम विश्व बाघ दिवस मनाते हैं, जिसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना तथा उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना है। बाघ केवल भारत का राष्ट्रीय पशु ही नहीं, बल्कि हमारी जैव विविधता, प्राकृतिक संतुलन और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। बहनों, जब हम कहते हैं बाघ है तो प्रकृति है, तो इसका गहरा अर्थ है बाघ जंगल का सर्वोच्च शिकारी है। वह वन्य जीवों की संख्या को संतुलित रखता है। यदि बाघ जंगल में सुरक्षित रहेगा तो हिरण, सांभर जैसे शाकाहारी जीवों की संख्या भी नियंत्रित रहेगी। इससे वनस्पतियों का संरक्षण होगा, जंगल हरे भरे रहेंगे और पूरा पारिस्थितिक तंत्र संतुलित रहेगा। इसलिए बाघ का अस्तित्व केवल एक जीव का अस्तित्व नहीं, बल्कि पूरे जंगल की जीवन शक्ति का प्रतीक है। प्रकृति है तो पर्यटन है। बहनों, घने जंगल, स्वच्छ नदियाँ, रंग बिरंगे पक्षी और वन्य जीवों की विविधता ही किसी देश की प्राकृतिक पहचान बनते हैं। जब लोग जंगलों में बाघों को देखने आते हैं तो वे केवल एक वन्य जीव नहीं देखते, बल्कि प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का अनुभव करते हैं। भारत के अनेक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य देश विदेश के लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इससे लोगों में प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ता है और संरक्षण की भावना मजबूत होती है।

पर्यटन है तो समृद्धि है। जी हाँ बहनों, पर्यटन केवल घूमने फिरने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास का भी एक सशक्त आधार है। जब पर्यटक किसी क्षेत्र में आते हैं तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, स्थानीय भोजन, गाइड, फोटोग्राफी और अनेक छोटे बड़े व्यवसाय विकसित होते हैं। इससे गांव और शहर की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनता है। इससे बाघों का संरक्षण सीधे सीधे समृद्धि से जुड़ा हुआ है। बहनों, भारत विश्व के उन देशों में है जहां सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन यह उपलब्धि तभी सार्थक होगी जब हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बाघों को और उनके जंगलों को सुरक्षित रख सकें। आज भी बाघों के सामने अनेक चुनौतियां हैं। अवैध शिकार, जंगलों की कटाई, प्राकृतिक आवासों का सिकुड़ना, मानव वन्यजीव संघर्ष और जलवायु परिवर्तन। यदि इन समस्याओं का समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियां बाघों को केवल पुस्तकों और चित्रों में ही देख पाएंगी। इसलिए बहनों, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दें। हमें पेड़ लगाने चाहिए, जंगलों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए, वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। सरकार, वन विभाग, सामाजिक संस्थाएं और आम नागरिक सभी के संयुक्त प्रयास से ही बाघों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। याद रखिए, जंगल बचेंगे तो बाघ बचेंगे, बाघ बचेंगे तो प्रकृति बचेगी, प्रकृति बचेगी तो पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, तब हमारा देश समृद्ध बनेगा। आइए इस विश्व बाघ दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि हम प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, हरित और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, जीवन की सफलता में गुरु की भूमिका, गुरु पूर्णिमा के विषय में। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।

गुरु ही ब्रह्मा है जो हमें ज्ञान देते हैं, गुरु ही विष्णु है जो हमारे ज्ञान का पालन करते हैं, और गुरु ही महेश है जो हमारे अज्ञान का नाश करते हैं। ऐसे परम पूज्य गुरु को बार बार प्रणाम है। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमारे जीवन में गुरु के प्रति सम्मान, श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का विशेष अवसर है। यह पर्व महर्षि देवव्यास की जयंती के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की तथा अनेक पुराणों की रचना कर मानव समाज को ज्ञान का अमूल्य खजाना प्रदान किया, इसलिए उन्हें आदि गुरु कहा जाता है। बहनों, जीवन में सफलता केवल धन, पद और प्रसिद्धि प्राप्त करने का नाम नहीं। वास्तविक सफलता वह है जिसमें व्यक्ति ज्ञानवान, संस्कारी, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील और समाज के प्रति उत्तरदायी बने। ऐसी सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। गुरु केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। वे हमें सही और गलत का अंतर समझाते हैं। जब हम भ्रमित होते हैं तब गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब हम असफल होते हैं तब गुरु हमें निराश होने से बचाते हैं और दोबारा प्रयास करने की प्रेरणा देते हैं। जब हम सफलता प्राप्त करते हैं तब गुरु हमें विनम्र बने रहने का संदेश देते हैं। बहनों, यदि हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि हर महान व्यक्ति के पीछे किसी न किसी गुरु का मार्गदर्शन अवश्य रहा है। भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे गुरुओं का सानिध्य मिला। भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि सांदीपनि से शिक्षा ग्रहण की। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में माता जीजाबाई और समर्थ रामदास का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व को दिशा देने वाले गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि गुरु के मार्गदर्शन से ही व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानकर महान ऊंचाइयों तक पहुंचता है। गुरु हमारे व्यक्तित्व के निर्माता होते हैं। वे हमारे भीतर अनुशासन, समय का सदुपयोग, परिश्रम, ईमानदारी, आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच का विकास करते हैं। वे हमें केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने की शिक्षा नहीं देते, बल्कि जीवन की हर परीक्षा में सफल होने का साहस भी देते हैं। बहनों, गुरु हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। निरंतर अभ्यास, कठिन परिश्रम, धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। यदि हम गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि गुरु चाहे वे हमारे विद्यालय के शिक्षक हों, हमारे माता पिता हों, या जीवन में हमें सही दिशा दिखाने वाले व्यक्ति हों, उनका सदैव सम्मान करेंगे। हम उनके आदर्शों का पालन करेंगे और अपने ज्ञान का उपयोग समाज और राष्ट्र के विकास में करेंगे।

0: बहनों, श्रावण मास का पावन महीना 30 तारीख से शुरू हो रहा है। यह महीना अपने साथ भक्ति, उत्साह और अनेक धार्मिक परंपराएं लेकर आता है। इस पवित्र मास में व्रत और फलाहार का विशेष महत्व होता है। आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ स्वादिष्ट और आसान फलाहारी व्यंजन, जो व्रत की शुद्धता के साथ साथ स्वाद का भी पूरा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं मखाना पनीर टिक्की। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप भुने हुए दरदरे पिसे मखाने, 200 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर, 2 उबले हुए आलू, 2 हरी मिर्च बारीक कटी, 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया। घी सेकने के लिए सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाकर टिक्की बना ले। तवे पर थोड़ा घी डालकर दोनों तरफ सुनहरा होने तक सेक ले। दही या फलारी चटनी के साथ सर्व करें। तैयार है आपकी मखाना आलू टिक्की। अब बनाते हैं नारियल कद्दू की मलाईदार सब्जी। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप कद्दू के टुकड़े, 1/2 कप नारियल का दूध, 1 बड़ा चम्मच घी, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, सेंधा नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच काली मिर्च, घी। घी में जीरा भूने, कद्दू डालकर पकाएं। जब कद्दू नर्म हो जाए तब नारियल का दूध डालें और 3-4 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। तैयार है स्वादिष्ट सब्जी। इसे आप समा के चावल या कूटू के आटे की पूड़ी के साथ गर्म गर्म खा सकते हैं। बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी को दे इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। योगदान था आकाशवाणी शिवपुरी का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है अंतराल का।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। योगदान है आकाशवाणी शिवपुरी का। लोक संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं शायदा कुरैशी के गाए मल्हार गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शायदा कुरेशी, रजनी अर्जेरिया और राजीव कुमार रावत के गाए मल्हार गीत। योगदान था आकाशवाणी शिवपुरी का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत।

0: शबद
1: खिले जो फूल तेरे पैरान की याद आई, चली सबा जो तेरे बाखपन की याद आई,
2: चली सबा

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: इस समय आप हैं हमारे साथ।
1: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
2: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
4: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
5: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान
6: आकाशवाणी इंदौर।
5: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
7: घूमते नाचे गाए,
8: लेकिन बारिश के पानी को यूं ही बर्बाद न होने दें।
7: पानी की एक एक बूंद बचाएं।
9: का समय समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज यानी 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में देश इस महान दिन की 27वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये दिन 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और बलिदान की याद दिलाता है। तो आइए श्रोताओं, हम भी इस विजय को मनाएं।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म देश के दुश्मन से। स्वर है महेंद्र कपूर और साथियों की, गीत लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीत है सोनिक ओमी का।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान के बारे में कहा कि 4 जुलाई से यह विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जलाशयों तथा बागानों के जीर्णोद्वार को नई गति मिल रही है। उन्होंने बताया कि पुराने तालाबों से गाद हटाई जा रही है और कुओं तथा बावड़ियों का जीर्णोद्वार किया जा रहा है। अब भूजल पुनर्भरण के लिए बोरवेल का उपयोग नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में तालाबों और अमृत सरोवरों को मिले नए जीवन पर कहा।
1: साथियों, मध्य प्रदेश

0: इसके सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए, नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया, महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है, आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया। हमारे शहर भी पीछे नहीं है, छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगर इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरणादायक पहलू थे, लेकिन एक शिक्षक की भूमिका उनके दिल के सबसे करीब थी। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा इस सप्ताह गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा सभी मार्गदर्शकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। हाल की बारिश से पारंपरिक मार्ग को हुए नुकसान के कारण आज जम्मू से अनंतनाग जिले के पहलगाम आधार शिविर के लिए कोई जत्था रवाना नहीं किया गया। 3 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु समुद्र तल से 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परम्परा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र उन वीर सैनिकों को नमन करता है जिनके असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान ने कारगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय को संभव बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी वीर सैनिकों का शौर्य सदा राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। यह विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज निवाड़ी जिले में संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण करेंगे। श्री यादव अधोसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लगभग 193 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कुल 59 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। अगले 24 घंटे के लिए शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 4 इंच या इससे अधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर समेत प्रदेश के करीब 50 जिलों में बादल छाये रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा

0: का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
0: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी, वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित

0: लेकर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
0: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38

0: कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयीय दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डूरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम

0: समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम। योगदान है आकाशवाणी जबलपुर का।

मुस्कान सुनने वाले सभी बच्चों को स्टूडियो में उपस्थित बच्चों और प्रीति दीदी की जय हिंद। साथ ही सभी बच्चों को दीदी का ढेर सारा प्यार। हम जानते हैं हमेशा की तरह आज भी हमारे प्यारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे कि दीदी आज हमारे लिए क्या जानकारी देने वाली हैं। तो बच्चों, आज बात कारगिल विजय दिवस की। बच्चों, आज यानी 26 जुलाई को हम सब विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारे जो बाल साथी ये नहीं जानते कि इसे क्यों मनाया जाता है, उन्हें बता दें कि जब पाकिस्तान ने सन 1999 में लद्दाख के उत्तरी कारगिल ज़िले की पर्वतीय चोटियों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, तो भारत ने भी उनकी इस कोशिश को असफल करने के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया और पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी सीमा से खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। और हमारी साहसी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय पर्वत सीमा से भागने पर मजबूर कर दिया। 26 जुलाई 1999 को हमने कारगिल की सभी चोटियों को फिर से अपने अधिकार क्षेत्र में लिया और एक बार फिर पर्वतों पर तिरंगा फहरा दिया। तब से 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी बच्चों को कारगिल विजय दिवस के बारे में पता चल गया होगा और वे भी इस दिन को पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे। बच्चों, अब चलते हैं हमारे अगले क्रम आओ जाने की ओर, जिसमें आज हम एक और दिवस के बारे में जानेंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में, जिसे 28 जुलाई को मनाया जाता है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी प्रकृति हमारे जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है, तो हम सबको उसे संरक्षित करना चाहिए, उसे सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों, प्राकृतिक संसाधन बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और उनका प्रयोग यदि किफ़ायत से नहीं किया गया तो उन्हें खत्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और अगर वो समाप्त हो गए तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। सोचो बच्चों, अगर पीने का पानी पूरी तरह से खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे? फिर तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। हम क्या पृथ्वी

0: का हर प्राणी, पेड़ पौधे, इन सब के लिए पानी कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। ऐसे ही प्रकृति की हर चीज, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु हमारे जीवन के लिए उतने ही जरूरी हैं। अगर इनमें से किसी भी तत्व की कमी हुई तो हमारा जीवन प्रभावित होगा। बच्चों, इसी बात के प्रति सबको जागरूक करने के लिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बच्चों, केवल इस बात को कहने से कुछ नहीं होगा, हम सबको संकल्प लेना होगा कि हम प्रकृति की हर चीज को संरक्षित करें, उसे सुरक्षित करने का प्रयास करें। साथ ही सभी को इस बारे में जागरूक भी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी बच्चे इस प्रकृति संरक्षण दिवस पर ये संकल्प तो लेंगे ही, साथ ही साथ खुद इन बातों का पालन भी करेंगे और लोगों को चीजों के दुरुपयोग के प्रति सचेत भी करेंगे। बच्चों, अब चलते हैं हमारे आज जुड़ रहे बच्चों के पास और उनसे जानते हैं कि आज वो हम सबके साथ क्या साझा करेंगे। हमारे अगले क्रम बच्चों के मुख से में, तो सबसे पहले हमारे साथ कौन साथी जुड़ रहा है, हम उनका नाम जानते हैं, उनका परिचय जानते हैं और ये जानते हैं कि वो हमसे क्या साझा करने वाले हैं। क्या नाम है बेटा आपका?
1: मेरा नाम आशी सैन है।
0: आशी, क्या लेकर आई हो आशी?
1: एक पोयम।
0: पोयम, क्या नाम है पोयम का?
1: मेरी भावना।
0: मेरी भावना, सुनाओ।
1: अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईश्वर भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, मैत्री भव जगत में मेरे सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उड़ से करुणा सीत रहे, दुजन क्रू कुमारगत पर छूम नहीं मुझको आए, सम्यक भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणीति हो जाए, गुरुजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए, हो नहीं कृतल घन में कभी मैं द्रोह ना मेरे और राय, गुण ग्रहण का भाव रहे, नीत दृष्टि ना दोषों पर जाए, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आया जाए, लाखों वर्षों तक जियो या मित्र राज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पर दे पाए, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रख कर रहे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द ही नहीं कोई मुख से कहा करे, बनकर सब योगवीर हृदय से देशोन्नति रथ कह रहे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे।
0: बहुत ही अच्छी कविता हमको आशी ने सुनाई है। अब और कौन क्या तैयार करके आया है?
2: हम एक गीत तैयार करके आए हैं।
0: पहले बेटा आप सब अपना नाम बताओ।
2: मेरा नाम है अंशिका सोनी।
3: आकांक्षा एकेवा।
4: श्रद्धा रैदास।
0: तो तीनों बच्चियां मिलकर एक गीत सुना रही हैं, सुनाओ।
5: आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शानिया की जाने ताहुदान, आज इंद्रनुष के बाढ़ में उतार दो, आरंभ है प्रचंड मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्व शक्तिमान है, मन की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है, जीत की है वश नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो,

0: बहुत ही अच्छा गीत इन्होंने हमें सुनाया। बेटा सब लोग एक बार फिर से अपना नाम बता दो।
1: मेरा नाम है अंशिका सोनी।
2: मेरा नाम है आकांक्षा केवट।
3: मेरा नाम है श्रद्धा रहदास।
0: अंशिका, आकांक्षा और श्रद्धा ने बहुत ही अच्छा भजन हमें सुनाया है। हमें लगता है कि हमारे श्रोता बच्चों को भी ये गीत बहुत पसंद आया होगा। क्या नाम है बेटा आपका?
4: मेरा नाम अनन्या अहरवार है। मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ।
0: अनन्या, हम सबके लिए भजन तैयार करके आइए, सुनाओ।
4: वो काना

0: मधुर सुना दोता।
1: अनन्या ने बहुत ही सुंदर भजन हमें सुनाया है। अब और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है?
2: कविता।
1: कविता, पहले बेटा आप अपना नाम बताओ।
2: परी अहिरवार मेरा नाम है, मैं एक कविता लेके आई हूँ।
1: अब परी हम सबको कविता सुनाएगी, सुनाओ।
2: पेड़ हमें छाया देते हैं और यही देते हैं आम, इनसे हरियाली धरती पर, इनसे सारी चहल पहल, गंध इन्हीं से, स्वाद इन्हीं से, रंग बिरंगे फूल इन्हीं से।
1: बहुत ही अच्छी कविता थी, पेड़ों से जुड़ी हुई ये कविता थी। पेड़ हमें हरियाली तो देते ही हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हमें पेड़ों को सहेज कर रखना है, उन्हें काटना नहीं है और कटने से बचाना है, और नए नए पौधे रोपने हैं ताकि हम नए पेड़ों को तैयार कर सकें। अब आगे हमारे साथ और कौन जुड़ा हुआ है? बेटा आप अपना नाम बताओ।
3: मेरा नाम है अंशिका प्रजापति।
1: अंशिका क्या तैयार करके आई है?
3: कविता।
1: कविता सुनाओ।

0: भारत प्यारा देश हमारा। अभी प्रकृति के ऊपर कविता सुनी थी इससे पहले हमने, और अपने देश के प्रति। हमारा देश रंग बिरंगी चीज़ों से भरा हुआ है, बहुत ही प्यारा हमारा देश भारत देश है। और इसी तरीके से ये हमारे बच्चे भी हमसे जुड़े हुए हैं, प्यारे प्यारे रंग बिरंगे बच्चे। अब और हमारे साथ कौन है, क्या सुनाएगा?
1: मेरा नाम प्रियांशी चौधरी है, मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, समुद्र के किनारे कुछ दूर एक जहाज आ रहा था। अचानक जहाज एक चट्टान से टकराकर पानी में डूबने लगा। जहाज के यात्री और नाविक सहायता के लिए पुकारने लगे। किनारे केवल एक लड़का फरीद और उसकी माँ थी। जहाज के यात्री और नाविक को बचाने के लिए नौका ले जाना जरूरी था। किनारे पर कुछ नौकाएं थीं। फरीद ने पूछा, माँ क्या मैं नाव को लेकर जहाज तक जाऊं? तभी जहाज के आदमी बच सकते हैं। बालक की माँ उसकी यह बात सुनकर घबरा गई, क्योंकि कुछ दिन पहले बालक के पिता नाव लेकर समुद्र में गए थे। एक मात्र उसका यह सहारा था। अगर इसे भी कुछ हो गया तो इसे ना भेजूं तो ना जाने कितनी स्त्रियां और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे अपना जीवन काट लूंगी। उसने अपने बेटे को नाव ले जाने की अनुमति दे दी। फरीद शीघ्र ही नौका लेकर जहाज तक पहुंचा। उसने डूबते हुए जहाज को बचा लिया। उन्हीं लोगों में उसका पिता था। पिता ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। बालक ने पूछा, पिता आप यहाँ कैसे? हमने तो समझा कि नाव डूबा ले गई आपको। मैं डूबा नहीं था, मुझे इस जहाज के लोगों ने डूबने से बचा लिया। आज यह जहाज ही डूबने लगा, पर तुमने हम सबको बचा लिया, मुझे तुम पर गर्व है। अपहरित की माँ अपने पति को जीवित देखकर खुशी से रो पड़ी। वह अपने बेटे के साहस पर प्रसन्न थी। वह सोच रही थी कि उसने अपने बेटे को लोगों की मदद के लिए भेजकर ठीक ही किया है। उसके इस निर्णय से कई लोगों के साथ साथ उसके पति की भी जान बच गई।
0: बहुत अच्छी कहानी हमें प्रियांशी ने सुनाई है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें समय पढ़ने पर किसी की मदद से पीछे नहीं

0: नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कभी हो सकता है हमारे किसी अपने को भी इसी तरीके से मदद की ज़रूरत पड़े और समय मिलने पर उसे भी मदद मिल पाए। हाँ, तो अब हमारे साथ और कौन जुड़ रहा है बेटा, आप अपना नाम बताओ।
1: मेरा नाम समीक्षा कुशवाहा, मैं आपके लिए भजन तैयार करके आई हूँ।
0: अच्छा, तो समीक्षा भजन लेके आई है, सुनो बेटा।
1: श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय तारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण कंधर्प अगणित अमित छवि नव नीन नीरज सुंदरम पट पीत मानव कनित रुचि सुचि नौमि।

0: नंद कौशल चंद दशरथ नंद।
1: बहुत सुंदर भजन अभी हमने समीक्षा से सुना। अब आगे और कौन क्या सुना रहा है? बेटा आप अपना नाम बताओ सबसे पहले।
2: मेरा नाम मुस्कान साहू है, मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ।

0: बहुत ही अच्छी कविता हमें मुस्कान ने सुनाई है कि सभी हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो सब एक हैं, चाहे हमारी भाषा अलग हो, बोली अलग हो, रंग रूप अलग हो, पहनावा अलग हो, पर हम सब आखिर में एक ही हैं, हम सब भारतवासी हैं। क्या नाम है बेटा आपका?
1: मेरा नाम साक्षी प्रजापति है। मैं कहानी बोल रही हूँ।
2: किसी जंगल में एक बंदर रहता था, वह बहुत ही चतुर था। एक दिन बंदर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गया। पर्वत पर उसे एक थैला पड़ा मिला। थैले में एक दर्पण और कुछ मिर्चें रखी थी। बंदर ने सबसे पहले एक मिर्च को चक्कर देखा। मिर्च बहुत चरपरी थी, उसने मिर्च फेंक दी। उसके बाद बंदर ने दर्पण को उलट पुलट कर देखा, तभी दर्पण पर सूर्य की रोशनी पड़ी। सूर्य की रोशनी से उसकी आंखें झपक पड़ी। बंदर ने दर्पण को अपनी ओर किया, उसे दर्पण में अपना चेहरा दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह तो बड़े काम की चीज है, इसके सामने जो भी आता है वह तो इसमें दिखाई देने लगता है। उसने थैले में काया गले में लटकाया और दर्पण को थैले में रख लिया। दर्पण मिलने के बाद बंदर अकड़ता हुआ जंगल में गया। रास्ते में उसे पेड़ पर एक मुर्गा बैठा हुआ मिला। मुर्गे ने पूछा, बंदर भाई कहाँ चले? बंदर ने अपनी अकड़ में मुर्गे की बात अनसुनी कर दी। आगे चलकर बंदर को एक भालू मिला। भालू ने बंदर को अकड़ कर चलते देखा तो पूछा, क्या बात है, आज तो इतने अकड़ कर क्यों चल रहे हो? भालू की बात सुनकर बंदर ने कहा, जाओ अपने रास्ते, तुम्हें इससे क्या करना? भालू ने कहा, लगता है तुम मुझे नहीं जानते। बंदर बोला, अरे तुम जैसे को तो मैं अपने थैले में बंद कर कर रखता हूँ, चलो भागो यहाँ से। भालू और बंदर का झगड़ा सुनकर वहाँ पर एक शेर आ गया। शेर ने उनसे झगड़े का कारण पूछा। भालू ने बताया कि यह बंदर तो अकड़ रहा है, बोलता है कि मेरे जैसे को तो थैले में बंद रखता है। भालू की बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया। वह बंदर को डांटने लगा और बोला, मैं ठीक कह रहा हूँ, भालू को ही नहीं शेर को भी थैले में बंद है, जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। शेर ने कहा, अगर यह बात है तो जरा थैले में से शेर निकाल कर दिखाओ। बंदर ने दर्पण निकाल कर उसके सामने कर दिया। दर्पण में अपना चेहरा देखकर शेर को बंदर की बात पर विश्वास हो गया। शेर ने कहा, अरे भाई तुम तो बड़े बहादुर हो, हम लोग अपनी यहाँ से चले जाते हैं। शेर और भालू दोनों डरकर वहाँ से भाग गए। चतुर बंदर शान से जंगल में रहने लगा, अब उसे किसी का डर नहीं था।
0: बच्चों अब वक्त हो रहा है

आप सभी से विदा लेने का। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने आसपास सफाई रखें, प्रकृति की सभी चीजों का संरक्षण करें, पानी बचाएं, पेड़ों को हरा भरा रखें, नए नए पौधे लगाएं, और सभी अपना भी ध्यान रखें और अपने घर के बुजुर्गों का, अपने बड़ों का, सबका ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी शुभ भाव के साथ प्रीति दीदी को मुस्कान से इजाजत दीजिए। सभी बच्चों की तरफ से और प्रीति दीदी की तरफ से आप सभी को जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम। योगदान था आकाशवाणी जबलपुर का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं पहला गीत फिल्म मैंने प्यार किया से। सुमधुर आवाज लता मंगेशकर की, गीत लिखा है अशद भोपाली ने और संगीत है राम लक्ष्मण का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत स्वरथी लता मंगेशकर के। गीत लिखा था असद भोपाली ने और स्वरथी, संगीत था राम लक्ष्मण का। नीचे सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में

कैच द रेन अभियान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई से यह विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जलाशयों तथा बागानों के जीर्णोद्वार को नई गति मिल रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरणादायक पहलू थे, लेकिन एक शिक्षक की भूमिका उनके दिल के सबसे करीब थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सप्ताह गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा सभी मार्गदर्शकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी वीर सैनिकों का शौर्य सदा राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। अमरनाथ यात्रा के लिए आज सुबह जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। बारिश के चलते पहलगाम आधार शिविर के लिए कोई जत्था रवाना नहीं किया गया। और भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए श्रोताओं, अब हम आपको बता दें आज सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज शाम 5:02 पर आप सुनिएगा युववाणी कार्यक्रम, योगदान होगा आकाशवाणी शिवपुरी का। 5:33 पर फिल्म संगीत और 6:00 पुनः आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे। शाम 7:21 पर ग्रामीण श्रोता सुनेंगे ग्राम सभा कार्यक्रम और शाम 7:30 ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। इसमें आज विषय है सोयाबीन में वर्तमान कृषि कार्य, विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर स्वप्निल दुबे। रात 8:00 सुनेगा कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम डगर विकास की, इसमें विषय है पीएम श्री योजना। रात 9:30 आप सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। रात 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में आज कलाकार होंगी विदुषी वर्षा अग्रवाल, सुनिएगा आप इनका संतूर वादन। श्रोताओं, ये थे आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:02 हो चुके हैं। मीडियम वेव पर अब ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। शाम 5 बजे इसी मीटर पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इसी बीच ये प्रसारण DTH के ऑडियो चैनल पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए सभा की शुरुआत में सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

मैं ज्योति स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। श्रोताओं, आज है रविवार और रविवार का दिन अपने आप में कुछ अलग ही होता है। सप्ताह भर की भागदौड़ के बाद ये दिन जैसे जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा सा धीमा कर देता है। कोई अपने परिवार के साथ समय बिताता है, तो कोई दोस्तों से मिलने की प्लानिंग करता है, तो कोई अपनी पसंदीदा किताब, संगीत या चाय के कप के साथ कुछ सुकून के पल तलाशता है। और अगर आप इस समय हमारे साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। श्रोताओं, युववाणी का उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि हम न सिर्फ जानकारी दें बल्कि कुछ ऐसे विचार भी साझा करें जो हमारे मन में नई सोच को जगाएं। कुछ ऐसी बातें जिन पर शायद हम रोजमर्रा की जिंदगी में ठहर कर सोच नहीं पाते। इसी के साथ हमारे सफर का एक और खूबसूरत साथी है संगीत, जो हर मुलाकात को और भी यादगार बना देता है। तो अगले कुछ समय तक हम साथ रहेंगे बातों के साथ, विचारों के साथ और मधुर गीतों के साथ। लेकिन कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत से पहले आइए हम चलते हैं कार्यक्रम की उस कड़ी में जहां मैं पूछूंगी आपसे सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। और उसी कड़ी में आज का पहला सवाल है कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान का नाम क्या था। और आज का दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन किस नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि कार्यक्रम के अंत तक आप इन दोनों ही प्रश्नों के जवाब हमारे लिए ढूंढ कर रखेंगे। फिलहाल शब्दों को थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं और चलते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की ओर, फिल्म आराधना से।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
2: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
2: ओ,
1: जैसे UPI से।
2: अच्छा,
1: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: श्रोताओं, आज का दिन यानी 26 जुलाई कोई आम दिवस नहीं है। आज हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस, और ये केवल विजय का दिन नहीं, एक विश्वास का भी दिन है। ये उन अधूरे सपनों को याद करने का दिन है जिन्हें पूरा करने के लिए हमारे सैनिकों ने स्वयं को खो दिया ताकि हम सुरक्षित रह सके। साल 1999 की बात है। कारगिल की बर्फ से ढकी ऊंचाइयां, ऐसी ऊंचाइयां जहां सामान्य परिस्थितियों में चलना भी कठिन होता है। ऑक्सीजन कम, तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे, और सामने दुश्मन जो पहाड़ की ऊंचाइयों पर पहले से मौजूद था। लेकिन भारतीय सेना ने परिस्थितियों को नहीं देखा, उन्होंने देखा तो केवल अपने कर्तव्य को। ऑपरेशन विजय केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, वो भारतीय सैनिक के अदम्य साहस का परिचय था। उन्होंने उन चोटियों पर तिरंगा फहराया जहां पहुंचना ही लगभग असंभव माना जा रहा था। कारगिल युद्ध में हमने अपने अनेक वीर सपूतों को खोया। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, और न जाने ऐसे कितने नाम जिनकी कहानियां शायद इतिहास की किताबों में कुछ पंक्तियों में सिमट गई, लेकिन जिनका साहस अनंत है। जब कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था ये दिल मांगे मोर, तो वो केवल एक नारा नहीं था, वो उस सैनिक का विश्वास था जो हर कठिनाई से ऊपर अपने देश को रखता है। लेकिन कारगिल हमें केवल वीरता की कहानी नहीं सुनाता, ये हमसे एक सवाल भी पूछता है कि जिस देश के लिए किसी ने अपना जीवन दे दिया, क्या हम उस देश के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? क्योंकि देशभक्ति केवल सीमा पर जाकर लड़ना नहीं होती, ईमानदारी से अपना काम करना, समाज के प्रति जिम्मेदार होना, कानून का सम्मान करना, मतदान करना और अपने देश को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करना भी उतनी ही बड़ी देश सेवा है। क्योंकि एक सैनिक सीमा की रक्षा करता है और एक जागरूक नागरिक उस देश की आत्मा की। आज कारगिल विजय दिवस पर आइए उन सभी वीर जवानों को शत शत नमन करें जिनकी वजह से हम निश्चिंत होकर अपने सपनों को जी पा रहे हैं। और शायद शहीदों को याद करने का सबसे सुंदर तरीका केवल उन्हें श्रद्धांजलि देना नहीं, बल्कि ऐसा भारत बनाना भी है जिस पर उन्हें हमेशा गर्व होता रहे। इन्हीं अमर वीरों के साहस और बलिदान को नमन करते हुए आइए सुनते हैं एक ऐसा गीत जो देश प्रेम की उसी भावना को अपने सुरों में समेटे हुए है।

श्रोताओं, अक्सर जब राष्ट्र सेवा की बात होती है तो हमारे मन में सबसे पहले सैनिकों की छवि आती है और आनी भी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या राष्ट्र निर्माण केवल सीमा पर होता है? शायद नहीं। आज भारत दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले देशों में से एक है। इसका अर्थ यह है कि आने वाले वर्षों में भारत कैसा बनेगा, इसका उत्तर किसी एक सरकार या संस्था के पास नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के पास है। आज हमारे युवा अंतरिक्ष विज्ञान में नए कीर्तिमान बना रहे हैं, स्टार्टअप्स के साथ रोजगार पैदा कर रहे हैं, खेलों में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, नई तकनीकों के माध्यम से दुनिया को समाधान दे रहे हैं। लेकिन इन उपलब्धियों के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। सोशल मीडिया पर बिना सत्यापन के जानकारी साझा करना, ऑनलाइन कटुता, धैर्य की कमी और केवल शिकायत करना समाधान का हिस्सा न बनना। देखिए, युवा होना केवल उम्र का नाम नहीं है, युवा होना एक दृष्टिकोण है। हर समस्या में अवसर देखना, हर आलोचना के साथ समाधान भी देना, हर अधिकार के साथ अपने कर्तव्य को भी समझना। अगर हम अपने आसपास की छोटी छोटी समस्याओं को भी अपना मान ले, अगर हम किसी एक बच्चे को पढ़ा दें, अगर हम किसी सार्वजनिक स्थान को साफ रखने की पहल करें, अगर हम किसी बुजुर्ग की मदद कर दें, तो शायद हम भी उसी भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे होंगे जिसकी रक्षा हमारे सैनिक सीमाओं पर कर रहे हैं। श्रोताओं, देश केवल नक्शों से नहीं बनता, देश बनता है उसके नागरिकों से। तो याद रखिए, आने वाला भारत किसी और का नहीं, हमारा बनाया हुआ भारत होगा। तो इन्हीं विचारों को मन में संजोए रखते हुए चलते हैं अगले गीत की ओर, फिल्म इकबाल से।

श्रोताओं, आज हम कारगिल विजय दिवस के साथ साथ एक और दिवस मना रहे हैं, जो कि है मैनग्रोव परिस्थिति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम। अगर मैं आपसे पूछूं कि समुद्र तटों की रक्षा कौन करता है, तो शायद आपका उत्तर होगा हमारी भारतीय नौसेना। लेकिन प्रकृति ने भी अपने सैनिक बनाए हैं और उनका नाम है मैनग्रोव्स। ये ऐसे वृक्ष हैं जो समुद्र और धरती के मिलन स्थल पर खारे पानी में उगते हैं। इनकी जड़ें केवल मिट्टी को नहीं पकड़ती, ये पूरे तटीय जीवन को थामे रखती हैं। तो जब समुद्री तूफान आते हैं, जब तेज लहरें तटों से टकराती हैं, जब चक्रवात विनाश मचाते हैं, तब सबसे पहले यही मैनग्रोव्स उस आघात को अपने ऊपर झेलते हैं। ये हजारों पक्षियों, मछलियों और समुद्री जीवों का घर है। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को बड़ी मात्रा में अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन की गति को कम करने में सहायता करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से तेजी से बढ़ते शहरीकरण, प्रदूषण और अनियोजित विकास के कारण दुनिया भर में मैनग्रोव तेजी से समाप्त हो रहे हैं। आज जब हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अपने आसपास महसूस कर रहे हैं, जैसे कि अनियमित वर्षा, अत्यधिक गर्मी, अचानक आने वाली बाढ़, तब ये समझना और भी आवश्यक हो जाता है कि प्रकृति की रक्षा का कोई विकल्प नहीं है और उसे हमारी आवश्यकता है। क्योंकि जब प्रकृति असंतुलित होती है तो उसका प्रभाव सबसे पहले मनुष्य पर ही पड़ता है, क्योंकि प्रकृति हमसे कभी कुछ नहीं मांगती, वो बस चुपचाप देती रहती है। और शायद अब हमारी बारी है कि हम उसका साथ निभाएं। तो इसी संकल्प के साथ हम सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

तिरंगे की तस्वीर उभरती है। सीमा पर डटे सैनिकों की छवि सामने आती है और ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि हमारे वीर जवान अपने साहस और त्याग से देश की रक्षा करते हैं। लेकिन आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या देशभक्ति सिर्फ सीमा तक सीमित है या फिर हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी दिखाई दे सकती है? जरा सोचिए, अगर एक डॉक्टर पूरी ईमानदारी से अपने मरीज का इलाज करता है, अगर एक शिक्षक पूरी निष्ठा से अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करता है, अगर एक सफाई कर्मचारी पूरे समर्पण से अपने शहर को स्वच्छ रखता है, अगर एक किसान कठिन परिस्थिति में भी अन्न उगाता है, अगर एक वैज्ञानिक कोई

है कि हमारा उत्तर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि न हो, क्योंकि श्रोताओं, देशभक्ति केवल नारों से नहीं मापी जाती। वो तब दिखाई देती है जब कोई छात्र परीक्षा में नकल न करने का निर्णय लेता है, जब कोई नागरिक और जब कोई व्यक्ति ये समझता है कि उसके हर छोटे कर्म का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। क्योंकि आखिरकार देश कोई इमारत नहीं होता, देश केवल सीमाओं का नाम नहीं होता, देश हम सब हैं। और जब हम बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं तो अनजाने में ही एक बेहतर भारत का निर्माण भी कर रहे होते हैं।

श्रोताओं, युवावस्था की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? नई चीजों को जानने की उत्सुकता, सवाल पूछने का साहस और अपनी एक अलग पहचान बनाने की चाह। ये वही उम्र होती है जब हम दुनिया को अपने नजरिए से देखना शुरू करते हैं। धीरे धीरे हमारी अपनी पसंद बनती है, हमारे विचार बनते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हमारी अपनी राय बनना शुरू होती है। लेकिन आज का समय पहले से थोड़ा सा अलग है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां जानकारी की कोई कमी नहीं है। हर दिन हजारों खबरें, लाखों वीडियोस, अनगिनत पोस्ट और हर विषय पर अनगिनत लोग अपनी अपनी राय रखते हुए

दिखाई भी देते हैं। ऐसे माहौल में कभी कभी एक चुनौती सामने आती है, क्या जो राय हम बना रहे हैं वो सचमुच हमारी अपनी है या फिर वो सिर्फ बार बार सुनाई देने वाली किसी आवाज का असर है। आज सोशल मीडिया हमें जानकारी भी देता है और अवसर भी देता है, लेकिन उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। किसी भी बात को सच मान लेने से पहले उसे समझना, उसके अलग अलग पक्षों को जानना, विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लेना और फिर अपनी राय बनाना। क्योंकि एक जागरूक नागरिक वही नहीं होता जिसके पास हर विषय का जवाब हो, बल्कि वो होता है जो सही सवाल पूछना जानता हो, जो ये कहने का साहस रखता हो कि मुझे अब इस विषय के बारे में अभी और जानना है। और सच कहूं तो ये कहना कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, कई बार बिना सोचे समझे राय देने से कहीं ज्यादा समझदारी की बात होती है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर जलवायु परिवर्तन, नई शिक्षा नीति, डिजिटल सुरक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे अनेक विषय हमारी रोजमर्रा जिंदगी की बातचीत का हिस्सा बन चुके हैं। और इन विषयों पर हमारी राय होना अच्छी बात भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो राय तथ्यों पर आधारित हो। क्योंकि जब हम बिना पूरी जानकारी के किसी बात को आगे बढ़ाते हैं तो कई बार अनजाने में भ्रम भी फैलाते हैं, और जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, अलग अलग दृष्टिकोणों को सुनते हैं, तब हमारी राय केवल एक प्रतिक्रिया नहीं रहती, वो हमारी सोच की पहचान बन जाती है। दोस्तों, किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत केवल ये नहीं होती कि वहां लोगों को बोलने की आजादी है, बल्कि ये भी होती है कि लोग अपनी बात जिम्मेदारी और समझदारी के साथ रखते हैं। इसलिए सवाल पूछिए, पढ़िए, जिज्ञासु बनिए, असहमति रखिए, लेकिन अपनी राय किसी ट्रेंड, किसी वायरल वीडियो या किसी एक पोस्ट के भरोसे मत बनाइए। उसे अपने अनुभव, अपनी समझ और विश्वसनीय जानकारी की नींव पर खड़ा कीजिए, क्योंकि उधार की राय कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकती है, लेकिन अपनी सोच जीवन भर पहचान बनाती है। तो आइए आज एक छोटा सा संकल्प लें कि हम हर नई जानकारी का स्वागत करेंगे, लेकिन उसे परखेंगे भी। हम अपनी आवाज उठाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले अपनी समझ को भी मजबूत रखेंगे। इसी विचार के साथ अब हम चलते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोता, अब हम आ गए हैं हमारे कार्यक्रम के अंत की ओर और आज की इस यात्रा में हमने कई अलग अलग विषयों पर बात की। हमने कारगिल के उन वीरों को नमन किया जिनके साहस और बलिदान ने हमें ये सिखाया कि कर्तव्य सबसे ऊपर होता है। हमने ये भी समझा कि आज के दौर में अपनी राय होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सोच समझ कर तथ्यों और समझ के आधार पर बनाई गई राय हो। और फिर हमने प्रकृति के उन मौन प्रहरियों मैनग्रूव्स की चर्चा की जो बिना कुछ कहे वर्षों से हमारी धरती और हमारे भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। अगर इन सभी बातों में कोई एक सूत्र छिपा है तो शायद वो है जिम्मेदारी, अपने देश के प्रति, अपने विचारों के प्रति और अपनी प्रकृति के प्रति। तो जाते जाते मैं एक आपको छोटा सा विचार देकर जाना चाहूंगी कि हर दिन हमें यह अवसर देता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा सा बेहतर छोड़कर जाएं जितना हमने उसे पाया था। तो आज खुद से बस एक बार ये सवाल जरूर पूछिए कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मेरा देश, मेरा समाज या आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। शायद इसी सवाल का जवाब हमें एक दिन बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखा सकता है। तो अब हम कार्यक्रम की उस कड़ी में चलते हैं जहां मैं आपको हमारे आज के पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के जवाब बताऊंगी। जिस कड़ी में आज का पहला प्रश्न था कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान का नाम क्या था, और इसका सही उत्तर है ऑपरेशन विजय। और आज का दूसरा प्रश्न था विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन किसे कहा जाता है, और इसका सही उत्तर है सुंदरबन डेल्टा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर।

अभी सुन रहे थे आप युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

राहत फ़तेह अली खान, श्रेया घोषाल और शंकर महादेवन की आवाज़ में सुना अभी आपने ये गाना। फिल्म का नाम था वी आर फैमिली। इस गीत को लिखा था अरशाद कामिल और अन्विता दत्त ने और शंकर एहसान लॉय ने इसे संगीत से सजाया था।

हलचल फिल्म से सुना भी आपने गाना उदित नारायण और सुजाता के स्वर में। इसे लिखा था समीर ने और संगीत विद्यासागर का था। और इसे आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, जहां चल रहा है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं आपके रेडियो सेट्स पे, साथ ही आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं हमारा न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सर्च कर सकते हैं लाइव रेडियो में जाकर आकाशवाणी इंदौर, और सुन सकते हैं आपके पसंदीदा गीत हमारे फिल्म संगीत के कार्यक्रम में।

लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना। फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। गाने को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत जतिन ललित का था। दोस्तों, वीकेंड का इंतज़ार सभी को होता है, लेकिन संडे शाम आते आते वीकेंड के साथ मन में एक अजीब सी बेचैनी भी होने लगती है। मंडे मीटिंग, कॉलेज, स्कूल, इन सारी चीज़ों की बेचैनी। लेकिन कुछ देर के लिए क्यों ना ये सब भूलकर एक छोटा सा ब्रेक अपने लिए लिया जाए और आकाशवाणी के गानों के साथ गर्मा गर्म चाय को एंजॉय किया जाए।

बॉम्बे फिल्म से ये गाना सुन रहे थे अभी आप चित्रा की आवाज़ में. लिखा था महबूब ने, एआर रहमान का संगीत था और इसे आप सुन रहे थे मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी इंदौर पर, जहां चल रहा है फिल्म संगीत. दोस्तों वैसे तो हम सब संडे का इंतज़ार करते हैं, स्पेशली सावन के संडे का इंतज़ार सभी को रहता है. अभी सावन थोड़ा सा आँख मिचोली खेल रहा है बट अभी भी मौसम जो है काफ़ी सुहाना बना हुआ है और ऐसे समय में दिल करता है कि बस गाड़ी उठाएं और परिवार के साथ या दोस्तों के साथ कहीं दूर घूम के आ जाए. उम्मीद है आपका दिन भी ऐसा ही गुजरा होगा और अगर दिन ऐसा नहीं गुजरा है तो शाम तो सुहानी हो ही रही है आकाशवाणी इंदौर के साथ.

कुणाल कांचावाला और सुनीति चौहान की आवाज़ में सुन रहे थे अभी आप ये गाना। फिल्म का नाम था भागम भाग। इस गाने को लिखा था समीर ने और संगीत दिया था प्रीतम ने, और इसे आप सुन रहे थे

ये फिल्म संगीत में जो चल रहा है आपके अपने आकाशवाणी इंदौर पर। दोस्तों, सिंदूरी आसमान, घर लौटते पंछी, चेहरे पर लगती ठंडी हवा और अपनों के साथ गपशप रोज भले मुमकिन ना हो, पर संडे की शाम तो ऐसी ही होनी चाहिए। सोशल मीडिया से दूर और इनके साथ बैकग्राउंड में आकाशवाणी के गीत। अगर ये सब हो तो ये सिंदूरी शाम सुहानी शाम में बदल जाती है।

समीर का लिखा ये गाना अभी सुन रहे थे आप लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ में। संगीत आनंद मिलन का था और फिल्म का नाम था वंश। दोस्तों ज़रा याद कीजिए, बचपन में रविवार शाम का मतलब क्या होता था। स्कूल बैग तैयार करना, जूते पॉलिश करना, यूनिफॉर्म निकाल कर रखना और मन ही मन भगवान से ये प्रार्थना करना कि काश रात में इतनी बारिश हो जाए कि सुबह स्कूल की छुट्टी हो जाए। आज स्कूल तो नहीं है, लेकिन सोमवार से बचने की इच्छा शायद अब भी हमारे मन में वही है। स्कूल बंक करने की इच्छा छोड़ दी जाए तो एक चीज़ थी जो हमें बचपन में बहुत पसंद थी और बड़े होते होते हम उससे बचने लगे, बारिश में बेफिक्र होकर भीगना। कितना सुंदर था ना वो वक्त, जब कल की फिक्र नहीं सिर्फ आज की मस्ती होती थी।

उदित नारायण एसपी बाल सुब्रमण्यम और एसपी पल्लवी की आवाज़ में सुन रहे थे अभी आप ये गाना। फिल्म का नाम था हमसे है मुकाबला। ए आर रहमान का संगीत था पी के मिश्रा के बोल थे। दोस्तों ईमानदारी से बताइए, रविवार शाम को आप कितनी बार आपने सोचा कि बस 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोल लेते हैं और फिर पता ही नहीं चलता कि घंटा कब निकल जाता है। सोशल मीडिया का टाइम तो उड़ जाता है लेकिन रविवार की शाम भी उतनी ही स्पीड से निकल जाती है। इसलिए थोड़ा फ़ोन को आराम दीजिए और इस खूबसूरत शाम को महसूस कीजिए।

आतिफ असलम की आवाज़ में सुना अभी आपने ये गाना। फिल्म का नाम था टाइगर जिंदा है, इरशाद कामिल के बोल थे और संगीत विशाल शेखर का था। और इसी के साथ फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। अपनी तृप्ति लटपटे के साथ आप सुन रहे थे फिल्म संगीत आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। और आइए अब समय है अगले कार्यक्रम का, आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत में आज स्वतंत्र कुमार ओझा की गाई कुछ रचनाएं।

बाल कृष्ण शर्मा धर के ये रचना भी आप सुन रहे थे स्वतंत्र कुमार ओझा की आवाज़ में, और साथ ही उनकी थी सुमन दांडेकर।

सुमित्रा नंदन पंत का लिखा ये गीत अभी सुन रहे थे आप स्वतंत्र कुमार ओझा की आवाज़ में। इन्हीं के स्वर में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुगम संगीत के कुछ गीत।

ये भक्ति रचना भी आप सुन रहे थे स्वतंत्र कुमार ओझा की आवाज़ में। आज हम आपको सुनवा रहे थे स्वतंत्र कुमार ओझा के गाई कुछ रचनाएं हमारे सुगम संगीत के कार्यक्रम में। और अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने का। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हम लाए हैं तारा मिश्रा की गाई कुछ लोकगीत। आइए शुरू करते हैं इस देवी गीत के साथ।

ये देवी गीत अभी सुन रहे थे आप तारा मिश्रा की आवाज़ में। इन्हीं के स्वर में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लोकगीत के लोक संगीत कार्यक्रम के सारे लोकगीत। लीजिए प्रस्तुत है इन्हीं के स्वर में एक और लोक रचना।

ये लोकगीत अभी आपने सुना ताना मिश्रा के स्वर में, इन्हीं की आवाज़ में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लोक संगीत के लोकगीत। आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में ये बुंदेली लोक रचना

0: इस बुंदेली लोक रचना के साथ ही संपन्न होता है लोक संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज हम सुन रहे थे तारा मिश्रा के गाए कुछ लोकगीत। आकाशवाणी इंदौर है, हिंदी में समाचार कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए ये बात कही। इस दौरान सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। ये कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के कार्यनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
2: देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक हैं, देश के अन्य भागों से उनका लगाव, निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरे देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण निछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने यह जिम्मेदारी सौंपने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रही अवैध वसूली में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोबा बडिंगलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के कारण असुरक्षित या क्षतिग्रस्त पाए गए सभी स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जाए

0: और आवश्यक मरम्मत पूरी होने तक उन्हें बंद रखा जाए। हरारे में भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 193 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में जिम्बाब्वे ने ताजा समाचार मिलने तक सातवें ओवर में 3 विकेट पर 56 रन बना लिए हैं। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए। भारत शुरुआत के दोनों मैच जीतकर श्रृंखला पहले ही अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज रात और कल सुबह तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, आज सुबह आज शाम 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम में सुनना न भूलेगा ऊर्जा की बचत, इस विषय पर प्रभात रंजन से वार्ता और किसान और जवान को समर्पित सुरेंद्र श्रीवास्तव का कविता पाठ। डगर विकास की ये कार्यक्रम सुनना न भूलिएगा रात 8:15 से। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:30 से और चित्र गीत का समय होगा रात 9:15 पर। पत्रों पर आधारित आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन होगा रात 9:30। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आप सुनेंगे रात 10:00 से। आज सुने विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल का संतूर वादन, तबला पर संगत देंगे पंडित हितेंद्र दीक्षित, राग होगा झिंझोटी किरवानी और मिश्रित आधारित धुन।

भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन होगा कल सुबह 6:05 पर और 6:30 सुबह सुनिएगा चिंतन में मेहनत और किस्मत। इस विषय पर चिंतन आलेख होगा रोमी सेन का, वाचक स्वर होंगे मनीष कुमार सोनी के। डैप के अधिक उपयोग से होने वाले नुकसान और सही उपयोग का सुझाव, इस विषय पर जानकारी आपको प्राप्त होगी खेती की बातें कार्यक्रम में सुबह 6:35 पर। आलेख होगा डॉक्टर अनुराधा शर्मा का। श्री रामचरित मानस गान आप सुन सकेंगे कल सुबह की सभा में 6:40 पर। और गुड मॉर्निंग इंदौर ये कार्यक्रम होगा कल सुबह 7:20 पर। कल का गुड मॉर्निंग इंदौर हमारा कार्यक्रम केंद्रित होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर। श्रोताओं फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा कल सुबह 8:30 से और सुबह 9:00 का समय होगा मराठी कार्यक्रम का। कल सुनिए आषाढ़ वारी इस विषय पर हमारी वार्ता, विश्वनाथ टालकुटे वकील इनसे भी एक वार्ता आपको सुनवाई जाएगी इसी कार्यक्रम में।

सुबह 9:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे भुवनेश कोमकली का गायन राग होगा अहिर भैरव। जिले की चिट्ठी सुनेंगे आप कल सुबह 10:00 और हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन का समय होगा कल सुबह 10:05 से। इसके बाद एक और अन्य सजीव फोन इन कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे हम, फोन करें और गीत सुने, जिसका समय होगा सुबह 11:00। दोपहर की सभा में 12:02 से सुनिए फिल्म संगीत और संग्रहालय से ये कार्यक्रम दोपहर 12:30।

श्रोताओं, स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 1 बजे और लोक संगीत 1:30 से आप सुन सकेंगे। 1:45 से आपको सुनवाया जाएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। ये थी आज रात और कल सुबह तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे आप हमारे भोपाल केंद्र से।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बड़ी बहू,
6: ये तुम्हारे ना।
5: इतनी भी क्या जल्दी थी?
6: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
5: और ये मेरी गुड़िया के ना।
7: पर दादी, आपके नाम?
8: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
6: शुभ शुभ बोलो।
5: क्या
8: आरबीआई कहता है?
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निवाड़ी में 193 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले विकास कार्यो का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। और मध्य प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है और हर भारतीय को गर्व से भर देता है। उन्होंने विक्रम 1 के लॉन्च होने को लेकर कहा कि
1: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी।
0: प्रधानमंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि देश के लोग एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़कर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
1: मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कैच द रेन अभियान पर चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश में जल संरक्षण के लिए हुए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि सीधी जिले में लगभग 1500 तालाब बनाए गए हैं, नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। उन्होंने कहा कि बारिश की हर बूंद को सहेजने के अभियान को जन आंदोलन बनाना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बाद में मीडिया से बातचीत में श्री जोशी ने यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा,
1: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन देने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स पे मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है।
0: भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर सेवा संबंधी मामलों पर चर्चा की। डॉ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रतिनिधिमंडल में बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों के डाक कर्मचारियों के प्रतिनिधि थे। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने प्रशासनिक सुधारों पर सरकार द्वारा निरंतर ध्यान दिए जाने की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए यह बात कही। इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज निवाड़ी में लगभग 109 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसमें 25 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से निर्मित संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट भवन और 19 करोड़ 98 लाख की लागत से तैयार 100 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय भवन सहित लगभग 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और 54 करोड़ की लागत से लगभग 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने यहां गीता भवन और सांदीपनी विद्यालय की स्थापना सहित क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में दूध का उत्पादन 12% से बढ़ाकर 20% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के विकास को नई दिशा देगी। इसके माध्यम से निवाड़ी जिले के सैकड़ों गांवों को लाभ मिलेगा।
3: सिमरा में सांदीपनी विद्यालय देने की घोषणा की और निवाड़ी में एक आपने कहा सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड बनाना चाहिए। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, हमने फिर निर्णय किया, मुख्यमंत्री सुगम सहायता बस चालू की जाएगी और गौशाला निर्माण की बात भी आपने कही, मैं गौशाला बनाने की भी घोषणा करता हूँ। विधि महाविद्यालय और MBA भी खोलना चाहिए तो भविष्य में युवाओं को पढ़ने के लिए रोजगार परक शिक्षा के लिए लॉ कॉलेज भी और MBA भी खोला जाएगा।
0: कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण, स्कूली छात्र छात्राओं को साइकिल तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया गया। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का राजनंदगांव जिला बारिश का पानी इकट्ठा करो अभियान और जल रक्षा मिशन के तहत वैज्ञानिक योजना और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बन गया है। 662 गांवों में 60,000 से अधिक जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचना स्थापित की गई है। 500 से अधिक बंद पड़े बोरवेलों को पुनर्भरण शॉफ्ट में परिवर्तित किया गया है। 600 से अधिक इंजेक्शन कुओं को 1,700 से अधिक मिनी परकोलेशन टैंकों से जोड़ा गया है और 2,500 से अधिक जल निकायों को जियो टैग किया गया है। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। अगले 24 घंटे के लिए शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर समेत प्रदेश के करीब 50 जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून ट्रफ और शियर जोन सक्रिय है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में दो निम्न दबाव क्षेत्र भी बने हुए हैं। इन्हीं मौसम प्रणालियों के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना अपर कलेक्टर न्यायालय राजस्व प्रशासन ने पूरे प्रदेश में प्रकरण डिस्पोजल में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। शिवपुरी जिले में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को कम पानी वाली फसलें

लेने की सलाह दी है। झाबुआ जिले में खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आज ग्राम पंचायत खेड़ी नवापाड़ा में जल संरक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छतरपुर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें ग्राम और नगर सुरक्षा समिति सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने भाग लिया। आगरमालवा जिले में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं आज ग्राम साबनी के पास सड़क दुर्घटना में कार में सवार एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि बच्चों और महिलाओं सहित 6 अन्य घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवाड़ी में 109 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया और मध्य प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
1: तो लेन देन
0: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: हम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियोज की घड़ी में
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है खेती गृहस्थी कार्यक्रम।

खेती गृहस्थी की चौपाल पायला सभी भाई बहनों के तृप्ति की राम राम। भाई बहनों, आज अपन बात करेंगा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कई छे, साथ साथ अपन वार्ता सुनांगा कि ऊर्जा की बचत कसी करा, अन वार्ताकार छे प्रभात रंजन जी, अन अपन कविता पाठ सुनांगा किसान अन जवान पर आधारित सुरेंद्र श्रीवास्तव का द्वारा। तो सबसे पहले अपन बात करें कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कई छे। तो भाई बहनों, 29 फरवरी 2024 से या सक्रिय रूप से अपना भारत में आधारित जो छे या योजना छे, एक उद्देश्य असो छे कि भाई जो हर महीना लगभग 300 यूनिट मुफ्त बिजली देनू छे अपना घर न पर, अन साथ साथ घर की छत पर सोलर पैनल लगानू छे, अन एका से लगभग 1 करोड़ घर न का फायदो है। इन्हीं योजना को उद्देश्य यो छे। एकाज अपना के कई करनु पड़े, अपनी सरकार ने कई के करे छे, पहले अपन वो समझाएं। एका में सरकार अपना के सब्सिडी देच कि अपना घर की छत पर अपन सोलर पैनल लगाना, तो का में लगभग 78,000 रुपया तक को खर्चो सरकार उठावज, अने बाकी को कई लगाइज तो वो अपना के करनु रहे। अने एका लिए जरूरी कई छे, अपन कसो एका लायक बनी सकान, तो अपनो खुद को घर होनू चाहिए, साथ साथ अपनो स्वतंत्र बिजली को कनेक्शन अपना घर में होनू चाहिए। अन एका में आए कि कई सीमा नहीं है, मतलब कई को गरीब हो अमीर हो कई नहीं, आपके पास छत होनी चाहिए अन खुद को बिजली को कनेक्शन होना चाहिए, तो आपका घर पर सोलर पैनल लगी जाएगा। घर पर कई कई प्रकार की छाव नहीं आनी चाहिए, धूप पूरा टाइम जब तक सूर्य रहे तब तक अपना घर पर आनू चाहिए, ये इन्हीं योजना की पात्रता है। अन एका लिए करनू कहीं पड़ेगा भाई, अपना का पंजीयन करानू पड़ेगा, कहाँ करानू पड़ेगा, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली

योजना की वेबसाइट छे ओका पर जाइक अपना का देखनुज न अपना का पंजीयन करानुज ओका में दस्तावेज कई लगेगा ये समझी ले वहाँ पर ओका में अपना का लगेगा अपनो आधार कार्ड अभी फिलहाल को बिजली को बिल अन बैंक की पासबुक नहीं तो कैंसल्ड चेक अन मकान का कागज ये सब अपना पास होए तो अपन इन योजना का लायक हुई जावा बात समझ में आई। एकासे कई होएगा अपनो बिजली को खर्चो भी कम होएगा अन बिजली बनाने का लिए जो अपना प्राकृतिक जो अपना सोर्स है वो भी अपना का काम देगा मतलब वो भी बचेगा अपना। तो बचत की बात अपन करा तो पहले अपन सुनी लेवा एक लोकगीत जो इन बात पर आधारित है कि बचत कई हो वो भी पानी की अने एक गाय छे सिद्धेश्वर सेन और उनका साथी न तो चलो सुना लोकगीत ने समझा पानी की बचत।

0: ઉર્જા કી બચત કસી કરા અને યા વાર્તા કરી રહ્યા વાર્તાકાર પ્રભાત રંજન તો સુનાને સમજાવ્યા વાત
1: हमारे ग्रामीण बहनों को प्रभात रंजन का नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष ऊर्जा की बचत के विभिन्न तरीके एवं उसके महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो हमारा मतलब कार्य करने की क्षमता से होता है। हम अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा के विभिन्न संसाधनों का इस्तेमाल विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। उदाहरण के तौर पर आग की ऊर्जा का इस्तेमाल भोजन बनाने में, बिजली की धारा में जो ऊर्जा है उससे पंप चलाने में और पंप से खेतों की सिंचाई करने में, सूर्य के प्रकाश जो ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है से घरों में रोशनी होती है, कपड़े और कृषि उत्पाद सूखता है। इसी प्रकार डीजल, केरोसिन, उपला आदि ऊर्जा के कई सारे स्रोत हैं। आजकल ऊर्जा का उपयोग हम लोग मुख्य रूप से खाना बनाने, घरों एवं सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करने और कृषि के कार्यों में कर रहे हैं। हमारी बढ़ती आबादी और बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, परंतु जिस गति से ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ रही है उसे देखते हुए ऊर्जा के समस्त संसाधनों के नष्ट होने की आशंका बढ़ने लगी है। क्या हमारे पास आज ऊर्जा के संसाधन इतने पर्याप्त हैं कि यह अनंत तक चल पाएगा? क्या हमारे पास इतने जंगल, केरोसिन, डीजल है कि वह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जलावन उपलब्ध करा पाएगा? केरोसिन घरों में उजाला फैला पाएगा और सिंचाई के लिए आवश्यक पंप चलाने के लिए डीजल उपलब्ध करा पाएगा? मैं आपका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहूंगा कि भारत में विश्व की आबादी का 16% लोग रहते हैं और दुनिया के ऊर्जा संसाधनों का मात्र 1% भाग ही भारत में पाया जाता है। यदि हम ऊर्जा का उपयोग इसी रफ्तार से करते रहें तो अगले 40 से 50 सालों में हमारे गैर अक्षय ऊर्जा के सभी स्रोत समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ऊर्जा की सीमित उपलब्धता को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को कम करके कम ऊर्जा का उपयोग कर ऊर्जा की बचत करें। कुशलता से आज ऊर्जा का उपयोग भविष्य में इसके उपयोग के लिए, इसे बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। एक पुरानी भारतीय कहावत है जो इस तरह वर्णन करती है, पृथ्वी, जल और वायु हमारे माता पिता से प्राप्त हमारे लिए एक उपहार नहीं बल्कि हमारे बच्चों के लिए कर्ज है। इसलिए हमें ऊर्जा संरक्षण को एक आदत बनाने की जरूरत है। ऊर्जा की बढ़ती खपत और उसकी सीमित उपलब्धता को देखते हुए आने वाले कल हमारे घरों में उजाला हो सके, ऊर्जा संरक्षण अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, अब हम ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न तरीके एवं इसके महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा की शुरुआत घरों में ऊर्जा की बचत कैसे किया जाए से करेंगे। घरों में ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः प्रकाश, खाना पकाने एवं अन्य घरेलू उपकरणों के संचालन के लिए किया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि घरों के कमरों में कई बार हम बल्ब, ट्यूबलाइट एवं पंखे आदि चालू अवस्था में छोड़कर निकल जाते हैं, या दिन के समय जब कमरे में पर्याप्त रोशनी रहती है फिर भी लाइट जला लेते हैं। ऊर्जा बचत के लिए यह अति आवश्यक है कि जब भी लाइट या पंखे की जरूरत ना हो तो हम इसे बंद कर दें। 20 से 30% ऊर्जा की बचत तो हम अपने घरों में लगे बल्ब, ट्यूबलाइट एवं पंखों की ब्लेड्स पर जमी धूल की को नियमित रूप से साफ कर, पंखों की ग्रीसिंग को ऑयलिंग कर एवं पुराने किस्म के रेगुलेटर के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का उपयोग करके कर सकते हैं। ऊर्जा बचत के क्षेत्र में विज्ञान भी अपनी नई खोज से हमारी मदद कर रहा है। परंपरागत तरीके के लैंप, बल्ब या ट्यूबलाइट जिसका इस्तेमाल हम करते आ रहे हैं उसकी जगह पर नई किस्म की बल्ब, CFL या LED बल्ब आ गया है, जो न सिर्फ बिजली की बचत करता है बल्कि 5 गुना ज्यादा प्रकाश भी देता है। यदि 60 वाट का साधारण बल्ब जो पीला रोशनी करती है की जगह पर एक हम 15 वाट का बल्ब, CFL या LED बल्ब का इस्तेमाल करें तो हम अपने रोशनी भी बराबर मिलेगी और 45 वाट बिजली की भी बचत होगी। इस प्रकार सिर्फ एक बल्ब से हम 11 यूनिट बिजली की बचत महीने में कर लेंगे। जरा सोचिए कि यदि हमारे घर में 3 कमरे और तीनों कमरों में परंपरागत बल्ब की जगह CFL या LED बल्ब से बदल दें तो महीने में हम 30 से 35 यूनिट बिजली की बचत कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने भी इसकी अहमियत समझते हुए उजाला नामक योजना बनाई है ताकि हम ऊर्जा की बचत कर सकें। बहनों, ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग होने वाले संपूर्ण ऊर्जा का 90% ऊर्जा जैव ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, सूखे गोबर या कृषि अवशेष से उत्पन्न होता है। इस ऊर्जा का

0: इस्तेमाल मुख्यतः रसोई के ईंधन के रूप में खाना बनाने में किया जाता है। इस जैव ईंधन में मुख्य रूप से लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जिससे न सिर्फ हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, बल्कि हमारी महिला बहनें और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल रहा है। एक महिला का 4 से 5 घंटे का समय लकड़ी चुनने और खाना बनाने में व्यतीत हो जाता है, और खाना पकने के दौरान जो धुआं निकलता है वह श्वसन तंत्र को भी काफी प्रभावित करता है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि भोजन पकाते वक्त हम ऊर्जा का और उसके स्रोतों का सदुपयोग करें। हम लोग कई बार छोटी छोटी बातों को अमल में लाके न सिर्फ पर्यावरण में अपितु ऊर्जा बचत में भी काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। खाना बनाने में उच्च ऊर्जा क्षमता वाले चूल्हों का इस्तेमाल से न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि यह प्रदूषण मुक्त भी होगा, जिससे महिलाएं और बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। खाना बनाते समय हम और भी कई विधि अपना सकते हैं जो हमें ऊर्जा बचत में मदद कर सकता है, जैसे कि खाना बनाते समय बर्तन को ढककर रखें, इससे खाना जल्दी बनता है और ईंधन की भी बचत होती है। बहुत सारे अनाज जैसे कि चावल, दाल, चना आदि को बनाने से पहले यदि आधा एक घंटे के लिए भिगो कर रख दिया जाए तो इन्हें पकाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। खाना बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खाने में पानी का उचित मात्रा का इस्तेमाल करें, क्योंकि खाने में ज्यादा पानी होने से उसे गर्म करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और समय भी ज्यादा लगेगा, जिससे हमारी ऊर्जा की बर्बादी होगी। लकड़ी, कोयला की जगह LPG गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है, यह ऊर्जा का एक शुद्ध स्रोत है। स्वास्थ्य, पर्यावरण और ऊर्जा के दृष्टिकरण से भी काफी अनुकूल है। LPG सिलेंडर के इस्तेमाल से हम ऊर्जा की भी काफी बचत कर सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार जितनी ऊर्जा हमें 100 किलो लकड़ी के जलाने से मिलती है, उतनी ही ऊर्जा सिर्फ एक 14 किलो LPG सिलेंडर से मिल जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में लाने आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन की जगह शुद्ध LPG गैस के उपयोग से को बढ़ावा देने, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा एवं उनकी सेहत की सुरक्षा के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना बनाए हैं। बहने, हम कृषि के क्षेत्र में भी ऊर्जा की काफी अच्छे तरीके से बचत कर सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग 60% से अधिक आबादी कृषि से संबंधित कार्यों में लिप्त है। कृषि में ऊर्जा के रूप में बिजली या डीजल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई, खेत जोतने आदि में होता है। एक विश्लेषण के अनुसार कृषि क्षेत्र में मामूली तकनीकी सुधार कर 30 से 50% ऊर्जा की बचत संभव है। किसान भाइयों, जब आप पंप का चुनाव करते हैं तो आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि पंप ISI मार्क का हो और पंप की क्षमता आपके कुएं की गहराई और खेत के साइज के अनुसार हो। पंप के सही चुनाव से 25 से 35% डीजल या बिजली की बचत संभव है। कुएं से पानी खींचने के लिए जिस पाइप का इस्तेमाल होता है उसमें बड़े वाल्व का इस्तेमाल करें। 10 से 20% ऊर्जा की बचत तो आप ये करके ही संभव कर सकते हैं, क्योंकि बड़े वाल्व होने से कुएं में से पानी खींचने में कम ऊर्जा की खपत होती है। कई बार यह देखा गया है कि खेतों की सिंचाई में लोहे के पाइप का इस्तेमाल होता है। इस परंपरागत लोहे की पाइप की जगह यदि आप PVC या HDPE पाइप का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी ऊर्जा की बचत होती है। जब आप खेतों में सिंचाई के लिए पाइप बिछाते हैं तो ध्यान रखें कि पाइपों में घुमाव या गांठ कम हो, इससे घर्षण से होने वाली ऊर्जा के नुकसान को कम किया जा सकता है। जब आप पंप लगाते हैं तो ध्यान रखें कि इसकी ऊंचाई कुएं के जल स्तर से 10 फीट से अधिक ना हो। किसान भाइयों, महीने में 10-15 लीटर डीजल की बचत तो सिर्फ एक पंप और पाइप की ऊंचाई को 2 मीटर कम करके ही किया जा सकता है। ऊर्जा बचत के लिए आवश्यक है कि नियमित रूप से पंप सेट पर तेल व ग्रीस का उपयोग करें। पंप के वेल्ड को टाइट रखें और खराब होने पर तुरंत बदल दें। कुशलता से आज ऊर्जा का उपयोग, भविष्य में इसके उपयोग के लिए इसे बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। ऊर्जा के सदुपयोग या बचत के संदर्भ में महात्मा गांधी जी का यह कथन कि पृथ्वी हर आदमी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रदान करती है, लेकिन हर आदमी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। अतः ऊर्जा की बढ़ती खपत और इसकी सीमित उपलब्धता को देखते हुए आने वाले कल हमारे घरों में उजाला हो सके, ऊर्जा की बचत करना अति महत्वपूर्ण है।
1: भाई बहनों, अभी अपन सुनी रहा था वार्ता પ્રભાત રંજનકા દ્વારા ઉન આપણા કહ્યું બતા કે ઉર્જા કી બચત કરવું કેટલી જરૂરી છે અને કસો કરી શકાય. તો ભાઈ બહેનો, હું ભી એક વાત આપણા કિસાનભાઈને સે કહેવું ચાહુંગા, કિસાનભાઈને સબને સે કહેવું ચાહુંગા કે આપણા ખાલી એક જ ચીજ કો રણનું રહે, જબ સમય નીકળી જાય, જબ ચીજ ચલી જાય તો આપણ હાથો હાથ ખાલી રહી જાય, આપણા ને આપણ માથો પીડતો રહી જાય કે અરે આજ પાણી નહીં હઈ, બિજલી નહીં હઈ. તો એકો કારણ ભી આપણ જ છે. આપણને પ્રકૃતિ માયા સે સબ લઈ લ્યો છે પણ ઉનકા દિયો કંઈ નહીં હઈ. તો આપણા કંઈ દેણું જ, સબ કે પેડ લગાવો, પેડ લગાવો, પેડ ભી લગાવો તો અસો લગાવો કે એક લગાવો પર નેક લગાવો, મતલબ એક પેડ અસો લગાવો જો કે 3-4 સાલમાં અચ્છો બડો હોઈ જાય અને કાફી સાલ તક વો ધરતી પર રહે અને ધરતી કી ઓક્સિજન કી પૂર્તિ કરી શકે. અસો નહીં કે ભાઈ પેડ લગાવો કયો 50-60 ઝાડ લગાવી દે અને ઉનકે પલટી કે દેખ્યો ભી નહીં કે ઓકે પાણી મિલી રહ્યો છે કે નહીં, કે વો બડી રહ્યો છે કે નહીં. તો સમજદારી સે કામ કરાંગા તો આપણા કચ્છ આપણા આપણો ને આપણા આગલી પેઢી કો ભી ભલો હોયગા. સાથે સાથ એ કરું વાત કો આપણા ધ્યાન રાખવું ચાહે છે વો છે બચત પાણી કી. અભી પાણી કો મોસમ ચલી રહ્યો છે, કંઈ તો ખૂબ બાળ ના આવી રહી ને કંઈ પાણી પડી નહીં રહ્યો હોય તો આસામાં આપણ કંઈ કરા. આસામાં આપણા કયો કરવું ચાહીએ કે જહાં પર પાણી જેના દિન પાણી ખૂબ પડી જાય તો પાણી વહી કે નીકળી જાય છે, કાં છે નાળી નસે, રોડ પસે, આપણા ખેત મસે, તો એની તીની જગ્યાને આપણા ઘર ન મસે, તો એની ચારી પાંચી જગ્યાને પર આપણા કંઈ કરવું ચાહીએ, પાણી ક જમીનમાં ઉતારણ કી વ્યવસ્થા કરવું ચાહીએ. હવે કસો કરા, ઘરનો કો પાણી જો છે છત નસે નીચે જો વહી જાય ઓક સીધા એક પાઇપ કા દ્વારા ગડ્ડો કરી કે જમીન કા અંદર ઉતારો. નાળી નસે જો પાણી વહી કે રોડ ન પર જઈ રહ્યો છે ઉની નાળી ના કા પાસમાં ગાંવનામાં પણ બડા બડા ગડ્ડા કરી દો ને આસપાસ મેળ બનાવી દો, કામ કોઈ પડે બી નહીં અને પાણી જો છે એ જમીનમાં એકઠો થઈ જાય. ખેતનામાં પણ કંઈ કરા, ખેતમાં જ્યાં ઢલાન છે ઉસ તરફ પણ મેળ બનાવી દો, વહાં પર પણ જમીન કે છે ઓકા કટાવ ડાલી દો તો જગ્યા જગ્યા પાણી રૂકી કરે જમીન કા અંદર ઉતરગ વહી કરીને ચલી નહીં જાય ગા. સાથે સાથે આપણી જે જમીન મટ્ટી છે આપણા ખેત કી વા બી સુરક્ષિત રહે ગા. જબ છોટા છોટા ઉપાય આપણ ખુદ કરાની તો આપણ ખુદ ક આપણા સમાજ ક ને આપણા દેશ ક મજબૂત બનાવવાની. એકાલીએ ભગવાન અને સરકાર જવાબદાર નહીં, આપણ ખુદ બી જવાબદાર છે. જવાબદારી સમજાંગા તો ભગવાન બી આપણા પર કૃપા કરે ગા. ભગવાન કો નામ લઈ લ્યો તો સબસે બડો ભગવાન તો પાણી બાબો જ છે, હે ની? તો આપણ ફતેહસિંહ પરમાર કી આવાજમાં પાણી બાબા સે કહેવાય કે પાણી બાબા આવરે ને કકડી ભુટ્ટા લાવરે એના લોકગીત કા માધ્યમ સે.

0: આનંદ આવી ગયો ભાઈ બહેનો, ફતેહસિંહ પરમાર કે આવાજમાં યો લોગી સુની કા અને પાણી બાબા કા કવાન કે સબ જગ્યા અચ્છા સે આય બરાબરી સે આય. અને એ કરું વાત છે કે અમારા દેશમાં કિસાન અને જવાન ઇન દ્વિનક પણ ખૂબ પૂછાય અને ઉનકા પૂજાન ભી, લેકિન સબસે જ્યાદા તકલીફમાં અમારા એ દ્વિ ભાઈ જ રહે છે. તો એના દ્વિ ભાઈને અપણ સમય સમય પર યહાં પર અપણ કુછ સમર્પિત કરાય. તો આજ અમારા દેશ કા કિસાન અને જવાનને સમર્પિત છે યો અમારો કવિતા પાઠ, જે એક લઈ કા આયેલ છે સુરેન્દ્ર શ્રીવાસ્તવજી. તો સુણાજો કવિતા પાઠ.
1: किसान भैया भाइयों राम राम, मैं कुछ कविता लेकर आया हूँ किसान की पुकार. नाम है सुरेंद्र श्रीवास्तव. सुबह सुबह जब सूरज जागे, धरती माँ का आंचल भागे, ओस की बूंदे मोती बनकर खेतों में हरियाली सजे, तब हल लेकर एक किसान अपने सपनों को बोने निकले. माथे पर पसीना चमके, आंखों में उम्मीदें पले, वह किसान है भारत का. धरती जिसका मान है उसकी मेहनत से ही चलता है पूरा हिंदुस्तान है. ना गर्मी से वह डरता है, ना सर्दी उसे रोकती है, बरसातों की तेज हवाएं उसकी राहें टोकती है, फिर भी अपने खेतों में वह दिन रात मेहनत करता है. अपने बच्चों के भविष्य की चुपके चुपके चिंता करता है. कभी सूखा आ जाता है, कभी बाढ़ें सब बहा लेती है, कभी ओलों की मार अचानक सारी मेहनत ढा देती है. जिस फसल को सींचा उसने खून पसीने से महीनों तक, वही फसल जब नष्ट हो जाए, टूटे सपने पल भर में सब, फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए दुनिया को रोटी देता, खुद भूखा रह जाता लेकिन हर घर का चूल्हा जलता. कितनी विडम्बना है देखो, जो सबका पेट भरता है आज वही किसान बेचारा अपना दर्द छुपाता है. कर्ज के बोझ तले दबकर कितने सपने टूट गए, कितने घर भी छूट गए, उसके दिल को चीर गई मजबूरी की काली रातें, उसकी खुशियां निगल गई. मंडी में जब फसल लेकर आशा से वो जाता है, दाम सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर भर आता है. जिस गेहूं को सोना समझा, जिस कपास को धन माना, ओने पौने दामों में ही उसे सब कुछ बेचकर आना, फिर घर जाकर बच्चों की छोटी छोटी मांगे सुनता, बेटी की शादी की चिंता, बीमार माँ का दर्द भी चुनता, पत्नी की सुनी आंखों में सपनों की बुझती लो देखे, फिर भी हिम्मत करके अगली फसल के बीजों को फेंके, क्योंकि उसे भरोसा है धरती माँ की ममता पर. शायद अगले ऋतु में फिर से

0: बरसेगी खुशियों की फुहार। कागजों की योजनाओं में किसानों के सपने बहते हैं। कोई पूछे उस मजदूर से जिसने जीवन खेतों को दिया, जिसने अपने तन का हर कतरा भारत माँ को अर्पण किया। वह किसान जब थक जाता है आसमान को ताकता है, शायद कोई उसकी पीड़ा भगवान तक रखता है। उसके हाथों की लकीरों में देश का भविष्य बसता है, उसकी मेहनत के कारण ही भारत का मान सस्ता है। यदि किसान ही टूट गया तो कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे हर घर में अन्न रहेगा, कैसे भारत स्वर्णिम होगा। इसलिए अब समय यही है उसकी पीड़ा को पहचानो, सिर्फ तालियों नारों से नहीं उसके जीवन को आसान बनाओ, उसे मिले उसकी मेहनत का पूरा पूरा सम्मान। यहाँ सभी सच्चे अर्थों में होगा भारत देश महान। यहाँ आओ मिलकर प्रण ले, हम किसानों का मान बढ़ाएंगे, उनके सुने जीवन में फिर खुशियों के दीप जलाएंगे। क्योंकि जब खेतों में हरियाली होगी तभी देश मुस्कराएगा, भारत माँ का हर बेटा सुख और शांति पाएगा। जय जवान और जय किसान सिर्फ नारा नहीं बनना चाहिए, भारत के हर किसान को जीने का अधिकार मिलना चाहिए। अगली मेरी कविता है सीमा का पहरी। जब पूरा भारत सोता है तब कोई सीमा पर जागता है, अपने अपने घर आंगन से दूर कहीं देश की रक्षा में लग जाता है। हाथों में बंदूक लिए वो सीने में जज्बा रखता है, भारत माँ की रक्षा खातिर हर मुश्किल से लड़ता है। वो सैनिक है इस मिट्टी का जिसे तिरंगे से प्यार है, जिसकी हर एक सांस में बस भारत माँ का सत्कार है। कड़कड़ाती ठंडी रातों में जब बर्फ पहाड़ों पर गिरती है तब वो सीमा पर खड़ा जवान अपनी ड्यूटी पूरी करता है। ना ठंड उसे भिगा पाती है, ना गर्मी उसे झुकाती है, रेगिस्तान की जलती धरती भी उसकी हिम्मत अजमाती है। कभी ऊंचे पर्वतों पर, कभी जंगल की राहों में, कभी दुश्मन की गोलियों के बीच, कभी तूफानी निगाहों में, हर हालत में डटा हुआ है वो भारत माँ का लाल है। उसके कारण ही सुरक्षित है अपना हर त्यौहार। जब हम दीपावली बनाते हैं, घर घर दीप जलाते हैं, तब कोई सैनिक सीमा पार अंधेरों से लड़ जाता है। जब हम होली में रंग लगाए, गीत खुशी के गाए, तब कोई अपने आंसुओं को चुपके से पी जाता है। उसकी माँ भी राह निहारे, पत्नी आंखें बिछाए रहती, बच्चे पूछे पापा कब आएंगे, पर किस्मत चुप रह जाती है। फिर भी वो अपने परिवार से ऊपर देश को रखता है, अपनी खुशियों की कुर्बानी दे भारत माँ को सजाता है। कितनी कठिन कठिन वो घड़िया होती है जब वो युद्ध का बोल बजता है, हर सैनिक माँ भारती की रक्षा हेतु निकल पड़ता है। उसे पता नहीं लौटेगा या तिरंगे में घर आएगा, फिर भी हंसते हंसते वो मौत को गले लगाता है। उसके दिल में डर भी होता पर चेहरे पर साहस रहता, क्योंकि उसकी एक बहादुरी से पूरा भारत सुरक्षित रहता। कितने वीर शहीद हुए हैं इस धरती की रक्षा में, कितनों ने अपना रक्त बहाया भारत माँ की सेवा में। उनके बलिदानों के कारण ही आज तिरंगा लहराता है, हर भारतवासी गर्व से फिर अपना शीश उठाता है। पर सोचो उस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी उस पल जब बेटी की अंतिम चिट्ठी आती होगी उसके घर, जब पत्नी की सुनी मांगे चुपके चुपके रोती होगी, जब बच्चों की मासूम आंखें पिता को ढूंढती होगी। फिर भी उस वीर की गाथा भारत का अभिमान बने, उसकी शहादत का हर हिस्सा किस्सा नई पीढ़ी की जान बने। सैनिक केवल इंसान नहीं देश की सांसें होता है, उनके कारण ही हम सब चैन की नींद सोते हैं। जब भी तिरंगा लहराएगा उन वीरों की याद आएगी, भारत माँ अपने बेटों की गाथा सदा सुनाएगी। आओ मिलकर प्रण ले, हम वीरों का सम्मान करेंगे, जो सीमा पर डटे हुए हैं उनका हरदम मान करेंगे, ना भूलेंगे उनके त्याग को ना बलिदान को भुलाएंगे, भारत माँ के उन वीरों का सदा शीश झुकाएंगे। जय हिंद की गूंज सदा हर दिल में जगानी होगी, हर सैनिक की कुर्बानी की कहानी सबको सुनानी होगी। क्योंकि जब तक वीर जवान है तब तक भारत जिंदा है, उसकी हिम्मत से ही अपना देश और जिंदा है। जय हिंद जय भारत।
1: बहुत सुंदर कविता अने बहुत समर्पित थी अपना जवान नक अने किसान नक सुरेंद्र श्रीवास्तव जी की ये कविता। भाई बहनों देखो, जीवन में हर प्रकार को रस आनंद आतो रहेज, अने बहुत सारा भाई बहन ने मैं बार बार कहेज कि जो लोकगीत को आनंद है सारो दुख भूले देज, तो लोकगीत को आनंद लेवांगा अपन अरु न सुनांगा शारदा पगारे को लगायेलो लोकगीत, अने आनंद से अपना जीवन को बितावांगा। तो सुनांगे लोकगीत।

अभी सुन रहे थे आप खेती गृहस्थी कार्यक्रम। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुर्खियों में कुछ ही देर में रिले करेंगे हम अपने भोपाल केंद्र से।

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 136वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज सुर्खियों में चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संबोधन मन की बात की 136वीं कड़ी, जिसमें कारगिल विजय दिवस से लेकर आत्मनिर्भर भारत, जल संरक्षण, अंतरिक्ष विज्ञान, पर्यावरण, स्थानीय उत्पादों और जन भागीदारी जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख किया गया। इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक श्री अशोक टंडन का हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार
1: अशोक जी, आपकी दृष्टि में प्रधानमंत्री के मन की बात के इस संस्करण का मूल संदेश क्या है? क्या ये सिर्फ संवाद है या राष्ट्र निर्माण की एक व्यापक सोच को भी प्रस्तुत करता है?
2: प्रधानमंत्री अपनी हर महीने की आखिरी रविवार को जो जनता के साथ संवाद करते हैं वो एक तरफा नहीं है, उसमें उस महीने में जो घटनाक्रम हुए होते हैं, जो भारत की उपलब्धियां होती हैं या भारत की जनता द्वारा जो उपलब्धियां होती हैं उनकी वो चर्चा करते हैं। और इस कड़ी में अगर जैसे आपने भी कहा कि कोई महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं तो प्रधानमंत्री उनकी भी चर्चा करते हैं। जैसे आज के 136वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जब इस बात की ओर ध्यान दिलवाया कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी तिथियां हैं जिन्हें याद करने के लिए कैलेंडर देखने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे आज 26 जुलाई एक ऐसी तारीख है जब कारगिल विजय दिवस है, क्योंकि ये दिन हमारे गर्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद को भी दिलाता है। तो इससे हमको याद आया कि कारगिल युद्ध एक्चुअली हुआ क्या था, क्योंकि कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियों पर कठिन मौसम में दुश्मन की चुनौती और इस हर परिस्थिति को हमारे सैनिकों ने इसका सामना किया था और उनका जो हौसला था वो हर चुनौती से बड़ा था, क्योंकि उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया था। जब कारगिल दिवस पर उन्होंने सब वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन किया तो इस तरह से एक याद दिलवा दी कि भारत ने कारगिल पर जो है विजय कैसे हासिल की थी। इसी कड़ी में अगर हम आगे देखें तो उन्होंने ये भी हम लोगों के साथ साझा किया कि भारत की जो अपनी तकनीकी क्षमता है वो भी दिन दिन बढ़ रही है
1: जी।
2: और कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्र गिरी शामिल किया गया। ये आधुनिक जंगी जहाज जो है ये भारत में ही डिजाइन किया गया और भारत में ही बना है, इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। तो ये भारत की आत्मनिर्भरता और उससे बढ़ती हुई शक्ति का प्रतीक है। और इसी महीने DRDO ने जो पिनाकल लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया और इस परीक्षण के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का जो सामूहिक परिश्रम है। तो 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। यानी आज रक्षा उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों के तरफ बढ़ रहा है। और इस महीने की शुरुआत में तो प्रधानमंत्री ने अपने इंडोनेशिया की यात्रा की भी चर्चा की, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बहुत बड़ा समझौता हुआ। यानी दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
1: अशोक जी, आपने कारगिल विजय दिवस का उल्लेख किया अभी, आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने शौर्य दिवस के बारे में क्या कहा है।
3: आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट, यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।
1: अशोक जी, आपने अभी उल्लेख किया INS महेंद्र गिरी का, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का और कुशा मिसाइल का, क्या ये भारत की बदलती हुई सामरिक नीति और आत्मनिर्भरता में एक नए युग की शुरुआत है?
2: बिल्कुल, क्योंकि भारत पिछले कई दशकों से विशेष तौर से जो सैन्य सामग्री है उसके लिए विदेशों पर ही निर्भर रहता था

0: ऐसा माना जाता था कि शायद भारत में तो तकनीकी क्षमता है ही नहीं, तो ये जो अब भारत की अपनी बढ़ती हुई तकनीकी क्षमता है ये पिछले 12 वर्ष में देखने को मिली है। और उसी का ये उदाहरण है कि जैसे INS महेंद्र गिरी शामिल हुआ, जैसे मैंने पहले कहा ये भारत में ही बना, भारत में डिजाइन हुआ, 2047 तक एक विकसित आत्मनिर्भर भारत बनना है तो उसमें रक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो वो पूरी तरह से आत्मनिर्भरता नहीं है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अब तो हम अपने मित्र देशों के साथ एक सामरिक महत्व के जितने भी उपकरण हैं वो हम उनके साथ साझा कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मोस और अस्त्र जैसे मिसाइलों का बड़ा भाई एक समझौता इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री करके आए हैं। तो इसलिए अब दुनिया का भरोसा भी, विशेष तौर से जो विकासशील देश हैं, उनका भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए भारत को बहुत ऑर्डर भी मिल रहे हैं हमारे रक्षा उपकरणों के।
1: प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र के पहले भारतीय रॉकेट विक्रम 1 और विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर इसका उल्लेख किया।
2: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
1: अशोक जी, क्या ये भारत के नवाचार और ओलंपियाड के लिहाज से देखें तो युवा शक्ति के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है?
0: बिल्कुल, साइंस में भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का मस्तक ऊंचा हो रहा है, साइंस ओलंपियाड जो है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कॉम्पिटिशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं और इसी महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड भी हुए थे और इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दलों का शानदार प्रदर्शन रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में तो हमारे सभी 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। और पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के विद्यार्थियों ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में तो हमारे सभी विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल जीता, तो ये अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी विद्यार्थियों ने मेडल जीते और इनमें से एक गोल्ड मेडल के बारे में जो कहा जाए कि वो तो मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर जीते, उनके नाम है। उन्होंने कहा कि मुझे देश की युवा शक्ति पर गर्व है और ये देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड और हैकाथॉन का कल्चर बढ़ रहा है और देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम पर अपना एक तरह से इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं और भारत का परचम भी लहरा रहे हैं।
1: जी, इस बार मन की बात में चटाई, हर्बल चाय, खादी, हथकरघा और स्थानीय उत्पादों का विशेष उल्लेख हुआ है। खादी पर प्रधानमंत्री ने कहा,
2: हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदे।
1: अशोक जी, क्या वोकल फॉर लोकल की बात थी वो अब नारा नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति का रूप ले चुका है?
0: हर एपिसोड में प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं और उसमें किसी न किसी हमारे एक प्रोडक्ट की भी बात करते हैं जिससे हमारी जो चर्चा है वो आगे दुनिया में भी हो रही है और कैसे हमारे स्वयं अपने जो लोग हैं वो किस तरह से इसकी उत्पादन कर रहे हैं। जैसे चाय के बारे में उन्होंने बात की, चटाई के बारे में बात की और उन्होंने ये भी बताया कि जिस चाय की वो चर्चा करते हैं उसमें केवल स्वाद ही नहीं होता है बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की एक खुशबू भी घोल दी जाती है। उदाहरण दिया उन्होंने कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। तो इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसे प्राकृतिक सामग्री शामिल है और इस तरह से देख रहे हैं कि हमारी पहचान बन रही है। तो इस तरह से कई ऐसे उदाहरण प्रधानमंत्री देते हैं कि जिससे हम अपना आत्मनिर्भरता की तो बढ़ते ही हैं, लेकिन

0: वोकल फॉर लोकल का जो नारा है कि हमारा जो लोकल उत्पाद है उसको भी हम प्रेरणा दें, उसका इस्तेमाल करें और दुनिया में भी उसकी मांग बढ़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा, गुरु पूर्णिमा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का उल्लेख भी किया है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने तिरंगा के बारे में क्या कहा।
2: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री इन विषयों को अक्सर रेखांकित करते रहे हैं, क्या इससे राष्ट्र भावना और नागरिक सहभागिता को नई ऊर्जा मिलती है?
0: देखिए, केवल अगर प्रधानमंत्री इसकी बात करके छोड़ दें और एक नारे की तरह, तब तो इसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन जब वो इस बात को आंदोलन के रूप में चलाने की बात करते हैं और देश उससे प्रेरित होकर उस आंदोलन में अड़चढ़ कर भाग लेता है, तब वो ये सब बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो स्वतंत्रता का पर्व है, तो उसमें उन्होंने हर घर तिरंगा का जब से एक ये अभियान चलाया, उसके बाद हम देखते हैं कि ये अभियान देश में पूरी तरह से एक अद्भुत भावना से जुड़ गया है और हर गली हर घर में हम तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। यानी लोग इसमें भाग लेते हैं और ये अभियान जो है इसको आगे बढ़ाने की बात भी प्रधानमंत्री करते हैं। इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री की बात का लोगों पर असर होता है और जो भी अभियान वो लेते हैं, चाहे वो सफाई का अभियान हो, चाहे वो हर घर तिरंगा की बात करें, ऐसे कई अभियान प्रधानमंत्री ने पिछले 12 साल में चलाए हैं जो जन भावना से जुड़े होने के कारण लोक अभियान में भी बदले हैं, जिसके कारण ये सब चीजों में भारत आगे बढ़ रहा
1: है। और प्रधानमंत्री ने कैच द रेन अभियान और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील दोहराई है। क्या आपको लगता है कि ऐसे अभियानों से जन भागीदारी अब सरकारी योजनाओं की सबसे बड़ी ताकत बन रही है?
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये भी एक ऐसा विषय है जल संरक्षण का जिसमें प्रधानमंत्री लगभग हर मन की बात में इसके बारे में बात करते हैं और उसके चलते ये जो जल अभियान है, यानी जो इसको संरक्षण करना है, ये भी हर बार रहती है। और जैसा प्रधानमंत्री ने पिछले एपिसोड में कहा था कैच द रेन, तो इस अभियान की चर्चा की थी और उन्होंने ये भी आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहेजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं, और अब वो जन आंदोलन का रूप ले चुका है। तो ये जो संदेश सीधा, जहां बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए, इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन, वृक्षारोपण, इन सबको नई गति मिली है। और गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोग बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी ले रहे हैं और कई पुराने तालाबों को लोगों ने गोद लिया है, उसकी गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं, कहीं बावड़ी। ये जो जीवन का एक संदेश है, ग्राउंड वाटर को इस माध्यम को बनाया जा रहा है, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। तो ये एक इतना महत्वपूर्ण संदेश जो प्रधानमंत्री ने दिया और लोगों के इस जुड़ाव का भी उन्होंने चर्चा की, तो इसमें कोई कारण नहीं है कि ये कैच द रेन अभियान आगे चलकर और तेजी पकड़ेगा।
1: जी अशोक जी, आपने मन की बात के इस संस्करण में उठाए गए विषयों का अत्यंत सारगर्भित विश्लेषण किया। कार्यक्रम में शामिल होने और अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 136वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: सुर्खियों में
5: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम

0: कार्यक्रम डगर विकास की सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा से जुड़े एक ऐसे प्रयास की जो देश के भविष्य को संवारने का काम कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग द्वारा संचालित माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना की, जिसे हम संक्षेप में पीएम श्री योजना भी कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 सितंबर सन 2022 को पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य देश के सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर उन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना है। पीएम श्री योजना में चयनित स्कूल ऐसे आदर्श स्कूल हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को दर्शाते हैं। पीएम श्री योजना के तहत ऐसे स्कूल तैयार किए जा रहे हैं जहां बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित शिक्षा न मिले, बल्कि उन्हें जीवन से जुड़ी व्यवहारिक और कौशल आधारित शिक्षा भी प्राप्त हो। पीएम श्री योजना पर और अधिक जानकारी देते हुए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल के प्राचार्य श्री पवन कुमार बेदुए।
1: सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे पीएम श्री योजना के बारे में। पीएम श्री योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
2: पीएम श्री योजना वास्तव में प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को विधिवत इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है। पीएम श्री योजना में विद्यालयों को सक्षम बनाना है, स्किल बेस्ड एजुकेशन दिलवाना है ताकि बच्चों को समय पर रोजगार मिल सके। तो पीएम श्री योजना बहुत ही लाभदायक है बच्चों के लिए, पालकों के लिए, और इस योजना के तहत बहुत तरह के हेड में फंड दिए जा रहे हैं ताकि विद्यालयों को इम्प्रूव किया जा सके, क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके। और यह प्रधानमंत्री जी का बहुत ही उत्तम प्रयास है और एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है।
1: आपके स्कूल को कब इसमें शामिल किया गया है?
2: हमारे स्कूल को 2020 में शामिल किया गया है और 2022 से हमको फंड प्राप्त हुए हैं। अभी तक हमको 2 साल के फंड मिल चुके हैं और तीसरा इस साल चल रहा है, इसमें भी फंड आने को है और इसमें 35 से 40 लाख रुपए हमको पर ईयर मिलते हैं और इसमें अलग अलग हेड हैं। इसको पूरी तरह विद्यालय को यूटिलाइज करना होता है उसी साल में ताकि जो पैसा आया है उसका लाभ बच्चों को मिल सके।
1: क्या इस योजना के तहत स्मार्ट क्लास, लैब और डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है?
2: बिल्कुल, अभी पीएम श्री के तहत बहुत सारे विद्यालयों को फंड मिला है जिनके तहत इंटरैक्टिव पैनल्स खरीदे गए हैं और क्लासरूम्स में डिजिटल टीचिंग का प्रयास चल रहा है और ये काफी फायदेमंद रहा है बच्चों को।
1: जैसे अभी आपने बात करी डिजिटल पैनल की, तो इसके लिए क्या शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास हेतु भी कोई प्रावधान है?
2: बिल्कुल, जैसे AI आया है, अटल टिंकरिंग लैब में वर्क होता है और बहुत तरह की जो एक्टिविटीज हैं जिनको करके बच्चों को सिखाना है, तो ऐसी स्थिति में टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। बल्कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 50 आवर्स की ट्रेनिंग टीचर्स के लिए कंपलसरी है। जैसे हमारे यहाँ जो वोकेशनल लैब है या अटल टिंकरिंग लैब है, इसके तहत टीचर्स को 5 दिन की, किसी को 3 दिन की, कभी कभी किसी को 1 दिन की AI को लेकर भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो टीचर्स को डेफिनेटली सक्षम बनाया जा रहा है ताकि वो बच्चों को उसका भरपूर फायदा दे सके।
1: जी, पर्यावरण अनुकूल स्कूल के रूप में पीएम श्री स्कूलों की क्या विशेषताएं है?
2: पर्यावरण

0: लिए सबसे पहला तो जो काम किया जा रहा है वो स्वच्छता को लेकर है कि विद्यालय को साफ सुथरा रखें। इसके लिए कंपोस्ट पिट बनाई जा रही है, खाद बनाई जा रही है और पॉलीथिन फ्री विद्यालय बनाए जा रहे हैं और विद्यालय को हरा भरा रखा जाए इसके लिए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ग्रीन ग्रास लगाई जा रही है और उनको हर टाइम हरा रखने के लिए स्प्रिंकलर्स लगाए जा रहे हैं और इन सब के लिए हमको फंड भी मिल रहा है।
1: क्या कचरा प्रबंधन के लिए भी इसमें कोई कार्य किए जा रहे हैं?
0: निश्चित रूप से एक तो क्या है कि जागरूकता फैलाई जा रही है कि हम पॉलीथिन का यूज बिल्कुल ना करें और जो पेपर्स हैं उनके लिए पेपर मैसी के माध्यम से हम लोग कुछ आइटम्स बना रहे हैं ताकि पेपर का यूज किया जा सके। बच्चों पे अवेयरनेस तो हम दे ही रहे हैं, साथ में कंपोस्ट पिट बनाई जा रही है ताकि जो पत्तियां हैं उनको सड़ा के गला के खाद बनाई जा सके और स्कूल में वेजिटेबल गार्डन है तो उस खाद का वेजिटेबल गार्डन में उपयोग किया जा रहा है। से वेजिटेबल गार्डन और मेडिसिनल गार्डन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा भी दी जा रही है किस तरह से वेजिटेबल बनती हैं, किस तरह से मेडिसिनल प्लांट बनते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें बच्चों को फील्ड विजिट भी कराया जा रहा है ताकि वो खेती कैसे होती है, पौधे कैसे बनते हैं, मतलब आगे हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड पे बच्चों का क्या योगदान हो सकता है उसके अच्छा प्रयास किया जा रहा है।
1: क्या आपके स्कूल में स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जा रहा है?
0: निश्चित रूप से हम लोग 10 डेज बैगलेस डेज को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग बेम्बू आर्ट है, मिट्टी का वर्क है या फिर गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी का वर्क है तो ये सब विद्यालय में हो रहा है। अटल टिंकरिंग लैब में बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो स्किल तो डेफिनेटली इस समय इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि बच्चे सक्षम बन सकें।
1: पीएमश्री योजना से शिक्षा की गुणवत्ता में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं?
0: पीएम श्री योजना का सबसे बड़ा बदलाव अगर हम देखें तो जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, करके सीखो, तो ये सबसे बड़ा फायदा है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो बहुत थोड़ा सीखते हैं और करते हैं तो उससे ज्यादा सीखते हैं, लेकिन देखते भी हैं और करते भी हैं तो सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो अभी क्या है कि बच्चे फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको फील्ड विजिट कराया जा रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने भोपाल के विभिन्न जो हायर इंस्टीट्यूशन हैं जैसे निफ्ट है, एनआईडी है, मैनीट है और एम्पिरी है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे सीहोर में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे बच्चे गए हैं तो किस तरह से काम वहाँ होता है, किस तरह से प्रोजेक्ट बनते हैं या हम अपनी लाइफ में अगर कुछ नया करना चाहें तो कैसे सीखें, वो वहां से सीख के आ रहे हैं।
1: सर, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: पीएम श्री योजना के तहत बच्चों के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। पढ़ाई के साथ साथ कला, संस्कृति, खेल, पर्यावरण संरक्षण और जीवन कौशल से जुड़े विषयों को भी शिक्षा का हिस्सा बनाया जा रहा है। आप हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के कला शिक्षक अशोक कुमार वर्मा।
3: नमस्कार, बताना चाहूंगा कि हमारे विद्यालय में जब से पीएम श्री स्कीम लागू हुआ है उसके बाद यहाँ पे बच्चों के एक्सपोजर के लिए, बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल होने लग गई हैं। बच्चे अब कुछ विधाओं में अलग से इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनमें कुछ अपने हैंड्स ऑन स्किल्स वगैरह को इम्प्रूव कर रहे हैं। आप देख पाएंगे जो हमारे स्कूल में जगह जगह पर बर्ड हाउस टंगे हुए हैं, ये पूरे वेस्ट मेटल से टंगे हुए हैं, ये कार्डबोर्ड, लकड़ी, घास फूस इससे मिला के इन्होंने बर्ड हाउस बनाया जिसको हमने स्कूल में जगह जगह वृक्षों पर टांग दिया। पक्षियों के लिए भी ठीक है और देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हमारे यहाँ पे हो रहा है। टेक्नोलॉजी को इसमें जोड़ते हैं हम तो AI बहुत महत्वपूर्ण हो गया है आगे फ्यूचर के लिए बच्चों को, तो अभी से उसका नॉलेज देना पड़ेगा। तो इसलिए स्किल सब्जेक्ट में कंपल्सरी AI हम लोगों ने कर दिया है, तो सारा 8th क्लास तक AI चालू हो गया। सोशल मीडिया का जमाना है तो बच्चों को एडिटिंग वगैरह का भी एक कंसेप्ट है जिसमें फोटोशॉप वगैरह का यूज करके क्रिएटिव यूज कर सकते हैं और एडिटिंग से अपने कोई भी, हर बच्चा आजकल वीडियो बनाता है, फोटो बनाता है हर परिवार में, तो एडिटिंग का वर्कशॉप भी हम लोगों ने कंडक्ट किया। तो इस तरीके से पुराने पैटर्न के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व करते हुए हम बच्चों को स्किल्स सिखा रहे हैं। एक और स्किल्स एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर से बच्चे बिल्कुल कट गए हैं आज की तारीख में, वो जानते नहीं एग्रीकल्चर में क्या होता है और किस तरीके से उसके में खेती बाड़ी की जाती है। तो हमारे यहाँ पे एक एग्रीकल्चर गार्डन है, वहाँ पर हमारे फिर माली भैया के गाइडेंस के साथ बच्चे उसमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करना सीखते हैं। कैसे प्लांट लगाया जाता है, कैसे उसमें पानी

0: दिया था, कैसे कीटनाशक का या बिना कीटनाशक के वो कैसे हम जैविकता के साथ में उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये इस तरह के अलग अलग एक्टिविटीज हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, सफाई अभियान से रिलेटेड और जो वेस्ट मेटल को यूज करने का तरीका, इन सब तरीकों को लेके हुए स्किल को डेवलप किया जा रहा है।
1: श्रोता, पीएम श्री योजना वास्तव में भारत के भविष्य में किया गया एक निवेश है। ये बच्चों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम नागरिक बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। कार्यक्रम में आइए अब जानते हैं केंद्रीय विद्यालय भोपाल क्रमांक 2 के विद्यार्थियों से जुड़े उनके अपने अनुभव।
2: मैं अभयराज सिंह ठाकुर, कक्षा 11वीं का छात्र, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 शिवाजी नगर भोपाल में हूँ। हमारा स्कूल पीएम श्री योजनाओं के अंतर्गत आता है। पीएम श्री योजनाओं के अंतर्गत काफी बदलाव देखने को मिला हमको हमारे स्कूल में, जैसे कि जितने क्लासरूम में सबको डिजिटलाइज किया गया, उन सब में इंटरएक्टिव पैनल्स लगाए गए, जिससे डिजिटल और इंटरएक्टिव पैनलों के उपयोग से शिक्षण को रोचक, प्रभावी और सहभागितापूर्ण बनाया गया। इसके अंतर्गत हमें काफी सारे कला शिल्प की गतिविधियों में पार्ट लेने को दिया गया। कला शिल्प जैसे कि ज्वेलरी मेकिंग, पेंटिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट और भी काफी सारी चीजें। हमको युवा संसद 2025 में जाने का भी मौका मिला, जिसमें हम लोगों ने अपने स्कूल को प्रथम स्थान भी दिलाया। काफी सारी खेलकूद की गतिविधियां भी की गई। इसके अंतर्गत शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, टीम भावना और खेल भावना के विकास के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। पीएम श्री के माध्यम से हमारे स्कूल को काफी मदद मिली और हमें आशा है कि आगे जाते हुए हमारे स्कूलों को काफी बुलंद ऊंचाइयों पर भी ले जाएगा।
3: मेरा नाम अमृता मिश्रा और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल में पढ़ती हूँ। हमारा विद्यालय पीएम श्री योजना के तहत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कई गतिविधियाँ आयोजित करता है। मेरे अनुसार पीएम श्री योजना सिर्फ एक नाम या योजना नहीं, बल्कि एक विश्वास है देश की प्रगति का और बच्चों के सतत विकास का। और हमारे विद्यालय में जो विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, उसमें से कई गतिविधियां बालिकाओं को सामर्थ्य बनाने हेतु चलाई जाती हैं, जैसे कि सुरक्षा प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत छात्राओं में आत्मविश्वास, साहस एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती है, साथ ही में उनके अंदर एक आत्मरक्षा का भाव भी आता है। मुझे लगता है कि जो पीएम श्री के पहले का टाइम था और जो पीएम श्री के अभी का टाइम है, उसमें डिफरेंस बहुत बड़ा आया है हमारे जो स्टडी है, क्योंकि वो अब सिर्फ पढ़ाई किताबों तक सीमित नहीं रही है, वो पूरा हर एक डायमेंशन में देखा जाए तो हर एक तरीके से हमें हेल्प कर रही है और स्पेशली हमारी स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है और इससे हमको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी मिलती है। तो अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि केवी की दीवारों में गूंजे उनकी बात, पीएम श्री के सपनों का भारत है आबाद, शिक्षा की ज्योति हर दिल में जलाए, पीएम श्री देश का भविष्य बनाए। धन्यवाद।
1: आने वाले समय में यही बच्चे देश की प्रगति की कहानी लिखेंगे और उनकी इस उड़ान की शुरुआत पीएम श्री स्कूल से होगी। हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं पीएम श्री योजना एक बेहतर शिक्षा के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम है। पीएम श्री योजना देश के भविष्य यानी बच्चों के बेहतर अवसर और बेहतर कल की ओर ले जाने की एक सशक्त पहल है। इसी के साथ डगर विकास की कार्यक्रम का ये अंक यही संपन्न होता है। वाचक अमिता त्रिवेदी, प्रस्तुतकर्ता मनीष गजभिये, योगदान आकाशवाणी भोपाल का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। योगदान था आकाशवाणी भोपाल का। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में, लिखा था योगेश ने, संगीत सलील चौधरी का था और फिल्म का नाम था आनंद।

आपकी कसम इस फिल्म का ये गाना सुन रहे थे आप किशोर कुमार की आवाज़ में, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। और इसी के साथ फिल्म संगीत को अब हम यही विराम देते हैं। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, कुछ ही पलों में समाचार संध्या सुनेंगे आप दिल्ली केंद्र से।

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की।

0: तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
2: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा

0: निर्यात राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
1: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना ये हम बराबर

0: बराबर, और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
2: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वैश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से ओडिशा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on

ज्वेलथी फिल्म से ये गाना अभी सुन रहे थे आप आशा भोसले की आवाज़ में। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, एस डी बर्मन थे इस फिल्म के संगीतकार। और आइए अब आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, और इस फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। इंदिवर ने इस गाने को लिखा था, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था।

वो कौन थी, इस फिल्म का ये गाना सुन रहे थे अभी आप लता मंगेशकर की आवाज़ में। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत के बोल लिखे थे और मदन मोहन का संगीत था।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम चित्रगीत। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मनभावन में आप सभी सुनने वालों को तृप्ति लटपटे का नमस्कार और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, आपके पत्र हम तक पहुंच चुके

साहिल और बिट्टा बजाज। इस गीत के लिए साथी फरमाइश भेजी है वाशिम से राजेश खयामतर, प्रेमा, राश्री, राजू, भावसार और प्रीति जी ने। साथ ही हमें इस गीत के लिए खत लिखा है शिरपुर से GRS गिरीश देशमुख, सोनाली और जयश्री जोशी ने। जिला उज्जैन से सज्जन सिंह राठौर, किशन सिंह, मनोहर सिंह, अरविंद सिंह राठौर, राजेंद्र सिंह, लक्ष्यराज सिंह और हंसराज सिंह राठौर ने। साथ ही हमें खत लिखा है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने। भील बड़ोदी, गौतमपुरा, इंदौर से राजेंद्र शर्मा, भावना, दिनेश, ज्योति, जयदीप, अर्पिता, हिमांशु, ओशिन, हेमंत, अद्विका, निशिता और पूरे शर्मा परिवार ने।

गुलजार का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और भूपिंदर के स्वर में आरटी बर्मन का संगीत था। और आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। हमें फरमाइश भेजने वाले हैं खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष मंदा, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप कुमार, माधुरी, पिंटू कुमार और जयश्री खंडाले। साथ ही खुर्द से हमें खत लिखा है सुधाकर राजेधाव, प्रशांत, जगुताई, साक्षी, संचित, प्रथमेश, स्वामी, प्रणाली, सानवी राजेधाव ने। और साथ ही हमें खत लिखा है नांदेड़ से प्रभाकर और आरती जोंधड़े ने। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले ने। मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल ने। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। साथ ही खत मिला है हमें जलगांव से संतोष कुमार सोना, नरेंद्र, रविंद्र और सन्नी मुन्ना और बंडू दादा का। मालूट केम पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी का। धांडी नादुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है।

0: खफा से
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आ

0: लल्ला तुम हो ओ दिलरुबा।
1: बुढ़ा मिल गया, इस फिल्म का ये गाना सुना अभी आपने आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और राहुल देवबर्मन का संगीत था। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन। आइए पढ़ते हैं अगली फरमाइश हमें किसने भेजी है। हमें खत लिखा है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर ने। साथ ही हमें खत लिखा है बीजलपुर से मोहन लाल चौहान, ललिता, प्रियंका, वर्णिका, पंकज, सोनू, नितिन, राहुल, गुंजन, मुस्कान, अदव्या, अंकित, सलोनी, लड्डू, कान्हा, ऋषु चौहान और हेमंत जी ने। साथ ही चंद्रनगर सातारा से सतीश वाघमारे, अतीश, स्वाति, वर्षा, श्रमण, शमीन वाघमारे ने। और कोल्हापुर से विजय चौहान, तेजस्विनी, अंकिता, अनिकेत और माया चौहान ने। मंदसौर से हमें खत मिला है तूफान दांगी, टीना और लक्ष बाबू का। पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश सहजवानी, विक्की, हनी, जिम्मी, अमिता, दियाना और जियांश मटाई का। बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय ने हमें खत लिखा है। नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय ने। गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय ने इस गीत को सुनना चाहा है। शाजापुर से एमएम राजावत, राज, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, ऋचा, स्वीटी, रिया, रीत, ऋषभ और समस्त राजा परिवार ने इस गीत की फरमाइश भेजी। बेमेतरा से पूर्णिमा सारथी, पूजा, आरती, भाव्या, सुषमा सारथी ने। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा, शारदा और दामिनी शर्मा ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जेतक और मीका बीरक ने भी इस गीत को सुनना चाहा है।

आराधना फिल्म का ये गाना अभी सुना आपने, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में, लिखा था आनंद बख्शी ने और एसडी परमन का संगीत था। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की ओर, जिसके लिए हमें फरमाइश भेजिए छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो ने, पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी ने। साथ ही इस गीत के लिए हमें खत लिखा है हिंगोली महाराष्ट्र से रामचंद्र धोडीबा, इंगोले सिद्धांत, इंगोले टीकू, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी, सुरभि, मंजूषा गौतम, नामदेव राव शिंदे पाटिल, विलास शिंदे पाटिल और सुनील जबड़े ने। अशोकनगर बसमत हिंगोली से दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखाराम ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके ने। जुमरी तलैया से छकुली इंगोले, देव इंगोले, छोटू दादा इंगोले, रामचंद्र इंगोले और महेंद्र चौरसिया ने। कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवेंद्र श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी और मीनोरा श्रीमाली ने। साथ ही इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है कोल्हापुर से तुषार कुरने, प्रसीक कामले, एकता कामले, मेघना उत्कर्षा कामले और अरुण यड़गुड़कर ने। साथ ही कोल्हापुर से ही अतुल गौतमी धमदीना, अरुण काळे, एमडी कामरे, इनकी फरमाइश है। साथ ही नागपुर से नाना डोंगर दीवे, रमा सीमा, रीमा दीक्षा और राहुल डोंगर दीवे की फरमाइश हमें मिली है। छबड़ा से नूर बानो, सलमा बानो और रुखसार जी का खत हमें मिला है। साथ ही न्यूटन छिंदवाड़ा से, टावर स्ट्रीट न्यूटन छिंदवाड़ा से निसार खान, उमेश गुप्ता, मोनू हरडे, रफीक खान, जतन नायक और साथियों की फरमाइश है ये। छिंदवाड़ा से सादिया खान, जारा, आलिया, अलीशा, चांदनी व उनके साथियों ने इस गीत को सुनना चाहा है।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुन रहे थे अभी आप ये गाना। आर डी बर्मन का संगीत था, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और फिल्म का नाम था यादों की बारात। और आइए बढ़ते हैं अगले और अंतिम गीत की ओर कार्यक्रम की, जिसके लिए हमें खत लिखा है जरूर वडोड महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाडोदे आदि युवराज मीनाक्षी चरपे और रजनी किनारे ने। साथ ही ग्राम लाहौरी जिला खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल, शीला और गायत्री धनजे ने। खुर्दी रोड मानपुर से विजय रानी, महिमा और नीतू वैद ने। वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। यादव मोहल्ला सनावत रोड से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मुस्कान मालाकार, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार ने। साथ ही जिला उज्जैन से विनोद मोनत, नेहा जैन, दीपक मयंक मोनत, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मोनत ने। कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबेद रजिया, सुनैद, अलीना मुआज और आयत मंसूरी ने। मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल ने। जलगांव से अरुण खर्चे, छत्रपति संभाजी नगर से राजेंद्र

अनपढ़ फिल्म से सुन रहे थे अभी आप ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। राजा मेहंदी अली खान ने इसके बोल लिखे और मदन मोहन ने संगीत दिया। और इसी के साथ संपन्न होता है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। मनभावन तृप्ति को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी सुन रहे थे आप फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में सुनिए अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, जैसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा के आज के इस गरिमामय समारोह में हम भारत की प्रथम महिला संतूर वादिका विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल जी, जो कि सूफियाना घराने की एकमात्र ऐसी भारतीय महिला कलाकार हैं जिन्हें संतूर वादन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, का संतूर वादन प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
2: नमस्कार। इन टुडेज प्रेस्टिजियस प्रोग्राम ऑफ द अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा वी आर गोइंग टू प्रेजेंट अ संतूर रिसाइटल बाय इंडियाज फर्स्ट फीमेल संतूर मेस्ट्रो विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल, हु इज द ओनली इंडियन फीमेल आर्टिस्ट ऑफ द सूफियाना घराना टू अचीव इंटरनेशनल अक्लेम इन संतूर प्लेइंग।
1: डॉक्टर वर्षा जी ने गायन और तबले की शिक्षा मात्र 6 वर्ष की आयु में प्रारंभ की थी और आगे चलकर प्रख्यात तबला वादक पंडित ललित महंत जी से संगीत का गहन मार्गदर्शन प्राप्त किया। आप प्रख्यात संतूर वादक पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी की गंडाबद्ध शिष्या है। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार होने के साथ साथ विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में संतूर वादन हेतु आमंत्रित की जाने वाली देश की पहली महिला संतूर वादिका का गौरव भी रखती है।
2: डॉक्टर वर्षा जी बिगेन हर ट्रेनिंग इन वोकल म्यूजिक एंड तबला एट द मेयर एज ऑफ 6 एंड लेटर रिसीव प्रोफाउंड म्यूजिकल गाइडेंस फ्रॉम द रेनाउंड तबला प्लेयर पंडित ललित महंत जी। शी इज अ गंडाबंद डिसाइपल ऑफ द एमिनेंट संतूर मेस्ट्रो पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी। अलॉन्ग विथ बींग अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन, शी ऑल्सो होल्ड्स द प्राउड डिस्टिंक्शन ऑफ बींग द फर्स्ट फीमेल संतूर प्लेयर ऑफ द कंट्री टू बी इन्वाइटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर संतूर कॉन्सर्ट्स अब्रॉड।
1: वर्तमान में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय उज्जैन में संगीत प्राध्यापिका के रूप में सेवारत डॉक्टर वर्षा जी को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा फर्स्ट लेडी अवार्ड, मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित शिखर सम्मान सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है।
2: करंटली सर्विंग एज अ प्रोफेसर ऑफ म्यूजिक एट द गवर्नमेंट कल्स पीजी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी उज्जैन, डॉक्टर वर्षा जी हैज बीन ऑनर्ड विद सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल एकोलेट्स, including the First Lady Award by the Honorable President of India and MP Government Shikhar Samman also.
1: Vidushi Varsha Agrawal, भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत का एक ऐसा ही प्रतिष्ठित नाम है। संतूर के शततंत्री तारों पर उनकी उंगलियां जब थिरकती है तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। अपनी अनवरत साधना, लयकारी पर अद्भुत पकड़ और प्रतिष्ठित मंचों पर दी गई अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्होंने संतूर वादन के क्षेत्र में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
2: विदुषी वर्षा अग्रवाल इज वन सच एमिनेंट नेम इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। व्हेन हर फिंगर्स डांस ऑन द 100 स्ट्रिंग्स ऑफ संतूर, द लिसनर्स आर लेफ्ट स्पेलबाउंड। थ्रू हर रिलेंटलेस डेडिकेशन, रिमार्केबल कमांड ओवर रिदम एंड मेलोडियस परफॉर्मेंसेज ऑन प्रेस्टिजियस स्टेजेस, शी हैज लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क इन द फील्ड ऑफ संतूर प्लेइंग।
1: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल अपने संतूर वादन की शुरुआत राग झंझोटी से कर रही हैं। इसमें वे आलाप, जोड़ और झाला के पश्चात विलंबित गत जो त्रिताल में है, मध्य गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में प्रस्तुत करेंगी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित हितेंद्र दीक्षित।
2: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल इज बिगनिंग हर संतूर रिसाइटल विद राग झंझोटी। इन दिस After the alap, jod and jhala, she will present a vilambit gat in teen taal, a madhya gat in ek taal and a drut gat in teen taal. Accompanying her on the tabla is Pandit Hitendra Dikshit.

0: राग झंझोटी में अभी आपने सुना विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल का संतूर वादन। विदुषी वर्षा अग्रवाल अब प्रस्तुत करने जा रही है राग किरवानी। इसमें वे आलाप के पश्चात मध्यगत जो रूपक ताल में और द्रुतगत तीन ताल में प्रस्तुत करेंगी।
1: यू जस्ट लिसन टू द संतूर रेसाइटल इन राग झंझोटी बाय विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल इज नाउ गोइंग टू प्रेजेंट राग किरवानी। इन दिस After the alap, she will present a madhyagat in rupak tal and a dhrutgat in teen tal.

0: ये था विदुषी वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत राग किरवानी। विदुषी वर्षा अग्रवाल अपने कार्यक्रम का समापन एक मिश्र राग आधारित मधुर धुन से कर रही हैं।
1: दैट वॉज राग किरवानी प्रेजेंटेड बाय विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल इज कंक्लूडिंग हर परफॉर्मेंस विद अ मेलोडियस धुन बेस्ड ऑन अ मिश्र राग।

0: श्री डॉक्टर वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत ये थी मिश्र राग पर आधारित मधुर धुन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित हितेंद्र दीक्षित। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दैट वॉज अ मेलोडियस धुन बेस्ड ऑन अ मिश्र राग प्रेजेंटेड बाय विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। अकम्पनिंग हर ऑन द तबला वॉज पंडित हितेंद्र दीक्षित। This program was presentation by All India Radio, Indore. With this, today's Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha concludes.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्चस्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल हैं। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरूषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत ने 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, besides former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The PM added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
3: Union Minister Prahlad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Kargil Vijay Diwas is being observed today. Entire nation salutes the indomitable courage and supreme sacrifice.